पर ये एफएम शिमला है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जाँच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार

0: अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi yesterday chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the Economic Advisory Council discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. The Home Minister also directed an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with a ruthless approach. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar virtually handed over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal under the reconstruction program post-2015 earthquake after meeting with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. The two leaders jointly launched the linkage between UPI India and National Payments Interface of Nepal for facilitating cross-border personal remittances. Both leaders also witnessed the exchange of a memorandum of understanding between Digital India Bhashini and Kathmandu University for co-creating the national digital infrastructure for a voice-first language translation platform for Nepal. In his opening remarks during the meeting with Mr. Khanal, External Affairs Minister said that India and Nepal collaborate closely to maintain security along their long and uniquely open border, and the two countries have always stood by each other in times of need.
2: Collaborate closely to maintain security our long and uniquely open border. Our two countries have always stood by each other in times of need. In the wake of the ongoing crisis in West Asia, the Middle East, we have ensured uninterrupted fuel supplies to Nepal. The importance accorded to this relationship by both sides has only recently been demonstrated. We believe that today there is opportunity to decisively shift the trajectory of India-Nepal relations and to realize the full potential of our ties.
1: The National Testing Agency has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, the agency said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families.

जब हम अपनी देखभाल प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं तो प्रभु अपने हृदय का सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं। आप सुन रहे हैं FM शिमला पर हिमांजलि, सुनते रहिए यूं ही।

सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये सृष्टि की वो खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूर्य नई उम्मीदों को फैलाता है। आप सुन रहे हैं FM शिमला पर हिमांजलि, सुनते रहिए यूं ही।

जब मन ठहरना सीख लेता है तब जीवन खुद रास्ता दिखाने लगता है। आप सुन रहे हैं हिमांजलि एफएम शिमला पर, भानुप्रिया के साथ सुनते रहिए यूं ही।

कहते हैं आध्यात्मिकता का संबंध बाहरी जगत से नहीं होता, ये उस जगत से संबंधित है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। आप सुन रहे हैं हिमांजलि, सुनते रहिए यूं ही।

प्रभु कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ फिलहाल आज हिमांजली में इतना ही। आप सुन रहे हैं FM शिमला, 6:40 हो चुके हैं और अब आइए सुनते हैं मानस गान। आवाज लता मंगेशकर, शोभा जोशी और साथियों की है, संगीत सतीश भाटिया का है।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत, असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मां अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एफएम शिमला सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और अब आइए सुनते हैं देशगान।

एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे देश गान। 6:57 होने को है। अब आइए करते हैं खुद को अपडेट एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ। नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग कारणों से अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति के मामले पर पुनर्विचार के मामले को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

0: बैठक में सरकारी भूमि पर कुछ अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। ये नीति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमकेयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बीमा मॉडल के तहत संचालित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार पात्र लाभार्थियों को अब 5 लाख के स्थान पर 7 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को 15 जून को जिला स्तर पर शपथ दिलाई जाएगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ दिलाएंगे। अन्य जिला मुख्यालयों में कैबिनेट मंत्री पंचायत प्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति को मंजूरी देने के अलावा जॉब ट्रेनीज को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हार की बौखलाहट में है, इसलिए जनादेश का लगातार अपमान कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने सरकार कांग्रेस को नकार दिया है, ये बात मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में परिजनों की उपस्थिति एक सम्मान का भाव है, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे समारोह में परिजनों और मीडिया को जाने से रोकना भी बौखलाहट का एक उदाहरण है। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को है, चलिए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज समाचार के लिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं के आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों

0: युवकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षो में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं चिंतन।

सच्ची भक्ति द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की पूजा के लिए हृदय के भाव पुष्प की आवश्यकता होती है। धन के द्वारा या अन्य किसी साधन द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रेम के वशीभूत भगवान भक्त के आगे गुलाम बन जाते हैं। प्रभु को पाने के लिए श्रद्धा तथा लगन ही एकमात्र रास्ता है। वो राजा और रंक में कोई भेद नहीं करता। उसे राजभोग की जरूरत नहीं है, वो तो निश्चल प्रेम के हाथों वशीभूत है। महाराजा चोल अपने दरबार में सबसे कहने लगे, मेरा धन्य भाग्य है, भगवान विष्णु ने मुझे राजा बनाकर मेरे हृदय में अपनी भक्ति भर दी है। वो मदोन्मत्त कह बैठे, भगवान की पूजा में मेरी स्पर्धा करना ठीक नहीं। ये सुनकर दीन ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय अज्ञात पीड़ा से तिलमिला गया। मन में सोचने लगा, राजा अपने धन से भगवान की निंदा कर रहा है। अचानक बोल पड़ा, राजन, भगवान का विग्रह रत्नों की मालाओं से कितना रमणीय हो चला है। आपने स्वर्ण और मणियों से ढककर भगवान का रूप असुंदर कर दिया है। भगवान का महत्व सोने और हीरे से नहीं आंका जा सकता। भगवान की प्राप्ति भक्ति से होती है। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया और वो कहने लगा, देखना, पहले मुझे भगवान के दर्शन होंगे या आपकी भक्ति सफल होती है। इस तरह राजा ने गरीब ब्राह्मण को चुनौती दे डाली। महाराज ने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित कर भगवान के दर्शन के लिए विष्णु यज्ञ का आयोजन किया। भगवती ताम्रपर्णी नदी के कलरव से निनादित उनकी राजधानी काशी में स्वर्ण धूप की आभा ऐसी लगती थी मानो अपने दिव्य वृक्षों समेत चैत्र रथ बनकर धरती पर उतर आई हो। वेद मंत्रों के मधुर गान से यज्ञ आरंभ हो गया। काशी नगरी पंडितों और मंत्रों से भक्तिमय हो गई।

दान दक्षिणा का चर्चा नगर में होने लगा। वही ब्राह्मण विष्णुदास भगवान की आराधना और उपासना करने लगा। उसने प्रण किया कि जब तक भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हो जाते वो काशी नहीं जाएगा। वो भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करने लगा, लेकिन अचानक ही 7 दिनों के बाद भोजन चोरी होने लगा। ब्राह्मण निराहार होकर भी भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। 7वें दिन वो छिपकर चोर की राह देखने लगा। उसने देखा कि एक दुबला पतला चांडाल भोजन लेकर भागने लगा। वे करुणा से द्रवीभूत होकर उसके पीछे घी का कटोरा लेकर दौड़ने लगे। चांडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा तो ब्राह्मण अपने वस्त्रों से उसे ढकने लगा। अचानक चांडाल बोल पड़ा, परीक्षा हो गई भक्तराज, अब चांडाल के रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हो गए। अलसी के फूल के समान श्याम शरीर की शोभा निराली थी। हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह था, वक्ष पर कौस्तुभ मणि थी, मुकुट और पीताम्बर की झांकी अनुपम थी। ये छटा देखकर ब्राह्मण हैरान रह गया, वो अचेत हो गया। उस मूर्छित अवस्था में नारायण को प्रणाम तक न कर सका। राजा चोल का यज्ञ संपन्न कर रहे ऋषि मुद्गिल चिल्ला उठे, यज्ञ समाप्त कर दीजिए। उन्होंने राजा को बताया कि ब्राह्मण विष्णुदास को भगवान अपने विमान में वैकुंठ ले गए हैं। ये सुनकर राजा धधकते यज्ञ कुंड में कूद पड़ा। वही विष्णुदास पुण्यशील और चोलराज सुशील पार्षद के नाम से प्रसिद्ध हुए।

एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुति डॉक्टर हुकुम शर्मा की थी। एफएम शिमला पर अब आइए आपको अपडेट कर देते हैं उन तमाम प्रोग्राम्स के साथ जो आज आप सुन सकते हैं एफएम शिमला पर रात 11:10 तक।

समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप हर दिन की तरह आज भी सुन पाएंगे सुबह 8 बजे से लेकर 8:30 के मध्य, 12 बजे दिन में, 1 बजे से लेकर 1:10 के मध्य, 2:15 पर दोपहर, शाम 7:05 पर, रात 8:45 से 9:15 के मध्य और रात 11 बजे से लेकर 11:10 के मध्य।

इसके अलावा प्रादेशिक समाचार आप सुन पाएंगे सुबह 9:20 पर, 11:00, 3:00, शाम 6:00 और शाम 7:45 पर। FM न्यूज़ हेडलाइंस का समय रहेगा 7:57 का, 8:30 का और 9:57 का। पुराने फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे झनकार में सुबह 10:00, 11:05 पर हमारे प्रोग्राम पुराने फिल्मों से में, और फिर इसके बाद 3:10 पर ओल्ड हिट्स में, रात को 8:00 और 10:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम में। सुबह 9:30 पर चलिएगा हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी पर प्रोग्राम कुदरत के रंग में। हिमाचली लोक संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 8:32 पर, 11:30 पर और फिर इसके बाद आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 पर प्रोग्राम शिखरों के स्वर में, और फिर आखिर में हिमाचल के विभिन्न बोलियों के कार्यक्रम में। महिला सम्मेलन आप सुन पाएंगे 12:20 पर। प्रोग्राम के सभी

आप सुनिएगा प्रोग्राम सबरंग में, और ये प्रोग्राम आप सुन पाएंगे दोपहर 2 बजे। इस प्रोग्राम में आपके लिए हम लेकर के आते हैं संगीत के विविध रंग। नाम याद रखिएगा, सबरंग। महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम हम लेकर के आएंगे 12:20 पर, और फिर इसी तरीके से तमाम युवाओं के लिए युवानी प्रोग्राम का समय रहेगा 3:30 से लेकर 4 बजे तक।

0: दिल की आवाज़ भी सुन, ये SMS बेस्ड प्रोग्राम, माफ़ कीजिएगा, ईमेल बेस्ड प्रोग्राम ये रहता है जिसमें शामिल होने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं AIR@FMShimlaMusicMail@gmail.com पर, और फिर शामिल हो सकते हैं अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट और मैसेजेस के साथ एकदम लाइव ओनली ऑन 103.7 MHz। कुछ चुनिंदा गज़लों से सजा हुआ खूबसूरत प्रोग्राम, गज़लें हम लेकर के आएंगे आपके लिए रात 10 बजे। FM शिमला पर हर शख्स के लिए कुछ ना कुछ खास प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं, और इसी तरीके से आज है रविवार तो 10:30 पर आपके लिए हम लेकर के आएंगे प्रोग्राम साहित्य दर्पण। ये प्रोग्राम खास है तमाम साहित्य प्रेमियों के लिए। फिलहाल इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको ट्यून इन रहना है 103.7 MHz पर।
1: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

FM शिमला सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। 7:15 हुए हैं और ये वक्त है आपके अपने जाने पहचाने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला का। मैं हूँ आपके साथ आपकी हम सफर भानु प्रिया वर्मा। मैं अक्सर कहती हूँ कि मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ये ना सिर्फ आपके मन को खुश रखता है बल्कि आपके दिन को खुशहाल बनाता है। सो ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद अ स्माइल, इट विल मेक योर डे हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारे गुड म्यूजिक के साथ मैं आपकी हम सफर आपके साथ।

याद है ना आपको ये फिल्म तुमसे ही सॉन्ग जिस फिल्म से है, जी हाँ फिल्म है जब वे मेल्ट और मोहित चौहान की वो आवाज़ जो सीधा कानों से दिल में उतरती है, और ना सिर्फ आवाज़ बल्कि इस एक सॉन्ग का हर एक अल्फाज, हर एक शब्द बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिल को छू गया है। प्रीतम का कॉम्पोजिशन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, कुछ शानदार म्यूजिकल नंबर्स विद इंफोटेनमेंट आपके लिए हम लेकर आए हैं आज।

तो जी गुड मॉर्निंग, शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त है थोड़ा सा कुछ पास्ट फैक्ट्स पर नज़र दौड़ाने का, वक्त है हिस्ट्री ऑफ द डे का कि आखिरकार 7 जून अपने आप में खास क्यों है, या फिर मैं ये कहूँ कि इतिहास के पन्नों में क्यों दर्ज है। तो शुरुआत करते हैं ये 1989 से, जब भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। 1995 में नॉर्मन थैगॉट अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने। और इसके बाद अगर मैं बात करूं पुरुष एकल खिताब की, तो 1998 में स्पेन के जो है कार्लोस मोया ने फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता।

और इसी के साथ में अगर कुछ और ख़ास बातों की बात की जाए तो उनमें क्या आएगा कि आज की जो डेट है, या मैं कहूँ 7 जून है, वो कौन कौन जो हमारे कुछ खास पर्सनालिटीज़ हैं उनका जन्म हुआ। तो 1974 में भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म हुआ। 1914 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म हुआ। और क्या ख़ास है आज इस प्रोग्राम में, ये जानने के लिए आपको रहना है हमारे साथ FM शिमला 103.7 MHz पर।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

All right, सुनिए आप गुड मॉर्निंग शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर. आई होप कि अब सभी लोग जो हैं अपना बिस्तर छोड़ चुके हैं, अपने मॉर्निंग की शुरुआत कर चुके हैं, और मैक्सिमम लोग जो कि सैटरडे नाइट ये प्लान करके सोते हैं कि भैया कल तो संडे है, कल तो लेट से उठेंगे. तो जी ऐसा एग्जैक्टली वैसे हो नहीं पाता है, क्योंकि जो हमारी लाइफ का जो रूटीन एक सेट हो जाता है ना, उस टाइम पर आपकी बॉडी क्लॉक जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको उठाती ही उठाती है. यानी कि हमारा जो बॉडी होता है ना, हम सभी को ये मालूम है कि वो अपने एक बॉडी क्लॉक के हिसाब से काम करती है. एक वॉल क्लॉक जो होती है, एक रिस्ट वॉच जो होती है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं. लेकिन हमारे बॉडी को ऑटोमेटिकली हमें किस वक्त क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें पता होती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, या हमें ये लगता है कि हमें अभी उठ जाना चाहिए, अभी हमें एक्सरसाइज जाना चाहिए. मतलब ये सारे रूटीन्स जो हैं हम खुद ब खुद अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं. सो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं और एकदम फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं, फॉरएवर यंग रहना चाहते हैं, तो बेस्ट रेमेडी है कि अपना रूटीन संडे हो या मंडे कभी भी जो है डिस्टर्ब नहीं होने दें. अगर एक दिन दो दिन कभी डिस्टर्ब हो भी जाते हैं, तो वापस उसको ट्रैक पर लाने की पूरी पूरी कोशिश करें. खैर आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला में, और आपको बताते हैं कि आज का दिन जो है वो खास क्यों है. वैसे दोस्तों जो 7 जून है ना, उसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है. WHO और AFO ने मिलकर इसे 2018 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी, और हर साल एक नई थीम के साथ ये दिन मनाया जाता है. और अगर मैं बात करूं साल 2026 की, यानी आज की इस साल के, और इस साल की थीम खास तौर पर अगर मैं बताऊं आपको विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, तो वो है बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन. अब आपको और हमें, हम सभी को ये मालूम है कि असुरक्षित खाना खाने से, साफ खाना ना खाने से जो है हम अलग अलग तरीके की बीमारियों से जो है जूझते हैं, जिसकी वजह से बीमार पड़ने की वजह से जान माल को खतरा भी होता है, और फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं ना. तो आपने जो है क्या कहते हैं कि अगर आपने हेल्दी रहना है, फिट एंड फाइन रहना है, तो अपनी डाइट का आपने पूरा ध्यान रखना है, और फिर आपने कोई भी खाने पीने में कोताही नहीं बरतनी है. यानी कि कोई चीटिंग नहीं करनी है आपने, फिट एंड फाइन रहना है आपने, और कोशिश ये करनी है कि हर जगह पर अगर कोई आपको बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं जिन्हें खाने की ज़रूरत है, आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, ज़रूर करें आप, और साफ़ सुथरा खाना आप प्रोवाइड कराएं उन्हें, इन स्पाइट ऑफ कि आप किसी को पैसे हेल्प में देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है आपने, लोगों को हेल्प करनी है, तो एक अच्छे इंटेंशन के साथ, एक बेहतर तरीके से आपने करनी है, और ये देखना है कि किसे किस चीज़ की ज़रूरत है. अगर आपसे हो पाता है तो ज़रूर ज़रूर और ज़रूर किसी को दो वक्त की रोटी आप प्रोवाइड अगर करा पाएँ तो ज़रूर करवाएं. खैर FM शिमला सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, और आपको सुनवाते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक.

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: FM शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जी आज से जो है हेली टैक्सी सर्विस जो कि शिमला टू रिकांगपिओ चलती थी उसे दोबारा से शुरू किया जा रहा है। पहले कुछ लास्ट मंथ जो है किसी रखरखाव कार्य के कारण जो है इसे बंद करना पड़ा था, लेकिन अब इसे दोबारा से बहाल किया जा रहा है। और कोई भी टूरिस्ट, कोई भी यात्री अगर इसके लुत्फ उठाना चाहते हैं या इस सेवा का से यात्रा करना चाहते हैं तो हेरिटेज एविएशन के अधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं और अपनी जर्नी को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनते रहिए यूं ही।

तो जी एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, इंफोटेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं यहाँ पर। तो अभी हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ पहुँचे हैं।

और आपको बताना चाहेंगे कि इन दिनों शिमला शहर जो है बहुत ही ज़्यादा अपनी खूबसूरती में नज़र आ रहा है, क्योंकि होने जा रहा है समर फेस्टिवल 8th of June से 12th of June तक। यानी कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि यहाँ आने पर आपको देखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी, और स्टार नाइट्स भी ऑब्वियसली होने वाले हैं यहाँ पे। और वैसे आप सभी को पता है ना, समर फेस्टिवल हो, विंटर कार्निवाल हो, ऐसे में जो है हमारा शहर शिमला शहर बेहद खूबसूरत हो जाता है ख़ास मौक़ों पर। तो इस ख़ास मौके को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें आप, और ज़रूर आएँ आप शिमला शहर। और ऐसे में जबकि बहुत सारे सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में बिल्कुल आप सुनिश्चित कर लें अपनी गाड़ी की व्यवस्था भी, कि उन्हें कहाँ, कैसे, कब और कितनी देर के लिए सेफली पार्क करना है। क्योंकि आप देखिए, शिमला शहर की खूबसूरती देखने तो आप आते ही हैं, लेकिन सही जगह पर अगर आप कार पार्क नहीं करेंगे, अपने कन्विंस के साथ आ पाते हैं, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आ पाते हैं, तो ऐसे में चालान सीधा आपके मोबाइल्स पर भी आजकल आ जाता है। सो जब आप आए तो रंग में भंगना पड़ जाए, इसलिए प्रॉपर टाइमिंग से, प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ आएँ, यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ़ उठाएँ, और सुनते रहें FM शिमला 103.7 MHz पर।

0: फिलहाल आज गुड मॉर्निंग शिमला में इतना ही। आइए करते हैं खुद को अपडेट न्यूज हेडलाइंस के साथ।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग कारणों से अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति के मामले पर पुनर्विचार के मामले को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में सरकारी भूमि पर कुछ अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। ये नीति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिम केयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बीमा मॉडल के तहत संचालित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार पात्र लाभार्थियों को अब 5 लाख के स्थान पर 7 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को 15 जून को जिला स्तर पर शपथ दिलाई जाएगी और

0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला में नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ दिलाएंगे। अन्य जिला मुख्यालयों में कैबिनेट मंत्री पंचायत प्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति को मंजूरी देने के अलावा जॉब ट्रेनीज को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत 100 युवा प्रतिभागियों के दल को इन दिनों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों के सीमावर्ती गांव का दौरा करवाया गया। देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे इन प्रतिभागियों को 3 से 5 जून तक किन्नौर जिला के रिकांगपियो में स्थानीय समुदायों के जीवन को नजदीक से समझने का अवसर मिला। FM News Headlines में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज समाचार के लिए।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
6: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का

0: खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
2: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
3: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में दो महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की।

0: अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
1: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
0: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
0: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के

0: बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जन्मदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. International Air Transport Association says, India will be significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has called for a sharper vigil on financial transactions, constructions of buildings and sale and purchase of properties along the international borders. The directive came during a meeting chaired by Mr. Shah at BSF's Tripura Frontier Headquarters regarding the border areas of the northeastern state. More from our correspondent.
3: Home Minister directed that an examination of land records of the last 5 years be conducted. Mr. Shah said frequent operations against drug and arms trafficking must be conducted and the entire chain of contributors to drug trafficking must be dealt with the ruthless approach. He said that ensuring financial discipline in the border districts is the responsibility of the states. Mr. Shah directed that collectors and GST officials be trained and that the Central Board of Direct Taxes, CBDT, conduct a survey on currency. Home Minister said that camps must be organized to train people living along the border to tackle the threats of narcotics and firearms and instructed that the presence of Patwari sentinels, local police and PSF personnel be ensured in these camps.
4: For Akashbani News, Shuman Bhattacharji, Agartala.
2: The National Testing Agency or NTA has refuted the claims circulating on social media and messaging platforms regarding an alleged leak, advance access or sale of the NEET UG 2026 re-examination question paper. In a social media post, NTA said that such content is the work of organized cheating rackets that prey on the anxiety of students and their families. A report.
5: The agency asserted that the integrity of the examination process remains fully intact and that all necessary safeguards are in place to ensure a fair and secure examination for candidates. NTA said it is actively identifying and reporting the offending channels, accounts, and content to

0: conflict is forcing countries far beyond West Asia to confront an uncomfortable reality. Energy security can no longer be built around a single set of political assumptions. For India, the renewed importance of Venezuela is less a story about one oil supplier and more a reflection of a changing global energy map. And finally, Sunday Tribune confronts a grim reality. Silent killer on our plates, WHO links unsafe food to 1.5 million deaths worldwide. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along international borders. National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. IATA says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record sixth time. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: FM Shimla sun rahe aap 103.7 megahertz par 8:30 hue is waqt to ab waqt hai khud ko update karne ka news headlines ke sath.
3: Namaskar, FM news headlines ke sath main Godavri Verma. अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव 8 से 12 जून तक आयोजित होगा. प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि ग्रीष्मोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना तथा स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देना है. पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने कल ऊना जिले के अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए साप्ताहिक गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ी करीब 1900 किलोमीटर की दूरी 31 घंटे 30 मिनट में तय करेगी. अनुराग ठाकुर ने इस रेल सेवा को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है. विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत 100 युवा प्रतिभागियों के दल को इन दिनों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों के सीमावर्ती गांव का दौरा कराया गया. देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे इन प्रतिभागियों को 3 से 5 जून तक किन्नौर जिला के रिकांगपियो में स्थानीय समुदाय के जीवन को नजदीक से समझने का अवसर मिला. प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई. शिमला के बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें सभी वार्डों के सदस्य शामिल रहे. सोलन में आयोजित समारोह में उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने जिला परिषद सदस्यों को, जबकि उपमंडलाधिकारी डॉ. पूनम बंसल ने पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाई. अखिल भारतीय कलाकार संघ के अध्यक्ष व प्रसिद्ध अभिनेता रोहिताश्व गौड़ और संघ की उपाध्यक्ष रेखा गौड़ ने कल लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर रोहिताश्व गौड़ ने राज्यपाल को अखिल भारतीय कलाकार संघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि 71वीं वार्षिक अखिल भारतीय नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता शिमला में आयोजित की जा रही है. उन्होंने बताया कि 10 जून तक चलने वाली इस सांस्कृतिक आयोजन में देशभर से हजारों कलाकार भाग ले रहे हैं. लाहौल स्पीति के युवाओं, उद्यमियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए 9 जून को केलोंग में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी. ये कार्यशाला मार्केटिंग एंड डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल टूल्स फॉर ब्रांड बिल्डिंग विषय पर आधारित होगी. कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से इंडोर स्टेडियम केलोंग में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा. FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही. नमस्कार.
2: और अब FM शिमला पर आइए आपको सुनवाते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ बेहद प्रसिद्ध लोकगीत.

ये लोकगीत आपने सुना रोशनी शर्मा की आवाज़ में। एफएम शिमला पर सुन रहे हैं आप हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम। और अब कार्यक्रम का अगला लोकगीत सुनिए राजेश टेम्पटा की आवाज़ में।

आज हिमाचली लोकगीतों के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए यूं ही।

एफएम शिमला सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लिसनर्स, जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर तो हर कोई खुश रहता है, लेकिन जिंदगी उसी की है जो अक्सर कुछ होकर भी मुस्कुराना जानते हैं। ये है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए, पॉजिटिव रहिए और मुस्कुराते रहिए। मैं हूँ आपके साथ आपकी हमसफर भानुप्रिया वर्मा।

और अब एफएम शिमला पर चलिए आपको अपडेट कर देते हैं उन तमाम प्रोग्राम्स के साथ जो आज आप सुन सकते हैं आकाशवाणी शिमला के मुख्य चैनल से। नौ बजकर 30 मिनट पर सुबह आप सुन पाएंगे सुरबेला कार्यक्रम जो कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित रहता है। 10 बजे वक्त होगा रिमझिम प्रोग्राम का, जबकि 10 बजकर 30 मिनट पर ज़रूर सुनिएगा साहित्य दर्पण कार्यक्रम।

0: 11:05 पर वक्त होगा समूह गान शिक्षा पाठ का और बाल सभा सुन पाएंगे आप 11:30 पर। महिला सम्मेलन सुनिएगा 12:20 पर और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम सैनिकों के लिए ये सुन सकते हैं आप 1:10 पर। वनों की आग से कैसे बचाएं इस विषय पर आज खास कार्यक्रम सुनहरी किरणें सुन सकते हैं आप 2:00 जबकि हिमगुंजन आपके लिए हम लाएंगे 2:30 पर। हिमाचल की विभिन्न बोलियों के कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आएंगे 4:20 से और सबसे पहले आज आप सुन पाएंगे सिरमौरी कार्यक्रम और फिर 4:50 पर वक्त होगा महासवी कार्यक्रम का। किन्नौरी कार्यक्रम का समय रहेगा 5:20 का और फिर बिलासपुरी कार्यक्रम 6:06 पर। लाहौली कार्यक्रम 6:35 पर। शाम 7:10 पर हमारा विशेष प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे। सुगम संगीत आपके लिए आज रात हम लेकर के आएंगे 8:30 पर और कुछ खास गजलें सुनिएगा जरूर गुलदस्ता प्रोग्राम में 9:15 से। रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन पाएंगे और रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा भी रात 10:00 से लेकर 11:00 तक सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो ये थी जानकारी उन तमाम कार्यक्रमों की जो आज आप सुन सकते हैं आकाशवाणी शिमला के मुख्य
1: प्रादेशिक समाचार। आप FM शिमला 103.7 MHz के साथ साथ DTH तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।

0: 1015-1765 हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
0: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा में आयोजित विशाल जागरूकता शिविर में जुटे देश के शीर्ष न्यायविद। शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कल से होगा शुरू, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता विधिवत करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार के सहयोग से केलंग में 9 जून को विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला की जाएगी आयोजित। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इस वर्ष की थीम बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा धर्मशाला में विशाल विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस महाशिविर में देश भर के शीर्ष न्यायविदों, न्यायाधीशों, विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम नाथ ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना विधिक सेवा संस्थाओं का मूल उद्देश्य है। उन्होंने नागरिकों से संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक गुरमीत सिंह संधावालिया ने न्याय की सुलभता और विधिक साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: महाशिविर में देश भर के शीर्ष न्यायविदों, न्यायाधीशों, विशेषज्ञ, अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम नाथ ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना विधिक सेवा संस्थाओं का मूल उद्देश्य है। उन्होंने नागरिकों से संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक गुरमीत सिंह सांदेवालिया ने न्याय की सुलभता और विधिक साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने नागरिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की समझ को आवश्यक बताया। शिविर में न्यायाधीश नोंग मैकापम, कोटेश्वर सिंह और संजय करोड़ ने भी संविधान की मूल भावना और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार रखे। इस अवसर पर आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि भी वितरित की गई। कार्यक्रम में विधि छात्राओं और युवाओं की भागीदारी विशेष आकर्षक रही, जिन्होंने अधिकार और कर्तव्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल पालमपुर उपमंडल के प्रवास के दौरान विभिन्न प्रशासनिक चुनाव अधिकारियों के साथ चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर अधिकारियों के साथ अपने व्यापक अनुभव साझा किए। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाली विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं और अधिकारियों की शंकाओं का मौके पर ही निवारण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार जनता की उपेक्षाओं और समस्याओं से कट चुकी है और उसका पूरा ध्यान केवल सत्ता का आनंद लेने तक सीमित है। हमें

0: में कल नाउ फॉर क्लाइमेट अभियान के तहत आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष ही नहीं कांग्रेस के अपने नेता भी सवाल उठा रहे हैं, जो सरकार की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास प्राप्त कर चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कम आंकना उचित नहीं है। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव कल 8 जून से शुरू होगा। 12 जून तक चलने वाले इस भव्य आयोजन का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 कलाकार अपनी प्रतिभा का इस कार्यक्रम में प्रदर्शन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। उपायुक्त व अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आयोजन समिति अनुपम कश्यप ने बताया कि ग्रीष्मोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना तथा स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देना है। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
1: उद्घाटन संध्या पर बॉलीवुड पार्श्व गायक शबाब शाबरी अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों का मनोरंजन करेंगी, जबकि दूसरी संध्या पर ज्योतिका टांगरी, तीसरी संध्या पर नाटी किंग कुलदीप शर्मा, चौथी सांस्कृतिक संध्या पर पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर और अंतिम समापन संध्या पर जस्सी गिल और बबल राय अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल एडवेंचर और रोमांस से भरपूर होगा। सैलानियों व स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर से शिमला की पहाड़ियों की सैर करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा शिमला समर फेस्टिवल के दौरान स्कूली बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, डॉग शो और फूड फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से लाहौल स्पीति के युवाओं, उद्यमियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए 9 जून को केलंग में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ये कार्यशाला मार्केटिंग एंड डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल टूल्स फॉर ब्रांड बिल्डिंग विषय पर आधारित होगी। कार्यशाला में प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग और व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। अधिक ब्यौरा हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता से।
2: कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से इंडोर स्टेडियम केलांग में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। कार्यशाला में प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग और व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। आयोजकों के अनुसार ये प्रशिक्षण स्थानीय युवाओं, व्यवसायों और स्वयं सहायता समूह के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। ये कार्यशाला डिजिटल युग में सफलता की नई राह दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इसका उद्देश्य विश्व में भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कृषि, मत्स्य व वानिकी के क्षेत्रों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम बोझ से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन रखी है, जो इस बात पर जोर देती है कि बीमारी, उससे जुड़े बोझ और जान गंवाने वालों से जुड़ा डेटा कैसे केंद्रित और किफ़ायती समाधानों की दिशा में कदम उठाने में मदद कर सकता है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या का कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझ खरीदारी करना आसान हो जाएगा। अखिल भारतीय कलाकार संघ के अध्यक्ष व प्रसिद्ध अभिनेता रोहिताश्व गौड़ और संघ की उपाध्यक्ष रेखा गौड़ ने कल लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर रोहिताश्व गौड़ ने राज्यपाल को अखिल भारतीय कलाकार संघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि 71वीं वार्षिक अखिल भारतीय नाटक व नृत्य प्रतियोगिता का कल से शिमला में शुरू हुई। उन्होंने बताया कि 10 जून तक चलने वाली

इस सांस्कृतिक आयोजन में देश भर से हजारों कलाकार भाग ले रहे हैं। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, भांग की खेती के लिए बदलेंगे नियम, हिमकेयर में अब तक सात से दस लाख तक मुफ्त इलाज, 2000 पद भरेंगे। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, सुक्खू सरकार देगी 1300 नई नौकरियां। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, 1400 से ज़्यादा नए पद भरने को कैबिनेट की मंजूरी। दैनिक जागरण के अनुसार 20 बीघा से कम भूमि के कब्जे नियमित होंगे, 2542 अस्वीकृत करुणामूलक नियुक्ति के मामलों पर किया जाएगा पुनर्विचार। पंजाब केसरी की एक खबर है, प्रधान उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह 15 को, मुख्यमंत्री कांगड़ा में दिलाएंगे शपथ। दैनिक भास्कर लिखता है, पर्यटक अब 600 रुपये देकर भी पहुंच सकेंगे मनाली से रोहतांग दर्रा। दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है, अम्ब से कोलकाता तक गुरुमुखी एक्सप्रेस ट्रेन को सांसद अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा में आयोजित विशाल जागरूकता शिविर में जुटे देश के शीर्ष न्यायाधीश।

0: दैनिक भास्कर लिखता है पर्यटक अब 600 रुपये देकर भी पहुंच सकेंगे मनाली से रोहतांग दर्रा। दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है अंब से कोलकाता तक गुरुमुखी एक्सप्रेस ट्रेन को सांसद अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा में आयोजित विशाल जागरूकता शिविर में जुटे देश के शीर्ष न्यायविद। शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कल से होगा शुरू। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे विधिवत शुभारंभ। केंद्र सरकार के सहयोग से केलंग में 9 जून को विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला की जाएगी आयोजित। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इस वर्ष की थीम बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz, DTH तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: FM शिमला सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। तो अब FM शिमला पर आप और हम होंगे एक अनोखी रेडियो जर्नी पर। तो चलिए मेरे साथ एक सुहाने सफर पर अब से लेकर 10 बजे तक। प्रोग्राम है कुदरत की रंग और मैं हूँ आपके साथ भानु प्रिया वर्मा।

कुदरत के रंग सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भानुप्रिया वर्मा के साथ। तो जी आज मेरा मूड कर रहा है कि आपको लेकर के जाएं उस जगह जो फेमस है अपने मिंजर मेले के लिए। मैं बात कर रही हूँ चंबा की। तो जी आज हम आपको लेके जाने वाले हैं चंबा। और चंबा क्यों, तो ज़रा इसके बारे में भी सुनिए दोस्तों। चंबा अपने प्राचीनतम ऐतिहासिक धरोहर के लिए जो है खास तौर पर जाना जाता है। भरमौर से लेकर चंबा तक के मंदिर इतने प्राचीन हैं, इतने सुंदर मंदिर हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर सिर्फ यहीं हो सकते हैं, कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ एक तरफ में प्राचीन मंदिरों का वैभव सिर ऊंचा किए खड़ा है, तो वहीं पर पूरे शहर में यूरोपियन स्टाइल में बनी इमारतें इसे इटालियन टाउन का लुक भी देती हैं। आधुनिकता और प्राचीनता का अद्भुत संगम है चंबा। भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च और कश्मीरी मोहल्ले की रूसी पैटर्न की झलक लिए जो मस्जिदें हैं वो यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाती ही हैं, साथ ही साथ में ये आस्था के प्रतीक भी हैं। खैर और भी बात करूंगी मैं चंबा के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को मालूम है कि जब भी हम किसी जर्नी पर जाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है एक बढ़िया से म्यूज़िक की, क्योंकि जर्नी ना खास अपने आप में तभी बन पाती है जब बढ़िया बढ़िया से म्यूज़िकल नंबर्स लगे होते हैं बैकग्राउंड पर,

ऑलराइट गाइस, आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है एक डिफरेंट रेडियो जर्नी जो आप हमारे साथ तय करते हैं, एकदम लाइव। मैं हूँ आपके साथ आपकी हम सफ़र भानुप्रिया वर्मा, और हम आज सफ़र कर रहे हैं एक अचंभे का। जी हाँ, चंबा को कहा जाता है अचंभा, और अचंभा क्यों कहा जाता है वो तो आप सभी को मालूम है, और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें हम बता देते हैं कि इसे अचंभा कहा जाता है इसकी खूबसूरती को लेकर के। अगर हम चंबा की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लाइक मनी महेश झील है, गंडासुर महादेव डल है, और चुराह घाटी है, डलहौजी है, खजियार है, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस जहाँ आप अगर चाहें तो अपनी छुट्टियाँ बिताने वहाँ पर जा सकते हैं। और ना सिर्फ छुट्टियाँ बिताने वहाँ जा सकते हैं, इनफैक्ट आप वहाँ से मेमोरीज क्रिएट करके लेकर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में जो आज इस पल ये मोमेंट है ना, वो कल हो ना हो किसी को नहीं मालूम है। सो बेहतर है कि आज जितना हो सके उतना घूम लीजिए, सो दैट अपनी ओल्ड एज में जा करके जब घूमना पॉसिबल ना हो कभी, तो आपको ये ना लगे कि यार यहाँ जाना था यहाँ भी नहीं जा पाए, ये सॉन्ग सुनना था नहीं सुन पाए, ये मूवी देखनी थी नहीं देख पाए। सो पास्ट को छोड़िए, फ्यूचर को छोड़िए, प्रेजेंट में रहना सीखिए, प्रेजेंट को जी लीजिए। और यू नो, मुझे क्या लगता है कि आप जितना ज़्यादा घूमने जाते हैं ना, जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उतना ज़्यादा आप सीखते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप गेन करते हैं, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस के बारे में, कल्चर्स के बारे में, कुछ अनरिवीलिंग स्टोरीज के बारे में जिनके बारे में नहीं पता होता है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, और कुछ होना होना एक्सपीरियंस आपको ज़रूर होता है। खैर, ऐसी ही कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार और कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ आप जा सकते हैं अगर आप ट्रैवल करते हैं चंबा में। लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी विद अस ओनली ऑन 103.7 मेगाहर्ट्ज़।

तो जी कुदरत के रंग सुन रहे हैं आप एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बात कर रहे हैं चंबा की, चंबा हम आपको लेकर रहे हैं और डिजिटली ही लेके गए हैं। आप सुन रहे हैं इस वक्त एफएम शिमला पर ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में अक्सर हम आपको किसी ना किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हैं। ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम खास है उन लोगों के लिए जो कि शिमला शहर हिमाचल प्रदेश का रुख पहली बार कर रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ के कोई दोस्त जो कि जाना चाहते हैं डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर अपनी छुट्टियों में। भाई छुट्टियां तो सभी को होती हैं, तो घर पर बोर होने से अच्छा है कहीं ना कहीं जाकर के मेमोरीज क्रिएट की जाएं, जाया जाए। तो अभी फिलहाल चंबा की बात करते हैं। अगर आप चंबा जाना चाहते हैं तो वहां पर आप और कहां जा सकते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वहाँ का भूरी सिंह संग्रहालय म्यूज़ियम, जहाँ पर आपको प्राचीन कला, शाही पेंटिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इतिहास खुद में समेटे हुए हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। खैर चंबा जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, और मैंने कहा भी है आपको कि चंबा को अचंबा भी कहा जाता है। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि चंबा जो है ख़ास तौर पर सुर्खियाँ बटोरता है अपनी जब मणिमहेश यात्रा होती है, या फिर अभी जब मिंजर मेले का आयोजन किया जाता है, और जुलाई अगस्त में जो है ख़ास तौर पर ये मेला लगता है, जुलाई से अगस्त, आई एम नॉट श्योर

0: फॉर दैट, लेकिन इसी महीने में ये लगाया जाता है. और देखा जाए तो आज की डेट में ना ये वेल कनेक्टेड है. आप बाय रोड जाना चाहते हैं, आप बाय रेल जाना चाहते हैं, आपको कैसे जाना है चंबा, ये तो आपको डिसाइड करना है. क्योंकि जब कोई जगह को एक्सप्लोर करना है ना, तो यू नीड टू बी फ्री, है ना, आपके पास बहुत सारा टाइम होना चाहिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस जगह को एक्सप्लोर कर पाएँ. खैर, FM शिमला सुन रहे हैं आप, सुनते रहें यूं ही. मैं भानुप्रिया वर्मा रहूँगी आपके साथ एकदम लाइव.
1: Oh no!

FM शिमला सुन रहे हैं 103.7 MHz पर। मैंने आपको बताया था वेल कनेक्टेड है चंबा, जिसे कहा जाता है अचंबा, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए। और वैसे देखा जाए तो आज की डेट में जो मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ ना, ये सारी बातें आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें जो कि आप सेल्फ एक्सपीरियंस करेंगे वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि हम कितना भी बढ़ा चढ़ा करके बोल लें, किसी की खूबसूरती का बखान यहाँ पर कर दें, लेकिन जो बेस्ट वे जो रहता है वो रहता है आपका अपना एक्सपीरियंस। और आप क्या करते हैं जब आप कहीं घूमने जाते हैं, तो क्या आप वहाँ के एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं अपनी डायरी में? अगर नहीं लिखते हैं तो अब से लिखना शुरू कर दीजिए, या फिर बनाइए अपने व्लॉग्स भी, क्योंकि अब देखिए ज़माना हो गया है डिजिटल, और अपनी जो मेमोरीज हैं, अपनी जो ट्रैवल डायरीज हैं, उसको अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, यहाँ पे आप कभी भी किसी भी मंथ में आ सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती का लुत्फ आप उठा सकते हैं। एक अनोखा ये हिल स्टेशन है, एक ऐसा हिल स्टेशन जहाँ

से कभी वापस आने का आपका मन ही नहीं करेगा। खैर फिलहाल मेरा मन कर रहा है कि आपको एक बढ़िया सा म्यूजिकल नंबर मैं यहाँ पे सुनवाऊँ। FM शिमला 103.7 MHz पर सोस्ट है विद अस।

0: फिलहाल अभी तक अगर आपने चंबा का प्लान नहीं किया है तो जल्दी से बनाइए, क्योंकि मेरा टाइम हो चला है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। चलिए करते हैं खुद को अपडेट न्यूज हेडलाइंस के साथ सोबे वेदास।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं गोदावरी वर्मा। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के धर्मशाला में विशाल विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस महाशिविर में देशभर के शीर्ष न्यायविदों, न्यायाधीशों, विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव कल 8 जून से शुरू होगा। 12 जून तक चलने वाले इस भव्य आयोजन का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल पालमपुर उपमंडल के प्रवास के दौरान विभिन्न प्रशासनिक व चुनाव अधिकारियों के साथ चुनावों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर अधिकारियों के साथ अपने व्यापक अनुभव साझा किए। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाली विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं और अधिकारियों की शंकाओं का मौके पर ही निपटारा किया। केंद्र सरकार के सहयोग से लाहौल स्पीति के युवाओं, उद्यमियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए 9 जून को केलोंग में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ये कार्यशाला मार्केटिंग एंड डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल टूल्स फॉर ब्रांड बिल्डिंग विषय पर आधारित होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार जनता की उपेक्षाओं और समस्याओं से कट चुकी है और उसका पूरा ध्यान केवल सत्ता का आनंद लेने तक सीमित है। हमीरपुर में कल 9 फॉर क्लाइमेट अभियान के तहत आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। अखिल भारतीय कलाकार संघ के अध्यक्ष व प्रसिद्ध अभिनेता रोहताशव गौड़ और संघ की उपाध्यक्ष

अध्यक्ष रेखा गौड़ ने कल लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर रोहताश्व गौड़ ने राज्यपाल को अखिल भारतीय कलाकार संघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि 71वीं वार्षिक अखिल भारतीय नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता कल से शिमला में शुरू हुई। उन्होंने बताया कि 10 जून तक चलने वाली सांस्कृतिक आयोजन में देश भर से हजारों कलाकार भाग ले रहे हैं। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इसका उद्देश्य विश्व में भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कृषि, मत्स्य व वानिकी के क्षेत्रों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन रखी है, जो इस बात पर जोर देती है कि बीमारी, उससे जुड़े बोझ और जान गंवाने वालों से जुड़ा डेटा कैसे केंद्रित और किफायती समाधानों की दिशा में कदम उठाने में मदद कर सकता है। FM न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं फिल्म लावान 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 10 बज चुके हैं, वक्त है झनकार का, और झनकार में कुछ नए पुराने गीतों का संगम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एफएम शिमला पर।
1: हाँ।

आप सुन रहे झनकार नए पुराने गीतों की भानुप्रिय वर्मा के साथ सो बी विद अस ओनली ऑन एफएम शिमला। ये झनकार आप सुन पाएंगे सुबह 10:30 तक। याद दिलाएं उसके बाद तमाम साहित्य प्रेमियों के लिए हम लेकर के आएंगे उनका खास पसंदीदा कार्यक्रम साहित्य दर्पण।

आहा ये दिल। देखिए ये सॉन्ग ऐसा है कि इसे जब भी सुनना जाए तभी लगता है कि भाई वाह, पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। इनफैक्ट आज की जनरेशन को भी ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपने देखा होगा मैक्सिमम रील्स पर, सोशल मीडिया पर जो है आजकल ये सॉन्ग जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है, और ये ऑल टाइम हिट और फेवरेट सॉन्ग है। ये मेरा भी और एंड ऑफ कोर्स मेरी तरह बहुत सारे लोगों का भी। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ऐसे ही कुछ खास शानदार सॉन्ग्स के लिए हम लेकर आते हैं ये प्रोग्राम जिसका नाम है झनकार। मैं आपके साथ भानुप्रिया वर्मा, और मेरे साथ हैं इस तरीके के और भी कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स। वैसे देखा जाए ना, पुराने सॉन्ग्स, या पुराने ही कहूँगी आज की डेट में, 90s के जो सॉन्ग्स हैं वो ऐसे सॉन्ग्स हैं जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट सॉन्ग्स रहे हैं। आप उनके लिरिक्स ले लीजिए, आप उनके म्यूज़िक ले लीजिए, या

आप उनके ड्यूरेशंस ले लीजिए। आज की डेट में अगर हम लेटेस्ट सॉन्ग्स की हम बात करते हैं, सॉन्ग स्टार्ट होता है, ख़त्म हो जाता है जल्दी से, 2 मिनट 3 मिनट का गाना होता है, मतलब जब तक आपको वो रिदम को फील करने की बारी आती है तब तक सॉन्ग ही ख़त्म हो जाता है ना। लेकिन ये सॉन्ग्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाएंगे अपने साथ अपनी दुनिया में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये नेक्स्ट ट्रैक आपको ले जाने वाला है। भरोसा रखिए मुझ पर, सुनते रहिए FM शिमला 103.7 MHz पर।

वेल, इसी के साथ आज झनकार में फिलहाल इतना ही। एफएम शिमला सुन रहे हैं आप, 10:30 हो चुके हैं। अपडेट कर लीजिए अपने टाइम को और अब ये वक्त हो चला है प्रोग्राम साहित्य दर्पण का। आज साहित्य दर्पण में आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर आयोजित कवि गोष्ठी की तीसरी कड़ी आप सुन पाएंगे।

वेल, इसी के साथ आज झनकार में फिलहाल इतना ही। FM शिमला सुन रहे हैं आप, 10:30 हो चुके हैं। अपडेट कर लीजिए अपने टाइम को और अब ये वक्त हो चला है प्रोग्राम साहित्य दर्पण का। आज साहित्य दर्पण में आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर आयोजित कवि गोष्ठी की तीसरी कड़ी आप सुन पाएंगे।

0: नमस्कार, साहित्य दर्पण कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर आइए सुनते हैं आकाशवाणी के स्टूडियो में आयोजित कवि गोष्ठी की अगली कड़ी। तो आइए सुनते हैं कवियों की आकाशवाणी से जुड़ी यादें, अनुभव और कविताओं को। आंखों से दूर दिल के करीब था मैं उसका और वो मेरा नसीब था, ना कभी मिला ना कभी जुदा हुआ, रिश्ता हम दोनों का कितना अजीब था।
1: रेडियो सुनाई नहीं देता, भीतर से बोलता है। उमा जी बहुत बढ़िया।
2: डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही हमारे बीच में बैठे हैं। सत्यनारायण स्नेही जी हिंदी साहित्य में, कविता में, आलोचना में बराबर सक्रिय है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से सक्रिय है और बड़ी, जिसको हम कहते हैं कि सशक्त उपस्थिति अपनी बनाए हुए हैं। स्नेही जी प्राध्यापन कार्य में इन दिनों रत हैं और इसके साथ ही साथ कविता और आलोचना में बराबर सक्रिय रहे हैं, साथ ही साथ दूरदर्शन और आकाशवाणी से इनका जुड़ाव रहा है। आकाशवाणी में जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, सभी की कोई ना कोई किसी न किसी तरह की संपृक्ति या जुड़ाव रहा है आकाशवाणी से, तो स्नेही जी भी एक लंबे समय तक आकाशवाणी से जुड़े रहे। तो मैं स्नेही जी को आमंत्रित कर रहा हूँ आप आएँ और अपने अनुभवों को साझा करें, आत्मीय स्मृतियों को साझा करें या कविता, ये आप पर निर्भर।
1: इस वक्त जो हमारी स्मृतियां हैं वो इतनी ज्वलंत हो गई है कि वैसे भी मैं जब कभी आकाशवाणी की बात या आकाशवाणी से मुझे जब फ़ोन आता था तो वैसे ही मैं रोमांचित हो जाता हूं आज। लेकिन ये रोमांच आज का नहीं है, ये 1981-82 से लेकर के है, जब मैं 7-8 साल का होऊंगा। 1983 का मैं दो दौर की बात ज़रूर करना चाहूँगा। 25 जून 1983 को खेला गया भारत ने जो जीता विश्व कप है, और रामायण काल जो दूरदर्शन में हमने देखा है, जिस तरह से 1983 के विश्व कप की वो मुझे वो क्षण याद है, करीब जैसे हम आप सब बैठे हैं, सब लोग आकाशवाणी से उस विश्व कप की कमेंट्री सुन रहे थे और हमें पता लग रहा था कि लॉन्ग ऑन कौन सा है, लॉन्ग ऑफ कौन सा है, फाइन लेग कौन सा है। वो कल्पना, वो चिंतनशीलता उस काल से हमारे जहन में आकाशवाणी ने डाली। रामायण के दौर में भी ऐसे ही एकत्रित होकर के हम दूरदर्शन पर रामायण देखा करते थे। आकाशवाणी का दौर था, ये दूरदर्शन का दौर आया। लेकिन मेरे घर में पिछले 50 वर्षों से आकाशवाणी शिमला ही बजता है। मेरे पिताजी और मेरी माँ आज भी, हम सुने ना सुने, वो आकाशवाणी शिमला से समाचार अवश्य सुनती है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता इसी आकाशवाणी पर है और आकाशवाणी जो कहती है उनके लिए वही सत्य है। ये जो सत्यता को, सत्य की जो पहचान आकाशवाणी ने करवाई है, वही पहचान हमें रोमांचित कर देती है। मैं साहित्य या शिक्षा के माध्यम से प्रदेश भर में या प्रदेश से बाहर जहाँ जहाँ भी गया हूँ, बीसियों बार मुझसे ये कहा गया है कि आप वही सत्यनारायण स्नेही है जिसको हमने युवाणी कार्यक्रम में सुना है। तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे लोग आकाशवाणी की वजह से पहचानते हैं। जो पहचान मुझे आकाशवाणी ने दी है, शायद वो पहचान मुझे दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं मिली। हजारों विद्यार्थी हैं जिनको हमने शिक्षा दी है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। आकाशवाणी ने असीमित पहचान दी है जो दूसरा कोई भी माध्यम हमें नहीं दे सकता। और आज 90 वर्ष के इस सफर में हमें फिर एकत्रित होकर के इन अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया, इसके लिए आकाशवाणी शिमला के तमाम अधिकारियों और कार्यक्रम निष्पादकों का बहुत बहुत आभार। मैं 3-4 नामों को जरूर स्मरण करना चाहूँगा जिनके माध्यम से मैं आकाशवाणी में जुड़ा। डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू, रवि श्रीवाला, जय भगवान, इंद्रजीत दुग्गल, अक्षर सिंह परमार, बी आर मेहता जी और दीपक भंडारी जी, और इनके साथ दो वो नाम जिनको मैंने सुना और उनसे मिलने की मेरी बड़ी उत्कंठा रही, जिसमें शांता वाले

0: से मैं नहीं मिल पाया, लेकिन हंसा गौतम से मिला तो मैं वो भी अनुभव साझा जरूर करना चाहूँगा कि मैंने हंसा गौतम को बचपन से लेकर सुना। जब हंसा गौतम से मैं मिला, मेरे जो उद्गार थे उसको मैं साझा कर रहा हूँ कि मैं आपको बचपन से सुन रहा हूँ, फिर आज मैं पहली बार मिला हूँ। आपकी आवाज़ से जो तस्वीर मेरे मन मस्तिष्क में थी, आप वैसी ही सुंदर है। मैं साझा करना चाहूँगा हुकम शर्मा जी, सपना जी और अनिल जी और दीपक जी, जिनके साथ जो मेरे पैक्स रहे और जिनके साथ मैं आकाशवाणी के अनेक कार्यक्रमों से जुड़ा। आपने आज आमंत्रित किया, आपका बहुत बहुत आभार। अब अगले दौर में हम एक छोटी छोटी कविताएं साझा करेंगे। कविवर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी कहते हैं, जिस दुनिया में लिखी जाएगी बेहतर कविताएं, वही होगी सबसे बेहतर दुनिया। शब्द और अर्थ नहीं है कविता, सबसे सुंदर सपना है सबसे अच्छे आदमी का। तो उन्हीं सपनों की तरफ हम जाते हैं, और मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ वह हमारे वरिष्ठ कवि के आर भारती जी से कि आप अपना कविता।
1: धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है कंधों पर घर। उठाए कंधों पर बांस की सोठियां, खूंटियां कुछ रस्सियां, औजार कुछ बर्तन असबाब, कुछ मोमजामी चादरें, बिछौने कुछ ओढ़न, चले आए थे जाने कहां से वैसा परिवार। शहर के एक छोर पर रातों रात तन गए उनके तंबू, और देखते ही देखते बस गई बस्तियां।
0: क्या बात है।
1: वहीं से लगे वे काम पर आने जाने, बुनने लगे जिंदगी के ताने वाने, खुले में बही सजे उनके चूल्हे चौके, मने बही तीज त्योहार, लिखी गई बही प्यार मनुहार की कथाएं, रची हाथों में ही नाए। वहीं हुए लफड़े झगड़े, वहीं लिखी गई प्यार मनुहार की कथाएं, रची गई बही हाथों में हिनाएं, वही बच्चों ने मारी किलकारियां, युवाओं ने भरे कुलांचे, और वही किसी का जीवन गया सदा के लिए ठहर। सहसा देखा एक रोज उखड़ गए थे उनके तंबू, सहसा देखा एक रोज उखड़ गए थे उनके तंबू, और चल दिए थे जाने अब किस ओर, उठाए कंधों पर घर ये यायावर। देख सब मैंने ये जाना, नहीं होते जिनके मकान, उनके भी होते हैं घर।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भारती जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अगले कहानीकार, कथाकार के रूप में तो बहुत प्रसिद्ध है लेकिन कविता में भी इनका गहरा दखल है, एस आर हरनोट जी, आप भी एक कविता साझा करें।
2: इससे पहले दो छोटी छोटी बातें कि लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि आपकी लेखन की प्रेरणा क्या रही, खासकर जैसे मैं हूँ कि कहानी लिखने की प्रेरणा कहाँ से रही, तो मेरा यही कहना होता है कि आकाशवाणी शिमला। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने पहाड़ी कविताएं लिखनी शुरू करी थी उस समय आकाशवाणी शिमला ने गीतों भरी कहानियां यहाँ से बहुत आती थी, और मैंने दर्जनों वो गीतों भरी कहानियां लिखी हैं, और बाद में जब मैं 90 के आसपास कहानियों में आया तो शायद वही प्रेरणा थी। दूसरे बी आर मेहता जी का आपने नाम लिया, तो शायद वो भी जब आकाशवाणी शुरू हुई वो कश्मीर से लेके यहाँ तक रहे। पहले पिछले साल हमें सौभाग्य मिला हिमालय साहित्य पर्यावरण मंच को बल्क यात्रा के दौरान हमने उनको घर में सम्मानित किया जीवन उपलब्धि सम्मान से, और उन्होंने इतने अच्छे संस्मरण हमें सुनाया आकाशवाणी के कि अभी भी वो जैन में है, और मैं उनको भी बहुत याद करता हूँ और बाकी लोगों को भी। एक छोटी सी कविता चिड़िया बंजार ने, कि चिड़ियों के लिए नहीं रहे पौ और पौ के लिए छायादार पेड़, गाँव के घर मकान हो गए हैं जिनमें अब नहीं रहता कोई कभी कभार, जब पर्यटक बनकर आते हैं लोग गांव, चिड़ियां नहीं पहचानती उन्हें। चिड़िया जब कभी बैठती है किसी खेत, पूछती है उसकी मिट्टी से कहां चले गए बीज। चिड़िया याद करती है पुराना जमाना कि जब हल जोतते हलाई की नजर बचाते, वह बैलों की पीठ पर बैठ कर लिया करती खूब सैर, चुग लेती दो चार धान गेहूं के दाने चुपके चुपके। चिड़िया याद करती है मकई की गुड़ाई का मौसम, जब सावन के बादल फटते नहीं थे बरसते थे रिमझिम, खेतों में खिलनियों की थाप, कांच की चूड़ियों के मीठे संगीत में नाचती रहती थी मकई की बालियां, और बिसरू चाची लंबी तान में गाया करती थी झूरी। चिड़िया पूछती है उजाड़ खेत से कि कहां चली गई बिसरू चाची, सूरतिया हाली और उसके बैल। चिड़िया बंजार ने नहीं जानती कि उनकी तरह गांव के लोग भी हो गए हैं बंजारे, जिनके ठिकाने कहीं नहीं रहे, वे भी बाजार की चूक के लिए दौड़ रहे हैं निरंतर, भूख का माया जाल निगल रहा है उन्हें दाना दाना। चिड़िया बंजार ने नहीं जानती यह खेत का समय नहीं सरकारी राशन का है, जहाँ दाना बोया नहीं जाता गिन गिन के बेचा जाता है।
0: बहुत बहुत बढ़िया। ये खेत का समय नहीं है, ये सरकारी राशन का समय है, जहाँ दाना बोया नहीं जाता

0: बल्कि गिन गिन के बेचा जाता है। बहुत बढ़िया हरनोट जी, इसी कड़ी में मैं आग्रह कर रहा हूँ कवि रोशन जसवाल जी से, वो छोटी छोटी नज़में और जिसकी धार बहुत तेज हुआ करती है, अक्सर वो हमें ऐसी नज़में कवि गोष्ठियों में सुनाया करते हैं, तो जाहिर है आज भी एक तेज धार वाली रचना हमारे सामने होगी।
1: आज तो मौका ही ऐसा है कि शुक्रिया आकाशवाणी, आपने बहुत कुछ दिया है। छोटी सी रचना हल्के फुल्के मिजाज की मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सच कहा है आपने, मैं शहर का नहीं हूँ। सच कहा है आपने, मैं शहर का नहीं हूँ। आपके सुर अलग है, मैं इस बहर का नहीं हूँ। आपके शहर में हैं ऊंचे महल ऊंचे आशियाने, आपके शहर में हैं ऊंचे महल ऊंचे आशियाने, मुझे अजीज है दस्त गर्दी, मैं इस घर का नहीं हूँ। आप हमेशा कहते हैं बड़े लोग बड़ी हैसियत, आप हमेशा कहते हैं बड़े लोग बड़ी हैसियत, मुआफ करे जनाब, मैं इस डगर का नहीं हूँ।
0: बहुत बढ़िया।
1: मालूम है मुझे सजते हैं रोज मज़मे आपके शहर में, मालूम है मुझे सजते हैं रोज मज़मे आपके शहर में, मेरे खेत खलियान अलग है, मैं इस मंजर का नहीं हूँ। ख्वाहिश आपकी कि रह गुजर का हम सफर बनूँ, सुनिए जी, ख्वाहिश आपकी कि रह गुजर का हम सफर बनूँ, रास आती है तन्हाइया, मैं सफर का नहीं हूँ। मुबारक हो आपको ये किस्से रसाले ये महफिलें, मुबारक हो आपको ये किस्से रसाले ये महफिलें, मेरा अखबार अलग है, मैं इस खबर का नहीं हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: आप तो आला दानिश है जनाब, आप तो आला दानिश है जनाब, मैं विक्षिप्त ही बेहतर।
0: क्या बात है।
1: आप तो आला दानिश है जनाब, मैं तो विक्षिप्त ही बेहतर, आपको आपकी दुनिया मुबारक, मैं इस नगर का नहीं,
0: नगर का नहीं।
1: सच कहा आपने, मैं शहर का नहीं। शुक्रिया।
0: ये तो आपका अंदाज है जसवाल जी की, आप हल्की फुल्के अंदाज में कहते हैं लेकिन बड़ी गहरी बात कह देते हैं। आप नाम से विक्षिप्त हैं पर वास्तव में विक्षिप्त नहीं है। मैं अब एक और बड़े कवि की तरफ जा रहा हूँ, कवि आत्मारंजन जी, आप कविता पाठ करें और हमारे श्रोताओं को अपनी कविताओं से रूबरू करवाएं।
2: मैं कविता कुछ और सुना रहा था और भारती जी ने कहा कि जड़ें वाली कविता आप ज़रूर सुनाएं, तो इसके कुछ खंड हैं, तीन चार खंड हैं, चाहेंगे तो मैं एक दो ही सुनाऊंगा उसमें से। जड़ें, भाग एक। पहले पहल छठी जमात की किताब ने खोला था जड़ों की दिलचस्प दुनिया का दरवाज़ा। उखाड़ दिखाई गई थी जब मूसलाधार रेशेदार कहलाती अलग आकार जड़ें, सरसों पौधे के मूसलाधार लंबी एक जड़, उससे चारों तरफ फूटती तिरछी छोटी जड़ों का सुंदर विन्यास, रेशेदार की मिसाल दिखाई गई घास पौधे की जड़ें घनी गुच्छों में फूटती हुई। दिलचस्प रहा जानना मूली गाजर शलगम का भी होना जड़, और आलू अदरक प्याज के गट्ठों का जड़ नहीं तना होना। रुएं जैसी महीन नाजुक मात्र कुछ दिन जीवी से लेकर ठोस मोटे तने जैसी सदियों जीवी तक फैला, कैसा विपुल है जड़ों का इस संसार, मिट्टी की परतों में लेकिन दबा छिपा, कहीं भी दिखाई ना देता हुआ आता रहा जहन में, पढ़ाया ही जाना चाहिए जरूर उन तमाम चीजों के बारे जो आमतौर पर दिखाई नहीं जाती।
0: बहुत बढ़िया।
2: आमतौर पर दिखाई नहीं देती। भाग दो, जड़ें। हालांकि कहीं नहीं दिखाई देती रही वे जमीन पर, इतना खरा रहा लेकिन उनका होना कि मुहावरों लोकोक्तियों कहावतों में रही वे मौजूद, जीवन का गूढ़ ज्ञान और बड़ा दर्शन सिखलाती समझाती हुई, इतना खरा कि विश्वास गहराई दृढ़ता निष्ठा जैसे मूल्यों की बनती रही वे मिसाल, अपने नामों और संबोधनों तक में समेटे रही मूल निर्मूल मौलिक उन्मूलन जैसी अवधारणाओं की ताकत, कहीं ना दिखाई देते हुए भी कैसा पुख्ता है ये होना।
0: बहुत बढ़िया।
2: कहीं ना दिखाई देते हुए भी कैसा पुख्ता है ये होना, बनता हुआ गवाही कि कितना कुछ है दुनिया में, बहुत गहरा बहुत जरूरी और कहीं भी दिखाई ना देता हुआ।
0: बहुत बढ़िया।
2: जड़ें तीन। माओ की तरह रही वे बंद कोठरियों में चुपचाप खटती। जड़ें कि माओ की तरह रही वे बंद कोठरियों में चुपचाप खटती, ताउम्र समर्पित बच्चों की देह शाखों पर हरियाती लरजती, वहीं पाती रही मन चीते रंग, वहीं खिलती गमकती रही। जड़े चौथा भाग कि इतनी खामोश रही वे, इतनी स्थिर और अविचल कि चेतना की जननी होते हुए भी कहलाई और मान ली गई जड़।
0: जड़े बहुत बढ़िया।
2: इतनी खामोश रही वे, इतनी स्थिर और अविचल कि चेतना की जननी होते हुए भी कहलाई और मान ली गई जड़, जड़ता का प्रतीक और पर्याय, ठीक नहीं है इतनी भी भलमन साहत।
0: क्या बात।
2: पांचवा खंड इसका कि धरती की मेहनतकश बेटियां हैं वे, गोड़ती खोदती जाती धरती की सख्त दे, उन्हीं को आता है इस तरह अपनी आखिरी नाजुक पोरों की नेह भरी छुअन के साथ धरती के सख्त सीने में चुपचाप पसरते उतरने का ये हुनर, नाजुक पोरों से बेधती जाती वे तमाम सख्त को इस तरह कि न टूटता है कुछ न दरकता है न प्रहार कोई न घाव, खोदती जाती वे निरंतर सख्त में दबी धरती की उर्वर पहचान, माँ पृथ्वी को स्नेहमयी मजबूत बाहुपाश में भरे रहती है वे क्रूर प्रहारों के बीच तमाम ध्वंस और स्खलन से टूटने बिखरने से बचाती हुई उसकी देह और रूह पृथ्वी की।
0: बहुत बढ़िया।
2: छठा भाग इसका कि प्रेम के साथ अक्सर आता रहा फूलों का जिक्र, प्रेम के साथ अक्सर आता रहा फूलों का जिक्र, तमाम प्रेम कविताओं और कथाओं में प्रेम के रूपक प्रतीक या उपमान बन मौजूद रहे फूल, प्रेम की आकांक्षा में होती रही फूलों की हत्याएं भी और किए जाते रहे वे भेंट, फूल को बहुत निकट माना हमने प्रेम के, प्रेम को फूलों सा सुंदर चाहा और माना, इससे बड़ी क्या होती लेकिन प्यार की मिसाल, करती रही जो जड़ें मिट्टी से।
0: क्या बात है।
2: इससे बड़ी क्या होती लेकिन प्यार की मिसाल, करती रही जो जड़ें मिट्टी से कि उसके साथ ही उगी उसी के साथ हुई फना, साथ छोड़ने को बनाया जिन्होंने जीवन छोड़ने का पर्याय, तमाम चकाचौंध रोशनी और दिखाई न देने की शर्त पर भी चुप चुना उन्होंने अपना प्रेम अपना होना, आदतन कल्पना ही नहीं की हमने दूसर रंगों में प्रेम की, आदतन कल्पना ही नहीं की हमने दूसर रंगों में प्रेम की, सौंदर्य में ही देख के देखते खोजते रहे प्रेम और प्रेम के भीतर भूल गए देखना सौंदर्य।
0: बहुत बढ़िया।
2: और इसका अंतिम भाग सात जड़ें कि फूलों पर दुनिया भर में खूब लिखी गई गीत और कविताएं, फूलों पर दुनिया भर में खूब लिखे गए गीत और कविताएं, रंगों और खुशबुओं से सराबोर खूब रचे गए चारण गीत बिरुदावली, जिन जड़ों ने रचा फूल का वजूद अपनी धमनियों में, जिन जड़ों ने रचा फूल का वजूद अपनी धमनियों से सींचा खिलाया ये सौंदर्य, अनगाई ही रह गई वे हमेशा किसी ने नहीं रची जड़ों पर बिरुदावली, अनगाई ही रही गई हुई किसी ने नहीं रची जड़ों पर विरुदावली। बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया रंजन जी। कविता एक सुधा है पीने के लिए, कविता एक दुआ है देने के लिए, शब्द है व्यर्थ घर नहीं समर्थ, कविता एक जीवन है जीने के लिए, कविता एक जीवन है जीने के लिए। इसी कड़ी में मैं आग्रह कर रहा हूँ कवित्री देवकन्या ठाकुर जी से।
3: जी मैं भी प्रेम कविताएं सुनाऊंगी। सबसे पहली कविता प्रतीक्षा, छोटी कविता है। तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठी अधीर आंखें छूटते धीरज की माला कसकर पकड़ी बैठी हैं। प्रिय आओ प्रतीक्षारत कनखियों पर अपने अधरों का चुंबन धर दो और विरह की खारी नदी को पीकर इन आंखों में मीठा जल भर दो और फिर मेरी आंखों की नदी में हम दोनों मछली बनकर तैरेंगे।
0: बहुत बढ़िया।
3: एक और कविता ध्रुव तारा। प्रिय क्या तुम्हें पता है तुम सौंदर्य के मस्तक पर अंकित कुमकुम हो, माता पार्वती के कानों पर अलंकृत मनोरम कर्ण फूल हो, नीलाकाश के तीर्थ पर अर्चना करके लौटती हुई तारागणों की पंक्ति के अग्रज ध्रुव तारा हो। प्रिय तुम हो हृदय के नायक, मैं सब कुछ छोड़कर एकटक अपने चित्त के ब्रह्मांड में तुम्हें ही निहारती हूँ, तुम्हारे नीले नीले केशों को अपनी उंगलियों से सहलाती हूँ, गीली घनी नीलम पलकों वाले आनंद विस्मित आंखों से तुम्हें ही देखती हूँ। प्रिय पुंजी के नीले सुनहरे रेशमी गगन में सुशोभित तुम जब खड़े होते हो संध्या की अरुणिमा में, देखते ही तुम्हारा मुख उन्मुख हो जाती हूँ, बिसार देती हूँ सुदबुद और मेरे अधरों पर फिर भी चमकने लगता है तुम्हारा ही प्रकाश, तुम्हारे होने से ही है मेरे जीवन में उजाला, जिसे किन्हीं अज्ञात हाथों ने आकाश की वेदिका में दुर्लभ कांति तेल भरकर किया है जीवन में मेरे प्रज्वलित, गुलाब से कांतिमान तुम, तुम्हारे रूप और सुगंध से अगाध विस्मय विस्मय के उन्माद से मत है सदा मेरे नयन, तुम हो नरगिस के प्रथम कली का प्रेम सौरभ फैलाते खुले हुए स्वर्ण डोने पर सुशोभित, तुम्हारी मुस्कुराहट है प्रिय, चूम लूं तुम्हें मैं अपने शीतल अधरों से कि मेरी क्षत विक्षत आत्मा तुम्हारी कांति से दमक उठे।
0: बहुत बढ़िया देवकन्या जी।

0: कविवर राम नरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं, गंधविहीन फूल है जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, ऐसा ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। कदाचित इसी का प्रतिफल है कि आप प्रेम के इस उदात्त रूप को अपनी कविता के द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं आग्रह कर रहा हूँ कवित्री उमा ठाकुर जी से कि आप अपनी कविता प्रस्तुत करें।
1: धन्यवाद सनेह जी। आकाशवाणी की तमाम नारी शक्ति को समर्पित मेरी ये कविता, शीर्षक है सखी सहेली। विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम हो या आकाशवाणी शिमला का महिला सम्मेलन, हर स्क्रिप्ट में छुपी अनगिनत कहानियाँ, कुछ अनकही कुछ आभासी। तितली सा रंग जिंदगी में बिखेरती, कभी रिश्तों की डोर सहेजती, स्टूडियो में बैठी सखी मधुर गीत चुनने में व्यस्त है, ताकि दूर बैठी अनाम सखी को पल भर की खुशी का एहसास करा सके। कंसोल संभालती कभी यूं ही खो जाती है वो अतीत में, चुन लाती है बाबुल की बगिया से सुंदर फूल, पिरो कर शब्दों की माला बिखेर देती है ब्रह्मांड में खुशबू। रेडियो तरंगों से छिपकर छू लेती है तार दिलों के उस सखी के जो जोत रही है हल बहुत दूर गांव के किसी कोने में। तपती दोपहरी में रेडियो सेट पर सुनाती है वो अपने नाम के फरमाइशी गीत, साथ ही सुनती है वो बातें सामाजिक मुद्दों जैसे बेटी अनमोल, महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिस्सा और भी बहुत कुछ, जो लगते हैं उसे अपने से मुद्दे, जो लगते हैं उसे अपने से मुद्दे, उतरते हैं गहरे भीतर गीत संगीत के मानेद, मजबूती से फिर उठकर बीज लेती है बंजर जमीन। आज वह सशक्त हो रही है, आज वह सशक्त हो रही है मन से और तन से भी, वहीं स्टूडियो में बैठी सखी मशगूल है शब्दों में छुपा कुछ अपना अनकहा सुनाने को, शायद जो कभी कह ना पाए, शायद जो वो कभी कह ना पाए या कोई सुनना ही ना चाहे। खुश है वो यही सोचकर कि उसे भी सुना जा रहा है, कि उसे भी सुना जा रहा है। टटोलती रही जिसे हर पल वो वजूद उसे आज मिला है, कार्यक्रम का अंतिम गीत वो अपनी पसंद का सुना रही है, कार्यक्रम का अंतिम गीत वो अपनी पसंद का सुना रही है। धन्यवाद सर, आकाशवाणी का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।
2: इस कार्यक्रम का बहुत कुशलता से जो संचालन कर रहे हैं, मेरी मुराद सत्यनारायण स्नेही जी की ओर है। अब मैं डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही जी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपना कविता पाठ प्रस्तुत करें।
0: तमाम कवियों की कविताओं को सुनने के बाद मैं भी एक छोटी सी कविता आपके साथ साझा कर रहा हूं। शीर्षक है चिमटा।
3: स्वागत।
0: हर घर में अगर कहीं नहीं तो रसोई में जरूर होता है चिमटा। चूल्हे और पेट के बीच आग के साथ की लड़ाई है, जहां एक जलती है वहीं दूसरी मिटाई जाती है। चिमटा चूल्हे और पेट के बीच आग के साथ की लड़ाई है, जहां एक आग जलती है दूसरी मिटाई जाती है। चिमटा चूल्हे की आग तवे के ताप में रोटी के साथ खड़ा है, ये सेक में रोटी को पकाता है, राख में दबी हो आग को खरोड़ कर सुलगाता है। चिमटा छोटा बड़ा नुकीला चौड़ा अब नए नए आकार में आता है। चिमटा छोटा बड़ा नुकीला चौड़ा अब नए नए आकार में आता है, अंगारों की धधक घन की चोट सहते लोहे के औजार बनाता है, जब चिमटा सहलाने लगे तब आभूषण सजाता है। जब चिमटा सहलाने लगे तब आभूषण सजाता है। चिमटा बड़ा धार्मिक है, चिमटा बड़ा धार्मिक है, कीर्तन भजन की लय में बजाता है, साधुओं के धुने में अटल खड़ा अभिमंत्रित भस्म उठाता है। चिमटा राजनीति से दूर रहता है, चिमटा राजनीति से दूर रहता है, क्योंकि ये जकड़ता है। जहां चमचे सलीके से सजते हैं वहां चिमटा पकड़ता है। चिमटा कैसा भी हो

0: वो हाथ की करामात पर ही हरकत दिखाता है। चिमटा कैसा भी हो वो हाथ की करामात पर ही हरकत दिखाता है, इसी हाथ से हर चीज पकड़ता है। वो ना तो रखता है ना बांधता है, वो ना तो रखता है ना बांधता है, नहीं कुछ अपनाता। दरअसल चिमटा हर पकड़ी हुई चीज को छोड़ जाता है, हर पकड़ी हुई चीज को छोड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के इस 90 वर्षों के हर्षो उल्लासमय उत्सव को इस तरह से भव्य रूप से मनाने के लिए मैं तमाम आमंत्रित कवियों की ओर से आकाशवाणी शिमला का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आपको बहुत बहुत बधाई। और ये आकाशवाणी का जो सफ़र 90 वर्षों से चला है, ये उत्तरोत्तर विकसित और परिवर्धित और परिमार्जित हो और अपनी महती भूमिका जो समाज में आज तक आकाशवाणी ने निभाई है, उस भूमिका का निर्वहन इसी शानदार तरीके से भविष्य में होता रहे, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुप्रसिद्ध कवियों का। आज की यह काव्य गोष्ठी केवल कविताओं का पाठ नहीं रही, बल्कि भावनाओं और संवेदनाओं और साहित्यिक चेतना का सुंदर उत्सव बन गई है। अब मेरा निवेदन रहेगा आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख श्री अनिल वर्मा जी से कि वो इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय, वरिष्ठ कवियों और सभी सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद कहें।
2: आदरणीय सम्मानित कविगण, आदरणीय डीडीजी साहब श्री कश्मीर सिंह जी, आदरणीय हमारे समाचार प्रमुख श्री रितेश कपूर जी, दूरदर्शन से पधारे कार्यक्रम प्रमुख श्री सुमित जी, अन्य अधिकारीगण और जितने भी हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, जो हमने एक कवि गोष्ठी का जो आयोजन किया है, ये ऐसा लग रहा था कि ये दौर हमारा चलता रहे। ऐसे संस्मरण जो हमारे को उन्होंने याद कराए, मुझे बहुत आज अपने आप को गौरव महसूस हो रहा है कि हमने एक ऐसी संस्था को ज्वाइन किया, ऐसी संस्था को हम अपनी सेवाएं दे पाए कि जहां से आपने अपने संस्मरण हमारे को बताए और ये जन जन से जुड़ा हुआ है और आपने जो इसको कविताओं में इसको सुनाया, हमारे को ये संग्रह किया, ये तो कमाल का ही था। और मैं समझता हूँ आभार है हमारे आकाशवाणी परिवार की तरफ से कि आपने इसको हमारे को आयोजित करने में जो मौका दिया उसको हम सफल हो पाए। आकाशवाणी के 90 वर्ष जो पूरे हो रहे हैं, इस अवसर पर हमें एक मौका मिला कि कुछ आयोजन किए जाएं। लोक संस्कृति और बाकी जितने हमारे लोकगीत हैं उनको तो संजोड़ने में हमारा पूरा योगदान रहने का प्रयास रहता ही है, लेकिन साहित्य भी उसको जोड़ा जाए। प्रदेश में आप लोग सम्मानित साहित्यकार हैं, कवि हैं और बाकी जितने सम्मानित क्षेत्रों में हमारे सम्मानित लोग हैं, उनको सब पे बार बार मौका मिले, वो आके आकाशवाणी से जुड़े। हमारा ये प्रयास था कि हम इसमें आपको जोड़ सकें, तो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। मेरे को आज ये बात कहते हुए बड़ा गर्व भी महसूस हो रहा है कि जब हमने ये बात की कि आयोजन किया जाए, हमारे डीडीजी साहब ने पूरा सहयोग दिया, कहते कविताओं का तो मैं भी बहुत शौकीन हूँ, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। और एंड में देखो इन्होंने बड़ी अच्छी अपनी उसको कैसे समेटा उस बात को, तो इन्हों का पूरा सहयोग ना होता और रितेश जी का, दीपक जी का और दूरदर्शन का तो विशेषकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने हमारे साथ ये आयोजन किया। साथ ही आकाशवाणी जो हमारी अभियंत्रिकी टीम है, ये बहुत निरंतर रूप से हमारे साथ लगी रही और हमारे को मौका दिया कि आप लोग करिए इसको आयोजन को, हम सब मिलकर करेंगे। आप सबको बुलाना हमारे लिए बहुत एक गौरवशील, हमारे को एक मौका मिला है, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। धन्यवाद।
1: शब्दों का कारवां अविरल चले, ज्ञान के विकास फले फूले, साहित्य गोष्ठियों की महफिल यूं ही सजती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इस विशेष आयोजन को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य पर आकाशवाणी के स्टूडियो में आयोजित कवि गोष्ठी की अंतिम कड़ी। इसी के साथ अब सपना ठाकुर को आगे दीजिए साहित्य दर्पण कार्यक्रम संपन्न करने की। अगले सप्ताह इसी दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल कांगड़ा के धर्मशाला में विशाल विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस महाशिविर में देशभर के शीर्ष न्यायविदों, न्यायाधीशों, विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम नाथ ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना विधिक सेवा संस्थाओं का मूल उद्देश्य है। उन्होंने नागरिकों से संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक गुरमीत सिंह संधावालिया ने न्याय की सुलभता और विधिक साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने नागरिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की समझ को आवश्यक बताया। शिविर में न्यायाधीश नोंग में कापम कोटेश्वर सिंह और संजय करोल ने भी संविधान की मूल भावना और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार रखे। इस अवसर पर आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि भी वितरित की गई। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव कल 8 जून से शुरू होगा। 12 जून तक चलने वाले इस भव्य आयोजन का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 कलाकार इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। उपायुक्त व अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आयोजन समिति अनुपम कश्यप ने बताया कि ग्रीष्मोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना तथा स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देना है। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
1: उद्घाटन संध्या पर बॉलीवुड पार्श्व गायक शबाब शाबरी अपनी प्रस्तुतियाँ देकर लोगों का मनोरंजन करेंगी, जबकि दूसरी संध्या पर ज्योतिका टांगरी, तीसरी संध्या पर नाटी किंग कुलदीप शर्मा, चौथी सांस्कृतिक संध्या पर पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर और अंतिम समापन संध्या पर जस्सी गिल और बबल राय अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल एडवेंचर और रोमांस से भरपूर होगा। सैलानियों व स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर से शिमला की पहाड़ियों की सैर करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा शिमला समर फेस्टिवल के दौरान स्कूली बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, डॉग शो और फूड फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इसका उद्देश्य विश्व में भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कृषि, मत्स्य व वानिकी के क्षेत्रों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम बोझ से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन रखी है, जो इस बात पर जोर देती है कि बीमारी, उससे जुड़े बोझ और जान गंवाने वालों से जुड़ा डेटा कैसे केंद्रित और किफ़ायती समाधानों की दिशा में कदम उठाने में मदद कर सकता है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है, जिससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर शिमला घनाटी मार्ग के समीप एक LNT मशीन के पलटने से इस मार्ग पर यातायात पिछले 2 घंटे से बाधित है और इस मार्ग पर काफ़ी लंबा जाम लग गया है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यातायात को सुचारू करने का प्रयास लगातार जारी है। केंद्र सरकार के सहयोग से लाहौल स्पीति के युवाओं, उद्यमियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए 9 जून को केलंग में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ये कार्यशाला मार्केटिंग एंड डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल टूल्स फॉर ब्रांड बिल्डिंग विषय पर आधारित होगी। कार्यशाला में प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग और व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। अधिक

0: हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता से।
1: कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से इंडोर स्टेडियम के एलांग में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। कार्यशाला में प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग और व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। आयोजकों के अनुसार ये प्रशिक्षण स्थानीय युवाओं, व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। ये कार्यशाला डिजिटल युग में सफलता की नई राह दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ FM शिमला पर भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। जी हाँ, एक और खुशनुमा सुबह में लेकर गीतों का तराना हम एक बार फिर हैं आपके साथ करने के लिए, आपका मनोरंजन गीत संगीत के साथ। तो आइए आज के दिन का आगाज करते हैं पुरानी फिल्मों से इस कार्यक्रम के साथ, जिसे लेकर आज मैं हूँ आपके साथ शेफाली वर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं दिल अपना प्रीत पराई फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

1960 में रिलीज हुई रोमांटिक ड्रामा बेस्ड फिल्म दिल अपना प्रीत पराई फिल्म का गीत अभी आपने सुना। फिल्म का निर्माण किया था एस ए बागर ने, इस फिल्म को लिखा था और निर्देशित किया था किशोर साहू ने। आपको बताएं फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे राजकुमार, मीना कुमारी और नादिरा। इस फिल्म का गीत जो अभी आपने अभी सुना, ये आज भी उतने ही प्यार से सुना जाता है, दिल से सुना जाता है, जितना कि 60 के दशक में सुना जाता था। और मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। तो आइए क्यों ना ऐसे ही दिल छू जाने वाले गीतों का सिलसिला यूं ही बरकरार रखें और सुनें कार्यक्रम का अगला गीत, एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, गीतकार हैं एस एच बिहारी, संगीतकार ओपी नैयर।

0: 1962 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का गीत अभी आपने सुना। फिल्म को लिखा और निर्देशित किया राज खोसला ने। मुख्य भूमिकाओं में नजर आए जॉय मुखर्जी और साधना।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी

0: गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
1: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। कार्यक्रम का अगला गीत कश्मीर की गली फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं SH बिहारी संगीतकार ओपी नैयर।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर ये समय है लोक संगीत का। जी हाँ, ये लोकगीत ही तो हैं जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। हर एक लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए लोगों के सुख दुख, त्योहारों और रीति रिवाजों को दर्शाते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में ऐसे में सुनते हैं बलदेव सांख्यान की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, हर एक लोकगीत में संरक्षित है यहाँ की संस्कृति। हिमाचल की खूबसूरत वादियाँ, कलकल बहती नदियाँ, यहाँ के नज़ारे और यहाँ के लोकगीत, यही तो है देवभूमि हिमाचल की पहचान। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं राम स्वरूप शांडिल की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं फिल्म शिमला। 12 बजने को हैं। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत

0: इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले साल द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वे राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य सुरक्षा और पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग समेत द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा के लिए उत्सुक हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया है। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों में मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तारीख है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन के लंच तक 6 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 126 रन और ऋषभ पंत 81 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और मानव सुथार लंच तक क्रीज पर मौजूद थे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sunil Verma. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today said that the joint commission between India and Indonesia is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. The external affairs.

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 12:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं महिला सम्मेलन। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ एफएम शिमला पर भी सुन सकते हैं।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सफर में मैं हूँ आज आपके साथ आपकी सखी जया ठाकुर
1: और मैं उमा ठाकुर।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: देखिए बहनों, समय और संवाद रिश्तों को मजबूत बनाने वाले दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके बिना कोई भी संबंध जो है लंबे समय तक टिक नहीं सकता।
0: जी हाँ, परिवार केवल एक घर नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कारों और विश्वास का वह आश्रय है जहाँ हर व्यक्ति का अपनी पहचान होती है। बहनों, रिश्ते केवल नाम या जिम्मेदारियों से नहीं बनते बल्कि उन्हें मजबूत बनाना पड़ता है और ये काम भावनाएं करती हैं। भावनाएं ही रिश्तों में अपनापन, समझ और विश्वास पैदा करती है। जब हम किसी की खुशी में खुश होते हैं और दुख में साथ खड़े रहते हैं तभी रिश्ता बनता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा जय आपने। और भावनाओं के बिना देखिए रिश्ते केवल औपचारिक बनकर कहीं ना कहीं रह जाते हैं और प्रेम, सम्मान, सहानुभूति और विश्वास जो है सभी रिश्तों की नींव होती है। हम कहते हैं ना कि जो महिलाएं होती हैं, नारी होती हैं, वो वैसे भी परिवार की एक अहम धुरी होती है। तो रिश्तों को किस तरह से सहेज कर रखना है, किस तरह से सभी रिश्तों की अहमियत जो है अपने बड़े बुजुर्गों का कैसे सम्मान करना है, बच्चों को रिश्तों के अहमियत के बारे में कैसे समझाना है, ये एक जो महिला है, नारी है, घर की जो धुरी है, वो बखूबी इन सभी रिश्तों को निभा सकती है।
0: जी, ये सभी भावनाएं रिश्तों को गहराई देती है। जब हम अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो आपसी दूरी भी कम होती है।
1: बिल्कुल। और देखिए, आज के समय में तो जो है हम कई बार होता है ना कि जो हमारी भावनाएं होती हैं उसको कहीं ना कहीं हम छुपाने में लग जाते हैं और दूसरों की भावनाओं को भी हमारे पास सुनने का, दूसरों को सुनने का संवाद की कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कमी है। तो ऐसे में देखिए जया, हम अपनी जो भाग दौड़ की जो ज़िंदगी है, जो मानव भीड़ है, उसमें हम कहीं ना कहीं इतना खो गए हैं, इतना बिजी हो गए हैं कि रिश्तों को कैसे सहेज कर रखना है, कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, ये हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं।
0: जी, और जिससे उमा तनाव और अकेलापन जो है वो बढ़ता है।
1: जी,
0: भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है और हम सच में ना जाने कहां पर इतने व्यस्त है कि अपनी भावनाओं को अपनों तक पहुँचा ही नहीं पाते हैं। शायद जीवन की भागदौड़ में बिजी हो गए हैं या फिर हम रिश्तों में कंजूसी करने लगे हैं। शायद हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर से और बेहतरीन में लगे रहें।
1: जी देखिए, आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाना भी बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम सभी को ये जानना है, समझना है कि रिश्तों को जो सहेजना है वो भी बहुत ज़रूरी है। काम तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो घर परिवार है, जो बड़े बुजुर्ग है घर में, उनकी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, वो सब निभाना भी कहीं ना कहीं हम सभी की ही एक नैतिक जिम्मेदारी है। और इसमें जो महिलाएं हैं वो अपना काम बखूबी निभाती भी हैं।
0: जी, और घर चलाने की भागम भाग में बहुत कुछ पीछे छूट रहा है, पर क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जीवन अपनों के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं हम उनसे दूर तो नहीं निकल आए हैं?
1: जी,
0: इस बात पर एक बार जरूर हमें विचार करना चाहिए।
1: जी, रिश्तों को संभालने के लिए हम सभी जो है अपनी जो प्राथमिकताएं होती है ना, वो हमें तय करनी चाहिए और उसमें जो है परिवार को हमें सबसे ऊपर रखना है। वैसे तो हम सभी जो है परिवार को ही सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन और जो गृहिणी है या फिर कामकाजी महिला है, वो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए जो है घर से बाहर भी निकल रही है और घर परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही है। तो हम सभी को ये सोचना है, समझना है कि परिवार का जो बंधन है, जो प्यार का बंधन है, वो बहुत ही हमें देखिए नसीब से मिलता है और अपनापन उसमें अगर ना हो तो उसमें कहीं ना कहीं वो कमी महसूस होती है। इसलिए जो परिवार की जो पूंजी है वो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हम कह सकते हैं।
0: जी हाँ, हमें अपने परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का जो बेस्ट तरीका है कि सबके साथ बैठकर जो है वो खाना खाएं।
1: जी, और जैसे घर घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएं, उनके जो जीवन अनुभव है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चों को भी थोड़ा सा, जैसे आपने बताया घर में सुबह चाय नाश्ता है या शाम का जो खाना है वो साथ में मिलकर अगर हम खाते हैं, और बच्चों को भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ उनकी कहानियाँ, दादा दादी की जो कहानियाँ हैं उनके पास, देखिए अपने जीवन अनुभव बहुत ज़्यादा है।

0: तो हम जो है इन सब चीज़ों से रिश्तों को और ज़्यादा सहेज कर रख सकते हैं।
1: जी, भावनाएं हमारे जीवन की सुंदरता है। जब हम अपनी और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तभी जीवन सुखमय बनता है।
0: जी, और बहनों देखिए, रिश्तों की डोर नाजुक ज़रूर होती है, लेकिन प्रेम और विश्वास जो है उसे अटूट बनाता है। तो हम सभी को भी ये सोचना है, जो रिश्ते हैं उसमें भावनाओं का होना बेहद ज़रूरी है। तो हमें दूसरों की भावनाएं भी समझनी है और अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए समय ज़रूर देना है।
1: जी,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: बहनों, आज का युवा देश का भविष्य है, लेकिन जब युवा नशे जैसी बुराई के जाल में फंसने लगते हैं तो न केवल उनका जीवन प्रभावित होता है बल्कि पूरा परिवार और समाज पर भी इसका असर पड़ता है।
2: जी देखिए, सभी माता पिता का ये सपना होता है कि उनका बच्चा जो है पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और परिवार और समाज का नाम रोशन करे। लेकिन बहनों, आज की बदलती जीवन शैली, सोशल मीडिया के प्रभाव और गलत संगत, या फिर कई बार होता है ना कि मानसिक तनाव बच्चों में इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से जो है युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और जो है अपना भविष्य उनका जो है अंधकार में कहीं ना कहीं बन जाता है।
1: जी, मानसिक तनाव और आसान उपलब्धता के कारण जो है वो कई युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। जैसे उमा आपने कहा कि जिंदगी वजह से उनका भविष्य जो है वो अंधकार बनता जा रहा है। बहनों, किशोरावस्था और युवावस्था जीवन की सबसे नाजुक अवस्था होती है, जहाँ पर मित्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। कई बार युवा अपने मित्रों के प्रभाव या गलत संगत की वजह से नशा करने लगते हैं और एक बार जिज्ञासा के कारण जो शुरू हुई आदत है वो धीरे धीरे लत बन जाती है।
2: जी जया, देखिए, साथ ही मीडिया का जो सोशल मीडिया है ना, उसका गलत प्रभाव या फिर पढ़ाई का तनाव हो सकता है, करियर की चिंता हो सकती है, बेरोजगारी भी आजकल एक ज्वलंत मुद्दा है और खाली समय बहुत ज़्यादा है बच्चों के पास जो युवा हैं, तो ऐसे समय में वो एक गलत संगत में पड़ सकते हैं जैसा आपने पहले भी बताया। और कहीं ना कहीं संवाद की कमी कई बार होती है कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से भी जो है नशे की लत जो है ये इन सब चीज़ों का कारण बनते हैं।
1: जी बिल्कुल, जिसकी वजह से युवाओं में शारीरिक मानसिक प्रभाव पड़ता है। उसमें चिंता, चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास की कमी, परिवार से दूरी, पढ़ाई में कमी, आर्थिक नुकसान जैसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है जो अभिभावक की चिंता की और ज़्यादा बढ़ा देती है।
2: जी, और ऐसे में देखिए, अभिभावक की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उनके साथ हमेशा खड़े रहें, उनसे बातचीत करते रहें। और अगर देखिए, कई बार होता है कि बच्चों के मन में कोई चिंता होती है या पढ़ाई से संबंधित कोई तनाव होता है, तो आपकी ये एक जिम्मेवारी है कि उनके पास बैठकर समस्या का समाधान ढूंढने में जो है उनकी मदद ज़रूर करें।
1: जी, माता पिता केवल अनुशासन देने वाले नहीं बल्कि अच्छे मित्र भी होने चाहिए।
2: जी,
1: ताकि बच्चे आप से जो है वो अपनी समस्या खुलकर बता सके, जिससे उनके गलत रास्ते पर जाने की जो संभावना है वो कम होती जाती हो जाती रहे।
2: जी, और कई बार होता है कि ज़्यादा प्रतिबंध जो अभिभावक होते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चों पर ज़्यादा रोक टोक लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं विद्रोही बन जाते हैं। उन्हें हर छोटी छोटी बातों पर डांटने के बजाय अगर आप थोड़ा सा विश्वास उन पर रखें, उन्हें अच्छे बुरे के फ़र्क के बारे में समझाएं, तो वो आपसे ज़्यादा उनका रिश्ता गहन हो जाएगा और वो सारी बातें जो घर जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे, तो सारी बातें आपसे शेयर कर सकते हैं।
1: जी, और साथ ही बहनों, हम सभी जानते हैं कि परिवार ही बच्चों की पहली पाठशाला।

0: होती है
1: जी।
0: उन्हें बचपन से ही बड़ों का सम्मान करना, अनुशासन, जिम्मेदारी और जो है वो इसके बारे में हम पढ़ा सकते हैं उन्हें पाठ कि किस तरह से बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए।
1: जी, माता पिता कई बार जो है बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं भी रखते हैं जया, और कई बार हम देखते हैं कि समाज में जो दूसरे बच्चे होते हैं उनसे हम अपने बच्चों की तुलना करने लग जाते हैं। बच्चा तो देखिए एक कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होता है, उसमें उसको हम जैसा आकार देंगे, जैसी उसके उसमें नैतिक मूल्यों का बीज हम बोएंगे तो वैसा ही वो आगे चलकर अपने जीवन में कुछ अच्छा बनेगा। तो ऐसे में दूसरों से तो बच्चों की तुलना कभी ना करें, क्योंकि सबकी जो क्षमता होती है ना वो सबकी अपनी अपनी होती है, और सफलता का जो अनावश्यक दबाव होता है वो भी बच्चों पर ना डालें।
0: जी बहनों, बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें खेल कूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में बिजी रखें। साथ ही अभिभावक को बच्चों की संगत का भी खास ध्यान रखना है, उन्हें इंटरनेट के गलत प्रभाव के बारे में बताएं। बहनों, बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में या आसपास के परिवेश में देखते हैं। इसके लिए माता पिता को अपने बच्चों का आदर्श बनना होगा ताकि वे नशे के नुकसान के बारे में जान सके।
1: जी, और बच्चों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उन पर आप विश्वास रखें, उनको जो है अपनापन आप ज़रूर दें, और एक जागरूक माँ, एक संवेदनशील पिता और परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो मिलकर बच्चों की जो युवा पीढ़ी है उसको सुरक्षित, स्वस्थ और उज्जवल रखने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।
0: जी, तो बहनों, बच्चों को केवल सुविधाएं नहीं, समय दीजिए, उपदेश नहीं, विश्वास दीजिए, केवल सफलता का दबाव नहीं, जीवन जीने की प्रेरणा दे। एक जागरूक परिवार ही अनुशासन समाज की नींव रख सकता है।
1: जी, और नशा मुक्त समाज के लिए जागरूक परिवार, समाज और देश निर्माण के लिए युवा पीढ़ी का ख्याल रखना हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है। तो देखिए, बातचीत का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, सुनवाते हैं ये गीत।
0: जी,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मैंने देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज का जो युग है वो डिजिटल युग है, और आज कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं।
2: जी, और बदलते समय के साथ साथ महिलाओं की भूमिका भी तेजी से बदल रही है।
1: जी,
2: आज महिलाएं केवल घर और परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है।
1: जी, और देखिए, आज के समय में डिजिटल तकनीक का ज्ञान जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। और बात करें डिजिटल साक्षरता की, तो बहनों देखिए, डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल मोबाइल चलाना नहीं होता है, बल्कि इंटरनेट का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग किस तरह से करना है, ये सब जो है डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत आता है।
2: जी बहनों, डिजिटल ज्ञान आज सभी के लिए बेहद जरूरी है। इससे आप जो है वो काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर घर बैठे ही निपटा सकती है। आज की यदि किसी पोस्ट के लिए आवेदन करना है या किसी संस्थान में दाखिला लेना है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकती है, ईमेल भेज सकते हैं, डिजिटल भुगतान कर सकती हैं, सरकारी पोर्टल का जो है वो उपयोग कर सकती हैं, और साथ ही थोड़ा सा सतर्क और सजग रहकर साइबर धोखाधड़ी से भी बच सकती हैं।
1: जी, और बहनों देखिए, आजकल स्मार्टफोन तो सभी के पास हैं, ज़रूरत है तो बस थोड़ा सा सजग होकर डिजिटल साक्षर होने की, जिसकी वजह से जो है

0: आप अपनी दिनचर्या के काम आसानी से निपटा सकती हैं और जो बाकी बचा हुआ समय होता है ना, उसे अपने शौक के काम भी उस समय में पूरा कर सकते हैं।
1: जी, आप अपने मोबाइल से भी जो है वो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकती है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकती है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में सहायता कर सकती है, वीडियो कॉल के माध्यम से दूर बैठे अपने परिजनों से जुड़ सकती है, ऑनलाइन प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकती है।
0: जी देखिए, आप जो है मोबाइल या कंप्यूटर का प्रयोग करके घर बैठे ही बेसिक कंप्यूटर, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग और भी बहुत सी जानकारी प्राप्त करके जो है डिजिटल साक्षर बन सकती हैं।
1: जी, और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी सीखकर आप डिजिटल स्मार्ट गृहिणी बन सकती है और साथ ही साइबर सुरक्षा की जरूरी बातें भी सीख सकती है, जैसे आपको अपने मोबाइल या ईमेल का मजबूत पासवर्ड रखना है, OTP किसी को ना बताएं, अज्ञात लिंक पर क्लिक ना करें, सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा ना करें।
0: जी, साथ ही आपको कुछ आधुनिक गैजेट्स की जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी है, जैसे स्मार्ट वॉच है, ये जो है आपको स्वास्थ्य निगरानी, कदमों की गणना या आपातकालीन जो अलर्ट होता है वो आपको सब इस स्मार्ट वॉच से आप आसानी से समझ सकते हैं।
1: जी, और फिटनेस बैंड में ये आपके जो है वो स्वास्थ्य का रिकॉर्ड और व्यायाम करते समय मॉनिटरिंग करता है। टैबलेट ये गैजेट ऑनलाइन पढ़ाई या ई पुस्तक पढ़ने के काम आता है। ब्लूटूथ हेडफोन ऑनलाइन मीटिंग प्रशिक्षण की जो कार्यक्रम है और ऑडियो सीखने की सुविधा भी देता है।
0: जी, और मैंने देखिए, आज की महिला केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं है बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है, और कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक जो गैजेट्स होते हैं वो महिलाओं को एक नई पहचान, नई संभावनाएं और नई उड़ान प्रदान कर रहे हैं।
1: जी, आवश्यकता केवल इस बात की है बहनों कि महिलाएं तकनीक को अपनाएं, निरंतर सीखती रहें और डिजिटल युग की चुनौतियों और अवसरों को समझें।
0: जी, एक सशक्त महिला की जो होती है वो ही सशक्त परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव होती है। इसलिए बहनों, तकनीक से जुड़ें, ज्ञान से आगे बढ़ें और देश के निर्माण में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करें।
1: जी,
2: सजन रे झूठ मत बोल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो बहनों देखिए, आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो हर साल 7 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना है।
2: जी, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की जो थीम है, बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन, ये विषय खाद्य जनित बीमारियों को कम करने और हर स्तर पर सुरक्षित खाद्य प्रणालियों को लागू करने पर जोर देता है।
1: जी बिल्कुल, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक बेहतर डाइट लें और तभी हम जो है अपने आप को फिट रख सकते हैं, साथ ही कई बीमारियों के खतरों से भी बच सकते हैं। हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए बहनों हमें हमेशा पौष्टिक आहार का सेवन करना है। फल सब्जियों को अपनी जो रूटीन की डाइट है उसमें ज़रूर शामिल करें।
2: जी, और असुरक्षित खाना खाने से लोग बीमार पड़ते हैं, इससे आजीविका को नुकसान पहुंचता है और अर्थव्यवस्थाएं कमजोर होती है। बहनों, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दुनिया भर में लोगों को जो भोजन मिले वह पूरी तरह से सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण हो, जो किसी भी तरह से स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए।
1: जी, तो चलिए अब बहनों को एक और गीत सुनवाते हैं।
2: जी,

0: बहनों, बहुत कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन जिंदगी शायद उनकी होती है जो बहुत कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं।
1: जी, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की।
0: नमस्कार, नमस्कार।

ये था महिला सम्मेलन कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। 1 बजने को हैं। समाचारों के लिए आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण

0: क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फिनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपये के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए 2 ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो आइए आगाज करते हैं कार्यक्रम का चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के इस गीत के साथ। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं, गीतकार हैं समीर, संगीतकार सोनू निगम।

0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला।
3: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
4: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
3: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
4: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
3: जानकारी लें, अधिकार जानें।
4: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, चल रहा है प्यार का मौसम, तो ऐसे में इस मौसम में दीवाना होना तो बनता ही है, और ये दीवाना मन जब चल पड़े इस राह पर तो वापस आना इसका मुश्किल है।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। कार्यक्रम का अगला गीत हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें हैं। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक।

0: हे, रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

जी हाँ, ये है मोहब्बत, जिसे हो जाए वही जानता है इसकी अहमियत। सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम 103.7 MHz FM शिमला पर।

इसी सॉन्ग के साथ म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में आज बस इतना ही। वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दोपहर के 2 बज चुके हैं। एफएम शिमला पर यह समय रहता है सब रंग कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं बाबुल सुप्रियो के गाए इस गीत को।

श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।

0: दोपहर के 2:15 होने को हैं। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के

0: 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
2: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
3: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है।

0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज

0: विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6ठे ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दोपहर के 2:30 हुए हैं। समय है शिखरों के स्वर कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं राजपाल की आवाज में ये लोकगीत।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम शिखरों के स्वर में आज बस इतना ही।
1: हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ढली नारकंडा रामपुर सड़क को फोर लेन में विकसित किया जा रहा है और इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने आज शिमला जिले के हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फोर लेन परियोजना में सुरंग के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भूस्खलन से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हाटू माता रोपवे परियोजना के निर्माण के दिशा में कार्य कर रही है और नाबार्ड की सहायता से ये परियोजना चलाई जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाटू माता सड़क के सुधार कार्यों के लिए धनराशि मंजूर की गई है और इस कार्य में पेड़ों को कटान से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने निर्विरोध चुनी गई नगर पंचायत नारकंडा को 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। आज विश्व खाद्य दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने व संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख करते हुए मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का

0: आखिर किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है, वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। अटल टनल रोहतांग क्षेत्र में पिछले कुछ समय से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है और यातायात दबाव को देखते हुए लाहौल स्पीति जिला प्रशासन में एक कार्य योजना तैयार की है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि कुल्लू जिला प्रशासन व सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ इस बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन को संभावित आपदाओं व चुनौतियों से निपटने के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार रखने को कहा गया है।
2: ओवर द ईयर्स ये देखा गया है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो काफी इंक्रीज हुआ है, इससे डिजास्टर लाइक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो अटल टनल है इसमें मेंटेनेंस कब कब होती है, इसका ऑक्सीजन लेवल, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर तो क्या SOPs रहेंगी इसमें। BRO से बोला भी गया है कि इन केस ऑफ डिजास्टर तो सिनेरियो बिल्डिंग करी जाए, इसमें डिफरेंट SOPs बनाई जाए ताकि हम इसमें मिलके काम कर पाएं और ये प्लान कर पाएं कि इस जगह को ये जितनी सुंदर है और जितना टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बना रहे और कोई आउटवर्ड इंसिडेंट ना हो।
0: सिरमौर जिले की दुर्गम क्षेत्र हरिपुर धार का राजकीय प्राथमिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इस स्कूल में 200 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और स्कूल के 3 विद्यार्थियों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। स्कूल के अध्यापक कमल शर्मा ने बताया कि स्कूल के 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण जयंती माध्यमिक मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी मिल रहा है और इसके तहत प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। खास बात यह है कि हरिपुर धार स्कूल में हर वर्ष बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
3: ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी इस पाठशाला से हर वर्ष नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों का चयन होता रहा है। इस वर्ष भी हमारी इस पाठशाला से 3 बच्चों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। नवोदय के अतिरिक्त यहाँ से जो बच्चों का सिलेक्शन है वो सैनिक स्कूल के लिए भी हुआ था। 8 बच्चे ऐसे है जो स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट स्कॉलरशिप की जो योजना है उसमें 1,80,000 बच्चों को दिया जाता है, उससे लाभान्वित हो रहे हैं।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। आइए अब सुनते हैं सामायिक चर्चा। विषय है जनसमर्थ पोर्टल के 4 वर्ष और वाचक स्वर है अनुराग प्राशर का।
0: जनसमर्थ पोर्टल ने डिजिटल वित्तीय समावेशन और सरल क्रेडिट वितरण के 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसे 6 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। एकल विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर माने जाने वाला ये पोर्टल प्रौद्योगिकी आधारित और उपयोगकर्ता अनुकूल प्रक्रियाओं के माध्यम से संस्थागत क्रेडिट तक पहुँच को सरल बनाता है। ये पोर्टल कृषि, कारोबार, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और आजीविका सहित कई क्षेत्रों को कवर करता है। ये देश भर में विविध लाभार्थी समूहों का सहयोग करता है। कई भाषाओं में उपलब्ध जनसमर्थ एक एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम के तौर पर उभरा है। ये मंच उद्यमियों, किसानों और आजीविका चाहने वालों के लिए सुगमता, पारदर्शिता और कुशल क्रेडिट सुविधा को प्रोत्साहन देता है। पूरे भारत में उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षाएं आमतौर पर एक साधारण आवश्यकता से शुरू होती है, सही समय पर सही मदद। महत्वाकांक्षी उद्यमियों और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों से लेकर कृषि व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवा पेशेवरों तक कई लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए सुलभ और समय पर वित्तीय आवश्यकता होती है।

0: हालांकि सरकारी योजनाओं के माध्यम से कई अवसर मौजूद हैं, लेकिन कई पोर्टलों और प्रक्रियाओं को समझना आम तौर पर चुनौतीपूर्ण बना रहता है। इस आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने क्रेडिट संबंधी योजनाओं के लिए एक डिजिटल मंच के तौर पर जनसमर्थ पोर्टल की शुरुआत की। यह अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है जो लेंडर्स को सीधे लाभार्थियों से जोड़ता है। इसे सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और क्रेडिट वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है। जनसमर्थ ने अपनी यात्रा के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं और पोर्टल निर्बाध क्रेडिट वितरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को मजबूत करना जारी रखे हुए है। जनसमर्थ एकीकृत और यूजर के अनुकूल डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से क्रेडिट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। ये देश के ग्रामीण और वंचित वर्ग की आबादी की सुविधा के लिए 8 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है। ये पोर्टल क्रेडिट संबंधी 16 केंद्रीय सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल गेटवे प्रदान करता है। कृषि और नवीकरण ऊर्जा से लेकर उद्यमिता और आवास तक ये पोर्टल कई क्षेत्रों और समुदायों में समावेशी क्रेडिट पहुंच को सक्षम बनाता है। जनसमर्थ पोर्टल का प्रभाव देश भर में इसकी ओर से दी गई व्यापक क्रेडिट सुविधा और इसके द्वारा संभव बनाए गए उद्यमशीलता के सफर दोनों में देखा जा सकता है। लॉन्च होने के बाद ये पोर्टल देश भर में संस्थागत क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक प्रमुख डिजिटल मंच के रूप में उभरा है। 1 जून 2026 तक पोर्टल के माध्यम से लगभग 54.10 लाख आवेदनों पर काम किया जा चुका है, जिनकी कुल राशि 3,00,951 करोड़ है। इसके साथ ही बैंकों ने 49,55,000 लाभार्थियों को लगभग 2,76,494 करोड़ की राशि के लिए डिजिटल मंजूरी दी है। ये कुशल डिजिटल क्रेडिट तंत्रों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। एकल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया जनसमर्थ पोर्टल विविध क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।
1: जनसमर्थ पोर्टल के 4 वर्ष, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे सामायिक चर्चा। वाचन स्वर था अनुराग प्राशर का। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दिन के 3:10 हुए हैं। समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं बरसात फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश से निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दूं बापू?
0: बोल दे बेटा।

0: बापू।
1: अरे की है बरखुरदार,
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूँ लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार रहती है गोरी गोरी, गरीब किसान पिछोरी, मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
1: हाय की कहे, की कहे, प्यार की होए आए, प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
1: बोल दे बेटा।

0: ठीक है बापू, मैं जाता हूँ। आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए कठे जाए, मेरी बात भी तो सुने।
2: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी। जा घोड़ा ले आ, जा घोड़ा ले आ, कर जाने की तैयारी, कर जाने की तैयारी। हीरे की हसली दऊंगो, मोती को हार दऊंगो, लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लूंगो।
0: क्या शादी भी है व्यापार?
1: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार। ये कल मुही को सोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
0: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात। लाइए वो जेवरात,
1: ले ले,
0: बढ़ा दो हाथ।
1: ए घोड़ा लाओ घोड़ो।

0: ठीक है, अरे ठीक है, मारी सारी उम्र के कमाई गई डॉलर है। हाय भैया,
1: बोल दो बापू।
2: हाँ बोल दे बेटा।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं फिल्म शिमला पर। कार्यक्रम में अगला गीत लेकर आए हैं पतिता फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज़ है, गीतकार हैं साहिर, संगीतकार एसडी बर्मन।

0: हेमंत कुमार के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
2: हर खुशी अब लगे नमी,
1: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी और मैं हूं आपकी दोस्त आकृति शर्मा। दोस्तों, आज का दौर मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट का दौर है। पहले जहां लोग हफ्ते में एक बार टीवी पर फिल्म देखने का इंतज़ार करते थे, वहीं आज हमारे मोबाइल फ़ोन में ही पूरी दुनिया मौजूद है। बस एक सिंगल क्लिक किया और फिल्में, वेब सीरीज़, शॉर्ट वीडियोस और रील्स का खजाना हमारे सामने आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये फिल्में और वेब सीरीज़ सिर्फ हमारा टाइम पास करती हैं या फिर हमारे सोचने, समझने और लाइफस्टाइल को भी प्रभावित करती हैं? आज हम इसी बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, फिल्मों और वेब सीरीज़ का युवाओं पर असर। अगर फिल्मों की बात करें तो सिनेमा का हमारी लाइफ से बहुत पुराना रिश्ता है। युवाओं पर फिल्मों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट मोटिवेशन के रूप में देखने को मिलता है। जब हम स्क्रीन पर किसी कैरेक्टर को स्ट्रगल करते हुए और अंत में सफलता हासिल करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ बड़ा करने का पैशन जाग जाता है। दोस्तों, बात जब मोटिवेशन और अपने सपनों के लिए लड़ने की हो ही रही है तो क्यों ना एक ऐसा ही गाना सुना जाए। पेश है फिल्म रॉकस्टार का बहुत पावरफुल और इंस्पायरिंग गाना, फिर से उड़ चला।

जरूरी है। चलिए इस थॉट के साथ म्यूजिक का सफर आगे बढ़ाते हैं। फिल्मों ने हमें सिर्फ लड़ना ही नहीं बल्कि प्यार करना भी सिखाया है। तो पेश है बीते जमाने का एक ऐसा एवरग्रीन रोमांटिक गाना जो आज के युवाओं के दिल को भी छू लेता है।

अभी हम सुन रहे थे गाना फिर से उड़ चला, जो हमें खुद पर भरोसा रखना सिखाता है। फिल्मों ने हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने की इंस्पिरेशन दी है। कई युवाओं ने इसे एथलीट की बायोपिक देखकर स्पोर्ट्स में करियर बनाने का डिसीजन लिया, तो कई लोगों ने सोशल इश्यूज पर बनी फिल्में देखकर समाज सेवा की राह चुनी। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां सिनेमा का पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वहीं कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं। कई बार युवा फिल्मों में दिखाए गए फेक ग्लैमर और लग्जरी को ही रियल लाइफ समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि सक्सेस रातों रात मिल जाती है, पर असल जिंदगी की हकीकत अलग होती है। रियल लाइफ में कामयाबी के पीछे सालों की कड़ी मेहनत, पेशेंस और लगातार किए गए एफर्ट्स होते हैं। इसीलिए रील और रियल लाइफ के बीच का अंतर समझना बहुत

अब बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेब सीरीज की, जो पिछले कुछ सालों से यूथ के बीच क्रेज बन चुकी है। कॉलेज कैंपस हो या फ्रेंड्स की गेट टुगेदर, वेब सीरीज की चर्चा आजकल आम बात है। इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि वेब सीरीज ने मेंटल हेल्थ, करियर प्रेशर और उलझे हुए रिश्तों जैसे नए और ज़रूरी टॉपिक्स पर खुलकर बात करना शुरू किया है, जो युवाओं को सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू थोड़ा गंभीर है। कुछ सीरीज में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस, गाली गलौच या अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल दिखाई जाती है। अगर हम बिना सोचे समझे ऐसे कंटेंट देखते रहे तो ये हमारे व्यवहार और

सोच को अग्रेसिव बना सकती है। इसके अलावा इसका सीधा असर हमारे फैशन पर भी पड़ता है। किसी कैरेक्टर का हेयर स्टाइल या ड्रेसिंग सेंस देखते ही देखते ट्रेंड बन जाता है। किसी की स्टाइल को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस चकाचौंध में अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी खो देना सही नहीं है। चलिए इस संजीद बातचीत के बीच थोड़ा सा रोमांस का तड़का लगाते हैं। अब सुनते हैं एक खूबसूरत गाना।

दोस्तों, ये फिल्में और वेब सीरीज़ सिर्फ हमारी सोच ही नहीं बल्कि हमारी लैंग्वेज यानी बातचीत के तरीके को भी बदल रही हैं। कई फिल्मों के डायलॉग्स इतने पॉम्प हो जाते हैं कि हमारे डेली लाइफ की बोलचाल का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों से चैट करते हुए या मजाक करते हुए हम अक्सर फिल्मी पंचलाइंस का यूज़ करने लगते हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या फिल्में और वेब सीरीज़ को पूरी तरह अच्छा या बुरा कहा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि इसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा नज़रिया क्या है। एक ही फिल्म किसी की लाइफ को कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर कर सकती है और किसी दूसरे के लिए ये सिर्फ 3 घंटे का टाइम पास हो सकती है। सब कुछ बस इतना पर निर्भर करता है कि हम स्क्रीन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी चर्चा अभी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए पहले सुनते हैं एक पुराना सुनहरा दौर का एक गाना।

दोस्तों, आज का यूथ पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट और अवेयर है। उनके पास इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम एंटरटेनमेंट का मज़ा भी लें और सही गलत का फिल्टर भी लगा कर रखें। किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना समझदारी नहीं है। एक और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ जो देखने को मिली है वो ये है कि इस डिजिटल एरा ने युवाओं के लिए करियर के नए और एक्साइटिंग रास्ते खोल दिए हैं। आज फिल्मों और सीरीज़ के इंस्पायर होकर यूथ कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे फील्ड्स में आगे बढ़ रहे हैं। कई युवा अपने खुद के यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट चला रहे हैं और हमारी अपनी यूनिक कहानियाँ दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये बदलाव वाकई कमाल का और अवसरों से भरा हुआ है। अब दोस्तों, इस सफ़र को थामने का वक्त आ गया है, पर चलते चलते बस इतना समझ लीजिए कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर कहानी हमें एक नई सीख देती है। कुछ कहानियाँ हमें हंसना सिखाती है, कुछ रोना, और कुछ कहानियाँ हमें खुद से मिलाती हैं। हमारी ज़िंदगी भी तो एक फिल्म की तरह ही है ना। सस्पेंस, ड्रामा, रोमांस और ढेर सारे इमोशन से भरी हुई। यहाँ हर दिन एक नया सीन है और हर सुबह एक नया टेक। दोस्तों, वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हमारा शो अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। विदा लेने से पहले सुनते हैं आज का फाइनल गाना, जो नए दौर का है और लाइफ के इस खूबसूरत सफ़र और हमेशा आगे बढ़ने रहने की भावना को बहुत प्यारे वाइब से बयां करता है।

तो दोस्तों, फिल्में और वेब सीरीज़ का हमारी लाइफ पर गहरा असर पड़ता है। वे हमें मोटिवेट भी कर सकती हैं और एक नई दिशा भी दिखा सकती हैं, लेकिन ये चॉइस हमारी है कि हम उसे क्या चुनते हैं। जाते जाते बस यही कहूँगी कि इंटरटेनमेंट अच्छा है, इंस्पिरेशन और भी अच्छी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है अपनी खुद की सोच और अपनी पहचान को बनाए रखना। इसी मैसेज के साथ मैं आकृति शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए युववाणी। नमस्कार।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। शाम के 4:20 होने को हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

चैनल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। आरंभ में आइए सुने सिरमौरी कार्यक्रम।

वह सोबिशोर नवाड़क है शीतल शर्मा का राम राम। बड़क के 4:20 और यो वक्त दे तुए ओसो आकाशवाणी के शिमला केंद्र साथी सुन दे लागे रुए अपना खास सिरमौरी कार्यक्रम। एतलो के कार्यक्रम दे बात लाऊ बे अमू मणिशो के बाणी ओ दे एक ही ऐसी चीज होगा शी जुबाने तो थे इंसाने अपनी सुविधा के तई है पर बिस्ता बिस्ता पोता लागा जैं दे पाने हो अमु इंसाने अपनी लातों दे कुराड़ी की तरह ठोके एज सुविधा एतलो अम खे दुविधा रोय बोने और एज बात रोय लागे प्लास्टिक गश एतलो की वक्त दो प्लास्टिक एक उद्देश्यों के समस्या नहीं थी बल्कि पूरे दुनिया के इंदेशा खतरा ओसो हमारे वातावरण के इंदेशा बहुत बड़ा नुकसान ओसो जो ओंदा भी लागा। तो एतलो के कार्यक्रम दे बात लाऊंबे जब प्लास्टिक के नुकसान का ओसो कैसा दई ये पर्यावरण के नुकसान पहुंचाओ और कैसा दई हमें इंदे का इस्तेमाल जो है से कम कर सको ताकि हमारा भारत देश प्लास्टिक मुक्त बुणी बटला। इंदे यारी एतलो के कार्यक्रम दे बात लाऊंबे भारत सरकार की एक कल्याणकारी योजना गशी जिंदे को नाव सो प्रधानमंत्री जनधन योजना। एज योजना का ओसो कोसखे ओसो है इनू भद्दी बातों गशी अपने चर्चा लाऊंबे पर शुरुआत करबे एकी सिरमौरी लोकगीत वारी। तो सुनो तू है ब्रह्मदत्त की आवाज़ दा एक सिरमौरी लोकगीत।

ऐसा सुना तू है जयप्रकाश की आवाज़ दा बैगे बठिया गीत। अपने चर्चा आगे बढ़ाऊँ बे और बात लाऊँ बे प्लास्टिक गश। प्लास्टिक अमू मनीषों के बाणी आँदी एक ऐसी चीज हो सो जो इतलो गौरव गौरव तावर पहुँच। जे मैं अपने गौरव दे अपनी कागी झेठ पाऊँ बे तो आधे से ज़्यादा चीज़ों प्लास्टिक की बुनी दी होंगी। प्लास्टिक पूरे भारत के और पूरी दुनिया के एक बहुत बड़ी परेशानी हो सो एतलो की वक्त दे। ऐसे बात तुम्हें परखे थोए ले और खासकर जो जिम्मेदार है भी यो कार्यक्रम अरी जुड़े होंगे ओसो तीनिया तो ऐसे बात जाचे थोए ले जे जुन जी पगोई आगे शैलो की बुनियों दी थी एतलो सेज भी प्लास्टिक की रोई चाले। जिम्मेदारों के आगड़े जुन जे शेकड़े और घीले निगाड़े और बाँसों के वो थी से जी भी एतलो प्लास्टिक करे चाले। आगड़े शूडे

एजा शुणा तुवें ब्रह्मदत्त की आवाज दा बैगे बठिया गीत। एबे बात कर बे जब प्लास्टिक मुक्त भारत बनो खे का करनो चाहिए और आमे देश के नागरिक इंदा अपना का योगदान दे सको। सबसे बड़ी बात जे सजोई प्लास्टिका में तेती उपयोग दो लिया सको और इन्हें खे जरूरी असो जे कूड़े का प्लास्टिक का प्रबंध जुए से उमारी देश दा ठीक ढंग सा होना चाहिए और एजा अमू आम नागरिक का फर्ज असो जे आमे कूड़ा सही ढंग से कूड़ेदान दो पाओ ताकि सरकार भी ठीक ढंग से इन्हें का प्रबंध कर बटले और जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक जुए से तिन्हें का इस्तेमाल करना ने चाहिए ताकि हमारा भारत देश प्लास्टिक मुक्त बुनने की डोबे आगे बढ़ला। ऐसे बात लागे प्लास्टिक मुक्त भारत गशी। अबे अपनी बातचीत आगे बढ़ाऊंबे और चर्चा करबे प्रधानमंत्री जनधन योजना गशी। ऐसे जो योजना सो सिमरी भारत सरकार 28 अगस्त 2014 दिथोए थिल्याए और ऐसी योजना पूरी दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेश योजना सो यानी यो योजना का जो खास मकसद असो से आम जनता जो आम लोग असो तीनों सोबी का बैंक खाता खुलाना है। जिनका कोसी का अपना बैंक खाता नहीं थी तीनों सोबी का बैंक खाता खुलाना और तीनों बैंक की सुविधा जुड़ना ही जो है से यो योजना का खास उद्देश्य असो। तो बैंक खाता कई खुलाना और सरकार के लोगों की बैंक खाता खुलाने की जरूरत कई जाने तो तुए सुन थोई लो जे आगड़े का आऊँ थियो। जब सरकार देश की जनता की तय आम लोगों की तय तिनकी बोलाई की तय कि कल्याणकारी योजना लियाओ थे और तिने के तहत लोगों के पैसे की किए सहायता या किए ओके सुविधा देनी हुआ थे। तो जब ताओ गाँव लोगों ताओ से जो सुविधा पहुँचो थे सदे पैसे पहुँचो थिए तब ताओ से आधे भी रुओ नहीं थिए। सरकार के नौकर चाकर जुए जुए जे बिचौलिया सो से लोगताओं सरकार की योजना का पूरा फायदा पहुँचना ने दियो थी। तो जी भद्दी परेशानी खत्म करनो खे सरकार है लोगों के फ्री मुझी अपना बैंक खाता खोलने के सुविधा दे यो योजना के तहत ताकि जे सरकार की कल्याणकारी योजना जनता के तय लिया ले तिने का फायदा सीधा बैंक के माध्यम से लोगों तक पहुँच लाए।

और तू है बेदा खित होइलू जे जुन जो मारे जिम्मेदार असो तिनखे किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा तिनकी बैंक दा पहुँच और ऐशा दही पूरा फायदा जिम्मेदारी खे पहुँच लागा। और इन्हीं के साथ ही जू के उकी योजना सो जैसे विधवा पेंशन हो या स्कूलिया खे की छात्रवृत्ति देनी हो इन सोभी का जो पैसा असो से तिनकी बैंक खाते दा पहुँचाड़ा जाइयो योजना के तहत और पूरा फायदा जुए से ज़रूरतमंद के भेड़ा लगा। और जो भद्दो संभव तभी हों दो जब लोगों के खाते बैंक दे खुले होंदे वाले और इंदे की तइए सरकार अजय योजना भी लिया। अब बात लूँ बे जय यो योजना के पात्रता का ओसो यानी कुंजे लोग यो प्रधानमंत्री जनधन योजना का फायदा उठाए सको। तो सबसे पहले बात अजय ओसो जब भारत को से नागरिक होना चाहिए और तिथकी जो उम्र असो से 10 साल से ओबे होने चाहिए। ऐसा जो जनधन खाता असो से क्यों भी बैंक का खोले जाओ चाहे से सरकारी बैंक हुआ चाहे प्राइवेट हुआ। दूसरी बात ऐसी असो जो जनधन खाते खोलने के कुछ दस्तावेज कुछ कागजों भी लागो जैसा आधार कार्ड हुआ पैन कार्ड हुआ मतदाता पहचान पत्र हुआ जॉब कार्ड हुआ इन सो भी मुंछे जब दो कागतों को सीखी असो ले तो से अपना खाता बैंक दा यो योजना के तहत खुलाए सको। अब बात लूँ बे प्रधानमंत्री जनधन योजना के कुछ खास फायदे के बारे में। यो योजना का सबसे बड़ा फायदा है जसो जे यो योजना के माध्यम से लोगों के जो बैंक खाते असो से फ्री मुझे खोले जाओ यानी जीरो बैंक बैलेंस सारी जुए से खाता खोले सको। दूजा फायदा यो योजना का एजासो जे इंदे लोई सरकार के जुके कल्याणकारी योजना हुओ तिन्हें का सीधा फायदा जुए से लोगों तक पहुँचाड़ा जाओ। अगले फायदे के बात करबे तो यो प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से सरकार लोगों के 10,000 ताओं के लोन बनने के भी छूट दियो और इंदे के साथ ही जो महिला बैंकदारक असो तिनखे दे प्राथमिकता भेटो। इंदे के साथ ही जको सी जनधन खाते वाले का किए एक्सीडेंट हुआ किए दुर्घटना होए तो तस्क है या तस्की परिवार वाला है 2 लाख तक की सहायता भी सरकार जुए से दियो है। यो योजना की अगली खासियत और फायदे के बात करबे तो इंदे के अंतर्गत जीवन बीमा बांटने के भी छूट असो और जिन्हें 2014 से 2018 के बीच दे जनधन खाते तय खोले तिनकी कुड़बे के मुखिया के मोरनोगशी 30,000 तक का जीवन बीमा भी जुए से परिवार खे दिया जा। तो अजला के बात प्रधानमंत्री जनधन योजना का अब आनंद लुए की सिरमौरी लोकगीत का।

ऐसा सुना तू है इंदर सिंह की आवाज़ दा बैगे बठिया गीत। अब अपने नज़र पाऊँबे एतलो के कुछ खबर समाचार गशी। एतलो पूरी दुनिया दो विश्व खाद्य दिवस मनाए जांदो लगो और यो मौके गशी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य स्वस्थ भविष्य के जुए से कामना करे और तीन बोलो जे सरकार स्वस्थ भोजन की ताइए प्रतिबद्ध सो। एतलो हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुए बुलो जे ढली नारकंडा रामपुर सड़क का फोर लेन बांधनों का जो काम है से चालान दसो और इंदे के जुए से जांच पूरे हो रहे। सिरमौर जिले के हरिपुरदार का एक राजकीय प्राथमिक स्कूल एतलो आसपास के ओके स्कूलों के भी प्रेरणा स्रोतरा बोने। यो स्कूलों से ची स्कूलिया का चयन जुए से नवोद्या खेरा होए। यो स्कूलों के एक गुरुजी कमल शर्मा बोलो जे यो स्कूलों के आठ स्कूलिया छात्रवृत्ति जुए से तिनखे इन्हें का फायदा भरदा लगा। 42 संसदीय कार्य मंत्री बोलो जे प्रदेश के जतड़े भी प्रधान और उपप्रधान चुने और आए तिनखे 15 जून खे जुए से जिला स्तर दे शपथ जुए से दिलाए जाते। एजती एतलो के कुछ खबर समाचार। तो एतलो में अपने बातचीत लाए प्लास्टिक मुक्त भारत गशी और इन्हें के साथ ही बात रहते लागे प्रधानमंत्री जनधन योजना गश। प्लास्टिक जुए से एतलो हमारे अमुसोबी की एक बहुत बड़ी समस्या रह बोने। अमुसोबी के जीवन दे जीशा शुंडे फिर रहता हूँ हमें प्लास्टिक करी गिरे हों दसो पर प्लास्टिक का

जो खतरा है से पूरे देश दुनिया के असो। प्लास्टिक गोल दो छोड़ दो ने और इन्हें की वजह से जो है से प्लास्टिक खास भी असो और इन्हें की वजह से प्लास्टिक जो है इन्हें शायद नुकसान भी असो। तो अमू कोशिश करनी चाहिए कि हमें प्लास्टिक का जो है से कम इस्तेमाल करो और अब प्लास्टिक जो है से हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है से कम करने की कोशिश करो। तो इन्हें के साथ ही एतलो मारी सिर मौरी कार्यक्रम का वक्त है वह चला एवं भेटियों में मोगड़े तब तो बताओ खे मुखे दियो इजाज़त तुम सो भी सुनने वाले खे मेरा राम राम।

अभी आप सुन रहे थे सिरमौरी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में लीजिए अब प्रस्तुत है महास्वी कार्यक्रम।

महास्वीकार कार्यक्रम शून्य आले बाद श्रोताओं के मेरा नमस्कार ताजी आ जाओ रेकड़ी जी जानकारी समाचार और लोकी तो साथी।

ता जी, भारत सरकार मांझौरी जो सो सामाजिक सुरक्षा और पॉइंसेरी सहायता और कम लागतों का ही जो सो लाभ देने री कई योजनाएं आसो, जिन्हें की प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और तई एक इनी योजना आसो अटल पेंशन योजना। नरेंद्र मोदी जी री सरकार आम मानछो खे जो सो पेंशन रा लाभ देने खे जो सो 2015 दी अटल पेंशन योजना री शुरुआत की। ए योजना जो सो एक आम मानछो खे असो, अगर तुम्हें ऐसी योजना दू जुड़ो तो तुम्हें बुढ़ापे दी जो सो कसी भी गाई जो सो निर्भर रोने री जरूरत नहीं पड़ोली। ए योजना जो सो आर्थिक रूप दी कमजोर मानछो खे ज़्यादा अच्छे असो, जो माणीच कम पैसे कमाओ या अनियमित पैसे कमाओ, ए अटल पेंशन योजना रा जो खास उद्देश्य सो ऐसो कम लागतों गाई दी जाने वाली पेंशन योजना सो। तैंजी की अटल पेंशन योजना री खास बात सो कि 18 वर्षों दू जो सो 40 वर्षों ताई कोई भी माणी जो सो एजी योजना दू जुड़ी सको। अटल पेंशन योजना रे तहत जो सो 60 वर्षों बासिये तुम्हें जो सो महीने री पेंशन भेटने जो सो शुरू होले। जो माणीच आयकर दे या कोसी सरकारी नौकरी दे असो से अटल पेंशन योजना रा लाभ जो सो नहीं ले सकते। अटल पेंशन योजना रे तहत जो सो 60 वर्षों वासी जो सो 1,000 दुई चिन्ह चार 5,000 रुपये री जो सो स्थायी पेंशन रा विकल्प असो, जो कि अंशदानोरी राशि और मानछोरी उम्र रे आधारो गई जो सो पेंशन तय की जाले। अगर माणीश जो सो 42 रुपए जो सो हर महीने अटल पेंशन योजना रे तहत जो सो जमा करवाओ तो मानछो के जो सो 60 वर्षों वासिये 1,000 रुपए

री हर महीने 400 पेंशन मिलने। अगर जो सो कोई भी माणी छ 210 रुपये जो सो हर महीने एजी योजना दी जमा करवाओ तो तेस मानछो के जो सो 60 वर्षों बासी जो सो 5000 रुपये री हर महीने जो सो पेंशन बेचने। एवे असो कि अटल पेंशन योजना रे भी कुछ नियम असो जिन्हें कि 6 महीने ताई लगातार जो सो कसी भी तरह री जो कमी जिन्हें कि खाते रा रख रखाओ खाते दी जो सो पूंजी जो सो पैसे शून्य होने या खाते जो सो से फ्रीज यानी के सरकारी पैसे भेटने तो वे बंद हो ले। 12 महीने ताई लगातार कमी पाने गई जो सो खाता जो सो निष्क्रिय किया जाला और पूरे 1 सालों ताई कोई भी पैसा जो सो जमा न करवाने गई जो सो खाता पूरी तरह दूजो सो बंद किया जाला। एवे असो कि अटल पेंशन योजना रे तहत आवेदन करने रा का तरीका असो आवेदन जो सो ऑनलाइन या ऑफलाइन दुनी तरह दू जो सो हमें इसी योजना दी अपनों पंजीकरण करवाई सकी। ऑफलाइन यानी के तुम्हें कोसी भी नज़दीकी बैंक या जो सो डाकघर दी अटल पेंशन योजना रा लाभ ले सकी। अटल पेंशन योजना लेने के जरूरी कागजात भी चाहिए जिन्हें कि इसी योजना दी जो सो इसी योजना लेने के तमुकाई जो सो आधार कार्ड बचत खाता राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र होने जरूरी चाहिए। अटल पेंशन योजना लेने आले अंछोरे मोन्ने बासिए जो सो तीसरी छेवड़ी के पेंशन मिलोले और दुनी रे मोने बासिए जो सो ए पेंशन जो भी नॉमिनी ओला तिसके बेटने। देश रा हर माणी छ जो कि 18 वर्षों दू जो सो 40 वर्षों रा असो से एजी योजना रा लाभ जो सो उठाइयो अपनों जो सो बुढ़ापा सुरक्षित छाड़ी सको। ताजी एबे शुनीले एक लोकगीत।

अंक दा सुरमा लाया रे, गायक कलाकार थे बीबी नेंडा। ता जी बड़े बुजुर्ग बोलो कि बूंदो बूंदो करियो जसो तालाब भरियो। एजे मुहावरे रा अर्थ आसो कि बारिशोरी एक एक बूंदो करी जसो तालाब भरियो, और इन्हीं छोटी छोटी बूंदो करियो जसो एक बड़े नौ बड़ो। होर समुद्र दी जो बेशुमार पानी भी असो से इन्हीं छोटी छोटी बूंदों दो ही बणो। तिणे करी ही हमें अपने जीवनों दी जो सो छोटी छोटी बचत और निठमो करी जो सो बड़े बड़े फायदा लियो, अपनो जीवन सुखमयी जो सो जानी सकी। मानछो के पैसेरी जो सो बड़ी अहमियत आसो, कहीं के पैसे रे बगैर मानछो री कोई भी जरूरत जो सो पूरी नहीं होंदी। कई बेरी हमू पैसे री खड़ा खड़िए जरूरत पड़ो तो हमू कहीं जो सो पैसे नहीं होंदे, तो तिस वक्त हमें महसूस करी कि अगर हमें अपनी आमदनी दो अकड़े पैसे बचाए होंदे तो आज जो सो आड़े वक्तों ते काम आओ थे, तो अपनो भविष्य सुरक्षित छानने के जो सो पैसे री छोटी छोटी बचते कोनी जो सो भरी जरूरी आसो। छोटी छोटी बचत रा जो अर्थ आसो कि मानिस जो सो अपनी जितनी भी आमदनी असो दू कुछ ना कुछ बचत करने री कोशिश जरूर करनी चाहिए। छोटी बचते करने के जो सो घर रा बचत चानो भरी जरूरी असो। बजट जो सो चाहे छोटी दू छोटी कई ना हो, बाकी खर्चे दू जो सो एक ही तरफ ढाणी चाहे। ए बजट जो सो तारी कमाई रा जो सो 1% हिस्सा भी हो सको। इनी करी ही कुछ महीने दी जो सो जमा हुए पैसे तुम्हें डाकखाने या बैंकों दी जमा करवाई सको। जी इन पैसे गई जो सो ब्याज भेटोला। थोड़े थोड़े पैसे सालों दी जो सो हजारों लाखों ताई बुझले। जो तारे कसी भी सुख दुख रे काम आवले।

बैंको और डाकखाने दी जो सो छोटी बचतों के कई तरह री छोटी छोटी बचत स्कीमें सो और हर माणी जो सो अपनी आमदनी रे हिसाब दूजो सो इन बादी छोटी छोटी जो बचत करने री स्कीमें सो तिनरा फायदा जो सो ले सको। ताजी एबे गणियों सुनिले एक लोकगीत।

नीलिमा भई नीलिमा गायक कलाकार थी यशोदा देवी। तांजी मांछो के जो सो पोइंसेरी बड़ी अहमियत सो कहीं खे पोइंसेरे बगैर जो सो मांछोरी कोई भी जरूरत कोई भी इच्छा जो सो पूरी नहीं होंदी। तांजी छोटी छोटी बचत करने जो सो बड़ी जरूरी असो कहीं खे कभी भी जो सो हम उकाए जो सो पोइंसेरी जरूरत पड़ी सको। कई बेरी तो इणो भी हो कि हम उकाई पोइंसे नहीं होंदे तो तिस वक्त हमें इणो महसूस करी कि अगर हमें अपनी आमदनी जो सो जितनी भी असो तीन दे दू जो सो अकड़े पोइंसे बचाए होंदे तो आज जो सो आड़े वक्त दे काम आओ थे। ताजी अपनी आमदनी दूजो सौ अकड़े पैसे बचाने री बचत करने री आदत होनी भरी जरूरी आसो ताकि जो सो हमें अपनों भविष्य जो सो सुरक्षित छाड़ी सकी और खुशहाल जीवन जो सो जी सकी। जो सो जरूरत जो सो बचत करने के जो सो बचत कई सरकारों री स्कीमें ओसो जो बचत स्कीमें लियो माणी छ जो सो अपनों भविष्य सुरक्षित छाड़ी सको और ओसो की दूजी तरफ दू देशों रे विकासों दी भी अपनों योगदान देओ। जबे जो सो देश रे करोड़ों माणी छ इन स्कीमों दी हिस्सा लियो तो तीन री बचत तू मिलने आले वस्तु तू सरकार जो सो विकासो रे काम करो। इनी करी जो सो देश री योजनाएं जो सो सफल हुआ और जिंदे करी जो सो पूरे देशों के जो सो फायदा भेटो। छोटी बचत जो सो सिर्फ बड़े मांछों के ही नहीं जो सो इजी आदत बल्कि लोकड़े दी भी छोटी छोटी बचत करने री होनी चाहिए ताकि छोटे लोकड़े जो सो अपनी पॉकेट मनी चाहे से 5, 10, 20, 25, 50 जितनी भी पैसे सो पैसे री बचत करियो करने भरी जरूरी हो सो। जब पैसे जमा ओकड़े पैसे जमा होले तो से पैसे हमें बैंकों दी जमा करवाई सकी और जित करी जो सो माँ बाप और जीवों का भी कम असर पड़ोला और छोटे लोकड़े दी जो सो बचपन दुही छोटे दुही जो सो बचत करने री आदत पाने जो सो बड़े जरूरी असो। बचत करने रे भी कई फायदे असो। एक फायदा असो कि इत करी जो सो मांछो दा एक नया आत्मविश्वास जो सो पैदा हुआ कहीं खे आने आली जरूरतें पूरी करने के जो सो मांछो दी जो सो पैसे री चिंता नहीं रोंदे होर साथी साथी और ना ही माणीच अपने आड़े वक्तों दी मुसीबतों दी कसी भी मांचो आगू जो सो अपने हाथ फैलाने रे भी जरूरत नहीं होंदे। निठम और संयम दू माणीच जो सो अपनी बहरी चिंताएं खत्म करी सको और सुखी जीवन जी सको। अपनी चिंताएं खत्म करने के जो सो हमें छोटी छोटी बचत करियो जो सो बड़े बड़े फायदे ले सकी। ताजी एबे वक्त सो कुछ समाचारों रा। आज विश्व खाद्य दिवस असो इसे मौके गई केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ए स्वस्थ भविष्य और सुरक्षित सही और साफ सुथरो खान पान रे प्रति सरकारों री प्रतिबद्धता दोहराई। जेपी नड्डा जी ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रे संदेश बोलियो दोबारा दू बोलियो और तिनिये बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के खाद्य तेल रा इस्तेमाल कम करनो और सही और संतुलित खान पान के बोलो। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस रा विषय आसो समस्या दू समाधान ताई और हर जगह सुरक्षित खान पान। रेके खबर असो कि अटल टनल रोहतांग क्षेत्र दी पछले कुछ वक्तों दू पर्यटकों री आवाजाही बढ़ी होर यातायात रे दबाव

उर्दू लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने एक कार्य योजना तैयार की। उपायुक्त किरण भंडाना जी ए बोलो कि सीमा सड़क संगठन होने वाली आपदाओं और चुनौतियों दूर निपटने के जो सो आपातकालीन कार्य योजना तैयार रखने के दिनिए बोलो। रिके खबरों सो कि 12वीं कक्षा री परीक्षा रे परिणाम जारी होने वासिए संबंधित मुद्दों री जांच और उत्तर पुस्तिकाओं रे दोबारा दू मूल्यांकन के ऑनलाइन आवेदन जमा करने री आज अंतिम तारीख थी। बोर्डे छात्रों दू अनुरोध कियो कि आखिरी तारीख दू गेणियों अपनो आवेदन जमा करो। ताजी एथी कुछ खास खास खबरी एवे सुनी ले एक लोकगीत।

तेरी शंगरी कुलवाली देये। गायक कलाकार थी अंजना भारद्वाज। ताजी अंजना भारद्वाज रे गाय लोकगीतों साथी एबे वक्त सो डेने रा एबे हमें भेटने आने आले बुद्धे तो वे ताई के राम राम।

रंग सफला चो बीजनियो बैसी कशा जीवन कुमो चोकी सफल हचिम ग्याच नियो इदंके हुशिमी गो ओम्सदन ग्याच इदंके नौकरी गारियो इदंके समाज कुमो सम्मान हासिल लनिम ग्याच मगर तोकजू चोई बदंगा कशानु आदते नी देनी टिकी क्या निजनियो कशा अथ कमंगली त्यारी द्यारी लंशो होदुई कशानु आदत हचिजनियो कशानु आदते कशानु भविष्य अर्पंग जुर्याचनियो दो तंगिस कशानु सफल हचिम ग्यामा दम आदतेनु अपनेमु जरूरत निजनियो वैसे ही ख्याचता इताजु अनुशासित अनुशासनु आदत यानी के नियमेनु पालन नन्नी मराव कमंग समय दिल नन्नी जुल इतोक वाली दम म्यू आदत निजनियो वैसे ही तोरकचू समय होता ख्याचता म्यू दोक हुन मोबाइल फोन रंग सोशल मीडिया देनी दोक जरूरत काली बोधी दोक समय बीते दोनियो जूस इता समय ली बर्बाद हचित ऐथित खास कमंग युम्स दकचो बीसनियो दोग जू मोबाइल फोने नू होते यूज लनिम ग्यामी नियो तेते आना दोक जरूरत नीतो दोग थदली कमाऊ दम कमाऊ तंगेस यूज लनिम ग्यामी सोशल मीडिया फायदा ली तोज नियो अगर दोपंग जरूरत का बोदी यूज लन्ना बर्बादली लंचित नियो खासकर न्यू युवा पीढ़ी पंग जू बतानू जरूर ध्यान ताम ग्यामी नियो दोग जू दम आदत अपनाइया दोग जू दम सेम्स ताता त्यारो चुकुमो थत नया सीखेनु कोशिश लनिम ग्यामी मराव कामानु कोचंग ध्यान शेन ग्यामी मराव स्वास्थ्य कोचंग ध्यान शेन ग्यामी मेहनत लनु आदत शेनिक मेहनत रंग लगन सी कामंग दोक दो परिणाम दमी पोरचनी हो दम आदत नु मराव जीवनु हिस्सा जुरियम ग्यामी मनिया दे कशानु दम आदते ही ख्याचता कशानु दम कमाओ दम कमालनु तो कशानु सेम्स होदोर बीतनियो दो तय कशानु द्यारो चुकुमो मुराओ आदतेनु दम तामु ग्यामी मनिया दे बैसी चुता छरे बत्याशी से बतंग कशता देमा इत की थंग ली रोंचे रोंची जुगी थंग।

बोधि फोक्सनी हो। खाद्य सुरक्षा मतलब दू कि भोजनु उत्पादन दंगच उपभोगन दंगस्तंग हर स्तर देन सुरक्षित रंग स्वच्छ निज ग्यामी गरिंगो। बैसी ख्याच्या रिमोच नावोस्तंग खौ पूरा यात्रा कुमो स्वच्छता रंग गुणवत्ता द्यांतामिक वालिदोक जरूरी निजनियो। किसाने फसल तैयार लाने रंग दोगानु संतुलित मात्रा उर्वरक रंग कीटनाशकनु उपयोग लनिम ग्यामिक। हो जे दुकानदारे ली खाद्य सामग्री अपंग दमक स्ताम ग्यामिक ताकि दो खराब माचितनी हो। जोर खास पतंग हो ली दो कि कशानु मराओं की मुकुमोली जामिक तुमिक चीजें नु दम तरीका से अपनाइया कई टो दंदंग भोजन सोकैजनी हो। वैसे ही जोर ख्याचता ओमस्ता खाऊलानु का ओम्स तोकुन मराओं गुदानु दोक साबुन शेषे ऐसा साफ किशिम ग्यामिक खाऊ जामु का ओम्स ऐसा गुदा किशिश खाऊ जाम ग्यामिक

इदो जरूरी नीज नियो किसाने फसल तैयार लाने रंग दोगानू संतुलित मात्राओ उर्वरक रंग कीटनाशक नु उपयोग लनिम गया मी हो जाए दुकानदारे ली खाद्य सामग्री अपंग दम कस्ताम गया मी ताकि दो खराब माचित नियो जोर खास पतंग हो ली दो की कशानू मराओ की मुकुमोली जामिक तुंगमिक चीजें नू दम तरीका से अपनाइया कई टो दंदंग भोजन सोक्यास नियो वैसे जोर ख्याचता ओम्सता खाऊलानु का ओम्स तोकुन मराओ गुदानु दोक साबुन शेषे ऐसा साफ किशिम गया मिक खाऊ जामु का ओम्स ऐसा गुदा किशे खाऊ जाम गया मिक रसोई कुमो दोकुन कई बनिंग शिनिंगानीज दोकुन उली दोकुन ऐसा साफ सफाई ताम गया मिनियो आई बतंग जेली दू की भाई जो कच्चा रंग जो पक्याशित खाऊगानु खेस खेसी ताम गया मिनियो होए तामा दोग जोर संक्रमण फैलनु संभावना ली काफी कामाचित नियो आई बतंग खाओपंग दोखुन ऐसा बन शेनिक अगर अतवरो बनना जोर कई किसीमु जीवाणु का डियाऊ को बीज नियो जोर ख्याचता खाओपंग उचित तापमान देन सुरक्षित ताम गया मिक मुलुक युम स्तंग दोखुन खुलौता शीत खाओ हसल दोक खराब आचित नियो साथ ही तो खुन सोदे ख्याचता ताज़ा रंग सुरक्षित यू ली इस्तेमाल ला निमग्यामिक ती मारी निमाली जूस कईटो दानु कारण अचित नियो वैसे ही तुरक्सु सामयो ख्याचता बाजारे नो ली जामिक चीज़े जोगे रंग ली ध्यान तामु जरूरत नीज नियो थित ली जू पैकेट बंद चीज़े नो जोगमु का ओम्स तो जोगमु जू समय रंग जू एक्सपायरी डेट ख्यामू रंग दो गुणवत्ता संबंधी जानकारी जरूर ख्याम गैमिंग नियो साथ ही खुलाओ पिकेट से आजू जामिक चीज़ें देन ली स्वच्छताओ दोक ध्यान छन गैमिंग नियो वैसे तुरक्सु दुनियाओं ख्याचता तेजी जो दुनिया बदले दोनियो तोक जो जामिक सुरक्षाओं में तवली बदले दोनियो इतना जनसंख्या बोधी हाचो जीवन शैली बदले दो आई जू हन मी दोक जामिक तुमिक ईद तोक थ जामिक थ तुमिक जो ईद वाली तेक चुनौती हाचिस दुनियो दो तंगेस ख्याचता खाद्य सुरक्षा दिवस कशानु याद दिलाजित की सुरक्षित भोजन हरमियों अधिकारियों दोक वैसे कशानु जामिक तुमिगो कुमो ध्यान तामो दोक जरूरत नियो स्वच्छ स्वस्थ जीवनु शुरुआत सुरक्षित खाऊदंगची नीच नियो अगर कशा खाऊ स्वच्छता रंग सुरक्षाओ ध्यान तामा दोक कैटो दंदंग भोजन सुगैस नियो दो तंगेस खाऊ पंग ख्याचता सफायु देन जरूर ध्यान ताम गया मिक जोर ख्याचता स्काना दियो फलंगा दियो तो जामु का ओम तुम ऐसा ची ची तंग तंग जाम गया मिक गुदानुली साफ ताम गया मिक दोहे होस के दो जिग जिग बतानु ध्यान तामा दोगी कशंगा ढियांगू स्वस ताशोनियो मनिया दे वैसे जुदा तो के सांदा जो खाद्य सुरक्षा दिवस बारे सांदा जानकारी तो कचता आई तो गीथंग ली रोंचे रोंची जो गीथंग

किन्नौरी कार्यक्रम अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से

0: रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
1: बन गया बजट?
2: हाँ,
1: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
1: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में कटौती करने संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की घोषणा की है। शिमला में आज एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधायकों और मंत्रियों को 3 महीने के एरियर सहित जुलाई महीने में पूरा वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए वित्त विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी काम कर रहे हैं।
1: जो चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर्स है, जिनकी सैलरी को और जो MLA हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो डेफर की गई थी सैलरी को, उस डेफरमेंट की जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको मैंने विड्रॉ कर दिया। अगले महीने से जो एरियर होगा वो भी मिलेगा और जुलाई में उनको पूरी सैलरी भी मिलेगी, एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर को छोड़कर। अच्छी तरह सुधार हुआ है और अच्छी तरह सुधार से बढ़ रहे हैं। हमारा राजस्व जो हमने बंद किया, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करे, उसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने HRTC के पेंशनरों को हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम को सरकार की ओर से 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार निगम को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भत्तों की अदायगी के लिए 30 करोड़ रुपए देगी।
1: सरकार ने ये फैसला किया है कि 7 से 10 तारीख के बीच में HRTC की जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन मिल जाया करेगी और वो पेंशन के लिए उनका डिपार्टमेंट जो है HRTC जो है उसको हम 20 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे। टोटल पेंशन का खर्चा 23 करोड़ है, 3 करोड़ HRTC जो अपना रेवेन्यू होता है उससे दिया करेगी, ये हमने उसको कहा है। तो 20 करोड़ रुपया मैं मेडिकल रिइंबर्समेंट के लिए उनको दे रहा हूँ ताकि उनका पूरा मेडिकल रिइंबर्समेंट हो जाए।
0: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ से अधिक है। उन्होंने चंबा जिले के खजियार में बूथ स्तर के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतदाताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मतदाताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मतदान को लेकर अनेक सवाल पूछे। ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि देश में 12 लाख मतदान केंद्रों पर काम करने वाले बूथ स्तर के अधिकारी चुनाव आयोग के धरातल पर काम करने वाले अधिकारी हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपने जीवन में प्रत्येक चुनाव में मतदान करने की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चंबा जिले के मतदाता भविष्य में होने वाले चुनावों में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करें।
2: इतना बड़ा लोकतंत्र है आपका देश भारत। जिस चुनाव आयोग ने, अधिकारियों ने, हमारे कलेक्टर साहिबान लोगों ने ये आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार कौन सी? भारत की सरकार। 65 लाख लोग काम करते हैं।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति रश्मि रथी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय रश्मि रथी पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि थे और उनके समानता व देशभक्ति के आदर्शों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी दिनकर की रचनाओं में निहित शाश्वत मूल्य

0: सपनों को आत्मसात कर देश के उज्ज्वल भविष्य की ध्वजवाहक बनेगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि ये संगठन राष्ट्र प्रथम की भावना, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व के संस्कार अपने कार्यकर्ताओं को देता है। इस बीच जयराम ठाकुर ने शिमला के विकास नगर में सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान वर्ग कार्यक्रम में भी भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफ़ी कम है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
2: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब सुनते हैं बिलासपुरी कार्यक्रम।

हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में अभी आप आनंद ले रहे थे बिलासपुरी कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं लाहौली कार्यक्रम।

जुले नमस्ते गीस तंजे नांगमो इनी हिंची पर छाएं दो आकाशवाणी शिमला ची थे गर्जपे प्रोग्राम दो तिमरिल नांग यंपो स्वागत लिखत थन हिंग जी ते की ग्यूनशी फ्यास या तो चर्चा लिखते थे फ्यास इरी मीचे असल सत्य ती हेश थजु फ्यास ख हेज लो नांग संघर्ष ही जीवन है थजु ख हेज लो नांग बारदो मई जिंदगी खर हिनमेश इरांग इरी आस पास क्या नंग या इरि पर्यावरण रु ध्यान देनंग नीची रे फिरोई खाई रोकची वांगसी जेश क्युकची ती सोकन साई सही थील रोकची वांगसी एश ग्रोकपा ला रो टकराई के रिजी राय अमसी रो बिना रुकाई के जी राय एली जी थे छाई फ्यास रो ती की शब छाई रो हेंचा रुखुक्षीश थजु खाए हेज लो नंग संघर्ष लो नंग बारदो असल रो लो नांग बार तो जीवन की दूसरा मीन तीश निमा ती मी मेहनत लिख जा बुझ थी नंग बार दो मथांग नंग थजोक ची तरक्की लिख जा प्रगति लिख जा रे बुझ थी चुश मीचे रो सफलता सम्मान ज्ञान नंग अनुभव हिंग जो बार दो थिंग जी खो ची खुशुश हिंग छाई एरी जीवन खची बार चा ना रे बार दो थांग शे दचुश खची चुनौती कठिनाई थे छाई हिंग जी कंची जोकन सुजो डवई कोनी की छेर सुजो लोकचुंग की छेर सुजो नत छत जुजा नोई के जी बारदो जी छेर सुजो लेन मई की छेर हिंग जो थे छाई बारदो रोकुर ची ग्यर मगियर जी जोते बुझ थे नंग थे छाई कई बसल कई बारदो रो सामना लिख च्युनशीश वदल्ले इरंग जी जिंदगी रो दूरे बढ़ाई क्यमेश तेजी वैज्ञानिक थॉमस एडिसन की मीन तत इनी छाई जी हिं ची जोकिन ताल की बोंठे फैनंग बिजल की आविष्कार लिख चई दूरे ताल तोंग ती बार असफलता थांगशीश ताल शिंडा दर जी मेहनत नंग कोशिश चा न ली जी खो ची ताल थेले तेजी के येश ताल दो मी जी रे शुचीश की इनी थेले असफल के जी खो ची रे हार मनाई लिख चुंगी मिजिस खना मरस व ताल जी लोचीश की गी असफलता क्या मकेत गी जी तोंग तिबार लेन खा ना लिख चुमेश थजु पता लीमेन थे हित्तिक शोरे खा गलती लिख चुमेश थजु पता दचीश थे मिजिस रेते की संघर्षेश इरी युल इरी भारत युल रो संघर्ष की रूंग्स रोक ची बींग जी गोइन छो इरी स्वतंत्रता सेनानी जी रे लोजुंग बारदो थांगशीश व थजु खोची इरांग जो आज़ादी खुशीश महात्मा गांधी भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस नंग दरुंग हिती वीर मी छाई जी इरी युल गी बोंठे बारदो गी सामना लिखचीश त्याग लिखचीश व दल्ली इरी युल रो स्वतंत्रता खुशीश अगर ताल जी थजु बक्तांग ग्यर जी जो थिज नंग हिंग जो दक्षम रे आज़ादी मखुक्शीनीश संघर्ष तेजी तेजी मीज जीवन रोके जिमेश तिकी रिदांग लेनी पाई मीचे रो होश में संघर्ष तेयश बारदो तेयश ताल छतपा क्या सोई क्या मेहनत लिख चीश व थजु खोची एरी युल गी मी छाई गी क्यूमा रो जमीन गी संपा लिप चीश तिकी लोकची पा बेते रो रे होश में बारदोश ताल नींग छाई नरो ची फितोस तो लुक चीश इम्तियान दचीश व राई सपना पूरा लिख चीश थनगी युवा की कचंग होश में नोई चुनौतियाँ तेयश होश में कंपटीशन चा न लेन लिख चुंगी छेर नंग सामाजिक दबाव खची बार असफलता मखुक्षी

ताजी निराश रिके थीचू हिंग जो असफलता रो अंत मतेजी चा नसफल केरे बोंठे शिंडा दर्जी राय लेन लिखचुम मेहनत लिखचुश थन गितुस सुविधा छाए गितुस दिएश तकनीक जी एरी मीचे रो लोई लिखशीश मगर थे रोकची थे मतलब मेश कि एरी संघर्ष लिखच मग्युन शीश थन चुनौती की स्वरूप बदलाई के येश दुरेक मी संसाधन मखुक्षी बारदो थांगशीश थन मी जो टाइम की कोनी तेयेश खर मई दो छेर नंग बारदो तेयेश नुनांग हिंग जो मानसिक रूप रोकची शिचन केरे होश में ग्युन शीश तिकी मशहूर कहावत नीश इनी छाई जी हिन शी जो कन कोशिश लिखची पर जी कभी हार मनाई लिख चुमेश थे पंक्ति हिंग जो चा नशिंडा दची मेहनत लिखच नंग निराश मकिया रे बोंठे लफ्जा दचीश इरंग जी चू न बारदो रो रे लेन साई बू जी गियर जी जो थी नंग नीचे रो बिल्कुल खर तेजी लिख चूंगी हिम्मत रमेश यदि हिमाचल प्रदेश की क्यूई क्यूई लई बोंठे फैनंग ख्या अमसी गतो ही सक्यत सुख से मईश ख्या चू न अमचा बारदो ते अमची नीश थे ना बारदो रो रे मी जी मेहनत नंग संघर्ष लीजी राय जीवन रो एप्पो लिखी इंचो यदि ला ते युलगी मी जो जीवन एरंग जो बारदो परिस्थिति नाना रे खाना दृढ़ जोची मेहनत लिखचूस थजुई लब्जा दचीश थन गी तुसरो मी जो ख मग्युनशी ख ग्युनशी तानंग यू न दक्षम रे खुकशुज तेची इंचो खास कर सफलता सफलता युस्ती को खुकशुम की चलाकती मेश बल्कि लोजुंग मेहनत लीजी शिंडा दर्जी लेन लीजी ईमानदारी यम पो खुकशुश सोशल मीडिया रोहितिक की सफलता कंजी राय दो क्युकची नंग छुई ते चीन छो पर हिंग जो थे हा गो शगुन शीश कि मी छाई गी जीवन यात्रा सस स सहेश सुई सफलता खोची हिती रोकची नोई बार दो तेयेश थजू हिंग जो कंचर रो खुकशुमेश नुनांग हिंग जो राय दो हिती रोकची तुलना लिखचुमेश राय की तुलना राय रोकची लिखचुश हिंग जो खती के नंग याची थन एपो लिखचुम की कोशिश लिखचुश थे छाई बसल तेजी उपलब्धि तेश बारदो बक्तांग एपो सकारात्मक मिजिस बुचा होश में ग्युशीश एपो मिजिस बारदो लुत थी चमेश बल्कि बारदो इची क्युक्ची क्या नंग या तेजी क्या नंग हिंग जो सामना लिख चलो चुश हालात इची कई क्या नंग हिंग जो राय लक्ष्य रो ध्यान दच ग्युशीश तेजी तेजी लेन बी मेन बुंठे हिंग जो क्युक्ची क्युक्ची प्रयास लिख च होश में ग्युशीश एरियुल रो आई न संघर्ष खोच विकास लिखचीश स्वतंत्रता खोच रे एरी भारत युल जी गरीबी अशिक्षा नंग हिती बारदो गी सामना लिखचीश पर होश में बारदो नंग प्रयास खोची रे एरी युल थन जम्बुलिंगी होश में बारदो नंग प्रयास खोची तिकी तेजी अर्थव्यवस्था रो शामिल कियेश विज्ञान तकनीक अंतरिक्ष खेल नंग लुकचुमगी क्षेत्र रो भारत जी विकास लिखचीश थे प्रगति लिखचा हिंग जो थे पता दचीश कि संघर्ष मी तिकी या मिन समाज नंग राष्ट्र छाई रो दुरे बढ़ाई के जी छाई यम्पो लिखचीश हर असफलता यम्पो तिकी अवसर रे नीश हेर तिबार कोशिश लिखचुमगी नंग दुरे लिखशी गलती चू हेर मलिक चुमगी लब्जा दचीश संघर्ष फिरे फिरे चू लेन बारदो रोक के दिलो चुमेश खची बार थे राय नाना रे रमेश राय कमजोरी आलस गियर नंग मारी मारी मिजिस रोक चिरे हिंग जो विजय हासिल लिखचा गुनशीश गर हिंग जी राय दो एपो लिखचुम की प्रयास लिखते नंग नुई नुई गुनशी लेन लिखते राय कमिया रो वही लिखते वदल्ले एरंग जी मिचे रो एपो नंग तिकी लिखचुश थन हिंग जो बेते जो युवा जो संघर्ष लिखचा गी महत्व रो हा गोशा दच ग्युनशीश असफल केरे जीवन गी अंत मेश नंग थजु बारदो रो मगियर जी सामना लिखचुम गी लब्ज दच ग्युनशीश बारदो नंग संघर्ष एरी मीचे हिस्सा तिहेश थजु रो एपो ली जी मगियर जी सामना लिखच ग्युनशीश थे फ्यस नंग लब्ज नंग यंपो दौलत राम गी थिरची ललती हिनकते ललई मीन चिट्टा तेरा चोला।

रितानंग एरी मीचेगी हर चुनौती रो सामना लिखचा ठुपचुश एरी जुक्स इपो मक्या नंग जु जा नत सतके जो नंग जबुलिंगी सुख सुविधा रेखर हेनमेश थनगी तुस्तो जिंदगी इरांग जो तकनीक की कचंग हेलीश थे रोकची मी छाई मी जोई मीचे रोकची शारीरिक सुख स्रो नोई लेन लिखचा छुई के येश मोबाइल फोन कंप्यूटर नंग इंटरनेट जी एरी लेन छाई नोई लोई लिखशीश पर इरांग जो जोची तिकी जगह रो जोची लेन लिखचा नोई के येश थे तिकी तेजी कारण हेश थनशे की मी जो बोई शुगर हार्ट अटैक नंग डिप्रेशन सोख से नत क्या मिनगी थे चाई चुनौती रोई कंजी भारत सरकार जी 29 अगस्त 2019 रो खेल दिवस की यादो फिट इंडिया मूवमेंट सुखशीश थे मूवमेंट की उद्देश्य मी छाई दो व्यायाम लिखचा के जिमेश बल्कि यूल रो फिटनेस रो जन आंदोलन लिखचाइश द फिट इंडिया मूवमेंट ख हिज लो नंग फिट इंडिया मूवमेंट की राष्ट्रीय अभियान तीश सुई लक्ष्य भारत यूल की मी छाई दो शारीरिक नंग मानसिक निष्पिर रोग ची स्वस्थ लिखचा बोनठेश थी संदेश सीधा लोई तीश फिटनेस रो राय चान जीवन शैली की हिस्सा लिख चुमगीश थे अभियान रोक ची इरांग जो थे फेस हा गुश हिश कि फिट कैरे बोनठे हिंग जो गोंगचन जिम रो एल दे नंग तेजी तेजी चला की ग्यूनशी मेश चा न चु चु न अम च क्योर ख नंग एपो मिजिस बू नंग एरी जुक्स एपो जो मिश थन की भक्तांग फिटनेस खर उग्यूनशी एज लो नंग थन की तुस दो मी छाई ती की जगह रो घंटा घंटा जो ची कंप्यूटर फोन दो लेन लिख ची इन छो बेते जी फिला एल जी क्योरमिन छुई के येश नंग मोबाइल फोन की स्क्रीन दो नोई जो इन छो युवा जो रो बाला कुम नोई तनाव के येश नंग शांगटे शांगजी जो रो बंती बंती नत क्या मेन की गैर ते येश विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुसार तिकी जगह जो जो ची लेन ली जी गुलमिन मई नोई अमचुम मई जी होश मई बनती बनती नत क्या मेन की गैर तेयेश थे बुनते फिटनेस व्यक्तिगत के जो ग्यूनशीमेश बल्कि सामाजिक नंग राष्ट्र छाई की बुनते ग्यूनशीश तिकी शिचन गी युल गी निर्माण लिखचीश इरी फिटनेस की बुनते फैनंग अक्सर हिंग जो जुक्स की बुनते केस जीते में मिनचो पर असल दो फिटनेस सुमी पहलू रो आधारित नीश शारीरिक फिटनेस लो नंग जुक्स की शेत नंग एपो मानसिक फिटनेस लो नंग डतपई एपो मिजिस नंग भावनात्मक फिटनेस लो नंग सेम जुक्स की नाना स्वस्थ क्या मेंगी अगर युल अगर एरी जुक्स के जी स्वस्थ ते नंग पर सेम रो छेर नंग गियर ते नंग एरंग जी पूरा फिटनेस मिश वनुनांग योग ध्यान एपो मिजा नंग एपो इप्स फिटनेस की पोंठे होश में युनशीश द योग नंग फिट इंडिया की बोंठे फेके एरी भारत युल जो जम्बुलिंग छाई दो योग लिक्चर रो अमूल्य देन दईश योग लो नंग व्यायाम लिक्चर रो के जिलो चुमिश बल्कि थे एरांग जो मिचे खाना एपो ली जी बिताई लिक्चुश थजु पता दचीश योग हिंग जो जुक्स रो शेत सेम रो थिब न बुचा नंग राय यर तो आत्मविश्वास बुचा रो य तो लिखचीश थन जम्बुलिंग रो आई न जगह रो योग अपनाए लिखचीश फिट इंडिया मूवमेंट रे योग रो आई न महत्व दचीश चा न चुचु न टाइम वन जी योग ली नंग एरी जुक्स रो शेत नंग सेम एपो नंग थिब न योमेश दथे नाना युवा जुई ख भूमिका रमेश लो नंग थजू बुनठे फेके युल की छाई बसल तेजी ताकत थजू युल की युवा छाईश युवा जी फिट क्या नंग युल रे फिट हेश थन की युवा जो नचुंग मा शर्बा नंग बेते जो डीमेन व्यायाम लिखचा फिला क्योर दे एपो जीवन शैली युक्चा होश में गुनशीश सोशल मीडिया नंग फोन कंप्यूटर रुत्सु न बुझी फिला क्योर दे आमचा एक्सरसाइज लिखचा रे गुनशीश खेल रंग जो जुक्स के दी एपोई बोंठे मेंश बल्कि थे अनुशासन टीम भावना नंग छाई दो तिकी क्या छी लेन लिखचा लेचीश लुकची बबेते जो रो रे फिटनेस इची गुनशीश थजु बोंठे फेके अक्सर लुकचुंगी बेते जी
फिला एल दे क्योर दे।

दथनगी समाचार हिंकते अटल टनल रोहतांग रो खची भक्त रुकची होश में पर्यटक रजी गोयन छो नांगथे चा न जिंगिल रुकंजी लाहौल स्पीति जिला प्रशासन जीते की कार्य योजना तैयार लिखशीश। डीसी किरण भड़ाना जी लोशीश की थे योजना बुनठे ताजी कुल्लू प्रशासन नांग सीमा सड़क संगठन बी आर रोगी लीन लिखची पजी अम्पो चर्चा लिखशीश। तालजी खती चुनौती के नंग या खर पता मई दोबार दो तीरा थी नंग थजू बोंठे एमरजेंसी प्लान ली जी बुचा बोंठे बी आर ओ रो लोता। चुनी कक्षा की रिजल्ट रह जी खोची राय इम्तिहान की पेचा हेर तिबार जांच लिखचुम नंग हेर तिबार एपो ली जी कंचुम की ऑनलाइन फॉरम पिंचुम की थन आखिर तारीख हेज लोता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE जी सोशल मीडिया रोकची लुशीश की फारम पिंचा बोंठे वेबसाइट थन फितो कस्तो आल जी नीश। बोर्ड जी बेते जी सलाह दाता कि बन क्या अस्तो थजोनी इची ग्योकपा क्या नंग राय फारम साई जमा लेनी। दथे प्रोग्राम की आखिर लला हिंकते

जुगे सांगा लागे रामदेव कपूर की थिरची लला तंग्यम्पो थन की गर्जपा एक प्रोग्राम ख्या खोम गते गिरो इजाजत दनी जुले नमस्ते।

लाहौली कार्यक्रम अभी आपने सुना, इसके साथ ही हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम अब संपन्न होते हैं। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 7:05 होने को हैं। अंग्रेजी समाचार अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 7:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है किसान बागवान भाई बहनों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा
2: नमस्कार।
1: आज के इस अंक में मैं हूं गुलवंत।
2: और मैं हूं अरविंद।
1: अरविंद जी, कैसे हालचाल हैं?
2: गुलवंत जी, मेरे हालचाल बिल्कुल ठीक हैं और आशा करते हैं कि हमारे किसान बागवान भाई बहन भी बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे।
1: जी बिल्कुल। देखिए, जून महीना प्रगति पर है, लेकिन बीच में बारिशें अच्छी हो रही हैं, जिससे जो तापमान है वो स्थिर बना हुआ है। ना ज़्यादा गर्मी है और ना ज़्यादा ठंड है। इसलिए हमारे किसान भाई सुबह शाम अपने खेतों में जाएं और कृषि और बागवानी से संबंधित जो भी कार्य बचते हैं या जो कर रहे हैं उन्हें समय रहते पूरा कर लें। और किसान भाइयों, इन दिनों देखिए आपने अपने खेतों में बहुत सारी फसलें लगाई हैं, तो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और सुबह शाम सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ अब देखिए, हमारे जो गुठलीदार फल पौधे हैं उनमें जो फल लगे हैं वो पककर तैयार हो चुके हैं और मंडियों में पहुंच चुके हैं, तो आप भी अपने बाग बगीचों से जो फल हैं उन्हें अच्छी तरह से ग्रेडिंग व पैकिंग करके मंडियों तक पहुंचाएं, ताकि आपको अपनी मेहनत का पूरा फायदा मिल जाए।
2: तो गुलवंत जी, ये तो बात हुई समसामयिक कार्यों के बारे में, तो करते हैं कार्यक्रम का आगाज और शुरुआत करते हैं आज के आकर्षणों से।
1: जी
2: किसान भाई बहनों, आज हमारा काम की बातों के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा मित्र कीट व उनकी पहचान। मनोरंजन होगा लोकगीतों के माध्यम से और सुनवाई जाएगी जानकारी पूर्ण बातचीत। कार्यक्रम के अंत में आपको कल के मुख्य आकर्षणों से भी अवगत करवाया जाएगा।
1: बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं मित्र कीट और उनकी पहचान के बारे में। किसान भाइयों, मित्र कीट वे प्राकृतिक शिकारी और परजीवी होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों यानी कि शत्रु कीटों और उनके अंडों को खाकर नष्ट कर देते हैं। ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने और जैविक खेती में बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किसान भाइयों, मित्र कीट वैसे तो दो तरह के होते हैं, जिसे हम परभक्षी कीट और परजीवी कीट कहते हैं। परभक्षी कीट की अगर बात करें तो ये मित्र कीट दुश्मन फीट पर हमला करके उन्हें मार देते हैं और खा जाते हैं। एक परभक्षी कीट कई कीटों को खाकर अपना जीवन चक्र पूरा करता है। परभक्षी कीटों में आने वाले कीट हैं जैसे लेडी बर्ड भुंडिया, ग्रीनलेस विंग।
2: किसान भाई बहनों, बात करते हैं परजीवी कीट की। ये मित्र कीट हानिकारक कीटों के ऊपर या अंदर रहकर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और आखिर में उन्हें मार देते हैं। परजीवी कीटों में आने वाले कीट हैं जैसे कोटेशिया ब्रेंड, एफिडियस ब्रेंड और कैंपोलेट्स क्लोरिडी ब्रेंड।
1: बिल्कुल
2: गुलवंत जी, बात आती है मित्र कीटों की देखरेख के बारे में।
1: बिल्कुल
2: किसान भाई बहनों, कुछ वातावरण संबंधी और मानवीय गतिविधियों में परिवर्तन करके मित्र कीटों की देखरेख की जा सकती है, ताकि हमारे मित्र कीट हानिकारक कीटों की रोकथाम सही ढंग से कर सकें। मित्र कीटों को बचाने के लिए कीटनाशक का प्रयोग कम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। किसान भाई बहनों, हानिकारक कीटों और उनकी तरफ से किए जाने वाले नुकसान और मित्र कीटों की सही जान पहचान होनी बहुत जरूरी है। कई बार किसान फसलों पर मित्र कीटों को हानिकारक समझकर उन पर कीटनाशक की स्प्रे कर देते हैं, जबकि मित्र कीट फसल को कोई नुकसान नहीं करते।
1: बिल्कुल। और किसान भाइयों, कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग करने से परहेज करें। इन कीटनाशकों का प्रयोग नुकसान के आर्थिक तौर पर करनी चाहिए, जैसे गेहूं में चेपे की रोकथाम के लिए कीटनाशक बालियां पड़ने के समय तब ही करें जब गेहूं में चेपे का हमला ज़्यादा होता है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो हरे त्रिकोणीय वाले कीटनाशक का ही प्रयोग करें। यदि कीटनाशक की स्प्रे करनी ही है तो इसका प्रयोग चयनित ढंग से करें। प्रयोग के लिए हमले के प्रभाव में आए पौधों या खेत के उन हिस्सों पर ही करने की कोशिश करें जहाँ की हानिकारक कीटों ने नुकसान किया हो। और किसान भाइयों, मित्र कीटों की संख्या बढ़ाने के लिए खेतों के आसपास तरह तरह के पौधे और वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि मित्र कीट अपने जीवन चक्र का कुछ हिस्सा इन पौधों से पूरा करते हैं।
2: किसान भाई बहनों, बात करते हैं खेत में मित्र कीटों की पहचान और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में। सबसे पहले बात आती है प्रमुख मित्र कीट और उनकी पहचान की। लेडी बर्ड बीटल,

0: किसान भाई बहनों, ये कीट गहरे लाल या नारंगी रंग का छोटा सा गुबरेला भृंग होता है, जिसकी पीठ पर काले धब्बे होते हैं। इसके लार्वा और वयस्क दोनों ही माहू, सफेद मक्खी और मिलीबग को बहुत तेजी से खाते हैं।
1: बिल्कुल। और किसान भाइयों, ड्रैगन फ्लाई भी एक मित्र कीट है। इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हैं, इसे सुई धागा भी कहा जाता है। और ये बड़े आकार का, चमकीले रंग का और पारदर्शी पंखों वाला कीट होता है, जो हवा में तेजी से उड़ता है। इसका काम ये होता है कि ये व्यस्क अवस्था में हानिकारक कीटों यानी कि माहू, मच्छर जो छोटे होते हैं, छोटे पतंगे को हवा में ही झपट्टा मारकर खा जाता है।
0: किसान भाई बहनों, बात करते हैं कीट ग्रीन लेस विंग की। आप इसकी पहचान ऐसे कर सकते हैं कि इनका शरीर हल्के हरे रंग का और पंख जालीदार होते हैं। इनकी आंखें सुनहरी और चमकती हुई होती हैं। किसान भाई बहनों, इसके लार्वा, जिन्हें एफिड लायन भी कहते हैं, माहू और छोटे कीड़ों का रस चूसकर उन्हें खत्म कर देते हैं।
1: और इसके अलावा ट्राइकोग्रामा कीट भी मित्र कीट हैं, और ये बहुत ही सूक्ष्म यानी कि मच्छर से भी छोटा परजीवी ततैया होता है। इसका काम ये होता है कि ये हानिकारक कीटों जैसे फली छेदक के अंडों के अंदर अपने अंडे दे देता है, जिससे शत्रु कीट का लार्वा पनपने से पहले ही नष्ट हो जाता है।
0: किसान भाई बहनों, बात करते हैं मित्र माइट का पालन और संरक्षण के बारे में।
1: जी,
0: कई शोधों से ये सिद्ध हुआ है कि अगर मित्र माइट को समय पर शत्रु माइट से ग्रसित फसलों पर छोड़ा जाए, तो आसानी से बिना किसी या कम से कम कीटनाशक के इस्तेमाल से शत्रु माइट की रोकथाम की जा सकती है, जिससे फसलों को जैविक तरीके से उगाने में भी बढ़ावा मिलेगा, जो आज के समय की सबसे बड़ी मांग है, ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। जिसके लिए शत्रु माइट को प्राकृतिक तरीके से समाप्त करने के लिए मित्र माइट को अत्यधिक संख्या में पालना होगा, जिसके लिए मित्र माइट और शत्रु माइट को विभिन्न विधियों द्वारा प्रयोगशाला में पालना होगा, जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं।
1: किसान भाइयों, शत्रु माइट पालन विधि कुछ इस तरह से कर सकते हैं। शत्रु माइट को शहतूत, बिनज या स्ट्रॉबेरी के पत्तों पर नाभिक संवर्धन द्वारा पाला जा सकता है। इसके लिए बिनज, जिससे शत्रु माइट के संवर्धन के लिए बिनज के पौधों को गमलों में या छोटी क्यारी में लगा दें, ताकि उनमें 6 से 9 पत्ते आ जाएं, तो उन पर शत्रु माइट छोड़ देते हैं, जो कि किसी भी माइट ग्रसित पौधे से लाई जा सकती है। और स्ट्रॉबेरी में बिनज की तरह स्ट्रॉबेरी को भी गमलों में या क्यारी में लगाया जा सकता है, और 4 से 6 पत्ते आने के बाद उसमें शत्रु माइट छोड़ दें। जहाँ तक शहतूत की बात है, तो शहतूत के पत्तों पर माइटस पालने के लिए हमें प्लास्टिक ट्रे की जरूरत पड़ती है, और पत्तों को साफ करके पहले आयताकार काट लें, फिर प्लास्टिक ट्रे में स्पॉन्ज लगाकर और उसे पानी से गीला करके उस पर आयताकार कटे हुए शहतूत के पत्तों को उल्टा करके रख दें। अब इन पत्तों पर ब्रश के सहारे शत्रु माइट छोड़ें। इन ट्रेज में 1 से 1.5 इंच पानी भर दिया जाता है, ताकि स्पॉन्ज गीला रहे, पत्ते ना सूखें और माइटस को चींटियां के आक्रमण से बचाया जा सकता है। और शहतूत के पत्तों को 6 से 7 दिन बाद बदल दिया जाता है,
0: क्योंकि माइटस इनका रस निकाल लेते हैं और ये सूखने लगते हैं। पुराने पत्तों के स्थान पर नए आयताकार कटे हुए पत्ते लगा दिए जाते हैं, और पुराने पत्तों से माइट को ब्रश के सहारे नए पत्तों पर रख दिया जाता है। अगर नए पत्तों को पुराने पत्तों के बीच लगा दिया जाए, तो भी माइटस अपने आप ही नए पत्तों पर चली जाती है। शत्रु माइट का जीवन चक्र 12 से 16 दिनों में पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं मित्र माइट पालन विधि के बारे में। किसान भाई बहनों, जब शत्रु माइट की संख्या 30 से 40 प्रत्येक पत्ता हो जाए, जो कि 7 से 10 दिनों में हो जाती है, तो उस पर 4 से 5 मित्र माइट को प्रति पत्ता छोड़ा जाता है। इसके बाद मित्र माइट अपने आप ही अपनी संख्या शत्रु माइट को खाकर बढ़ाता है, और इस प्रकार 7 से 10 दिनों में इसकी संख्या 60 से 70 माइट प्रति पत्ता हो जाती है। किसान भाई बहनों, एक बार उपयुक्त मात्रा में मित्र माइट छोड़ने के बाद इसकी संख्या अपने आप बढ़ती रहती है, और जब तक फसल होती है, शत्रु माइट का प्राकृतिक नियंत्रण बना रहता है, जिससे कि फसल पर शत्रु माइट के विरुद्ध या तो किसी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर जरूरत पड़े तो एक छिड़काव रासायनिक दवाई का और दूसरा नीम से बनी दवाई का 1 सप्ताह के अंतराल पर करें।
1: बिल्कुल। किसान भाइयों, ये तो हुई जानकारी काम की बातों के तहत मित्र कीट।

किसान बागवान भाई बहन अभी सुन रहे थे लोकगीत। किसान भाई बहनों, अब हम आपको जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनवाने जा रहे हैं। विषय रहेगा दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग व उनका उपचार। जानकारी पूर्ण बातचीत में भाग

0: दे रहे हैं डॉक्टर अनुज बाली और जानकारी हासिल करेंगे देवेंद्र। तो आइए मिलकर सुनते हैं जानकारी पूर्ण बातचीत।
1: किसान भाइयों, रोजाना की तरह आज भी हमारे साथ उपलब्ध है एक विशेषज्ञ जो आपको उस विषय पे जानकारी देंगे। जैसे कि आज का विषय है दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग और उनका उपचार। इस विषय पे हमारे साथ स्टूडियो में आज उपस्थित है डॉक्टर अनुज बाली। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने पर स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: किसान भाइयों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो विषय है दुधारू पशुओं के मुख्य रोग और उनका उपचार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं में मुख्यतः कौन कौन से रोग लग जाते हैं।
2: जी देखिए, मैं पशुपालक भाई बहनों को बताना चाहूँगा
1: जी
2: कि दुधारू पशुओं में अनेक कारणों से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। सूक्ष्म जीव जैसे कि विषाणु, जीवाणु, फंगस
1: जी,
2: प्रोटोजोआ, वो अंत व बाह्य परजीवी जिनको पैरासाइट्स कहते हैं, ये पशुओं में कई प्रकार के रोग कर देते हैं
1: जी।
2: इसके अलावा कुछ रोग पशुओं में कुपोषण के कारण हो जाते हैं जिन्हें डेफिशिएंसी डिजीज भी कहा जाता है, तथा कुछ रोग शरीर के अंदर की जो मेटाबॉलिक क्रिया होती है उसमें बदलाव के कारण भी हो सकते हैं जिन्हें मेटाबॉलिक बीमारी कहा जाता है। इन बीमारियों से बहुत सी बीमारियां जो होती हैं जानलेवा होती हैं, तथा कुछ बीमारियां पशु के जो उत्पादन है वो प्रजनन क्षमता में भी कुप्रभाव डालती है। कुछ बीमारियां एक पशु से दूसरे पशु को हो जाती हैं जिन्हें छूतदार या संक्रामक रोग भी कहा जाता है,
1: संक्रमण के द्वारा जो हो।
2: जी जी जी, तथा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में भी आ जाती हैं, जैसे रेबीज की बीमारी कुत्ते के काटने से हो जाती है
1: जी,
2: तथा जो टीबी या क्षय रोग है
1: जी
2: वो भी पशुओं से मनुष्य में आ सकता है। इन बीमारियों को जूनोटिक रोग कहा जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि इनके बहुत से कारण हैं, जैसे कि संक्रमण आपने एक कारण बताया, कुपोषण आपने दूसरा कारण बताया, अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि पशुओं में ये जो रोग होते हैं इनका आधार क्या है, यानी कि ये कैसे हो जाते हैं।
2: जी देखिए, जैसे मैंने बताया पशु में ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं। जो पशु कमजोर होते हैं या कुपोषित होते हैं या जिन पशुओं का प्रबंधन ठीक प्रकार से ना किया जाए उन पशुओं का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है
1: जी
2: वो कम हो जाती है और उन्हें अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। इसके अलावा पशुओं को दूषित आहार देना, पशुओं को अस्वस्थ पशुशाला में रखना जहाँ हवा व रोशनी का उचित प्रबंध ना हो
1: जी,
2: पशुओं को दूषित पानी देना या बहुत सारे पशुओं को एक साथ रखना या पशुओं का दूषित प्रबंधन करना
1: जी,
2: या उन्हें संतुलित आहार ना देना, इन कारणों से जो रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं ये पशु के शरीर में प्रवेश पाकर रोग फैला देते हैं।
1: यानी कि बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा हमारे पशुओं के शरीर में रोग के जो कीटाणु है वो जा सकते हैं
2: जी।
1: अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि रोग के जो कीटाणु होते हैं वो पशुओं के शरीर में किन किन माध्यमों के द्वारा जा सकते हैं।
2: जी, जो रोगों के कीटाणु होते हैं ये विभिन्न मार्गों द्वारा पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कि पशु की त्वचा द्वारा और पशु के भोजन द्वारा, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके द्वारा भी पशु के शरीर में ये जो जीवाणु या कीटाणु में प्रवेश कर जाते हैं
1: जी।
2: जो सांस के इन्फेक्शन होते हैं जैसे खांसी, निमोनिया आदि, ये श्वास नली द्वारा पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं
1: जी।
2: कुछ बीमारों के जो जीवाणु होते हैं वो कंजंक्टाइवा द्वारा, जो आंख की झिल्ली होती है उस द्वारा भी पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, पेशाब के इन्फेक्शन होते हैं, ये मूत्र नाली द्वारा भी पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ संक्रामक रोग ऐसे होते हैं जो माँ से बच्चे को भी गर्भनाल या प्लेसेंटा द्वारा चले जाते हैं
1: जी।
2: कुछ रोग पशु के जो नाभि है उस द्वारा भी पशु के शरीर में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि नाभि की सूजन या नेवल इल, एक नवजात बछड़ियों की बीमारी है, इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो नाभि द्वारा पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं
1: जी।
2: कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो अयन या थनों द्वारा भी पशु के शरीर में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि थनेला रोग एक पशु में हो जाता है
1: जी जी जी।
2: इसके अलावा कुछ रोगों के जो जीवाणु हैं वो परजीवियों द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में जा सकते हैं, जैसे कि एक बवेसिया रोग है जिसे टिक फीवर भी कहा जाता है, तो ये एक टिक द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है।
1: अब आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि दुधारू पशुओं में कौन कौन से प्रमुख संक्रामक रोग जो है वो प्रायः देखने को मिलते हैं।
2: जी देखिए, दुधारू पशुओं में बहुत से संक्रामक रोग होते हैं
1: जी,
2: जो एक पशु से दूसरे पशु में भी हो जाते हैं। जो संक्रामक रोग है ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं।
1: अच्छा जी।
2: एक विषाणु जनित रोग होता है जिसे वायरल डिजीज भी कहा जाता है, इसके अलावा कुछ जीवाणु जनित रोग होते हैं
1: जी,
2: बैक्टीरियल डिजीज
1: जी,
2: और जो तीसरा होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं जो प्रोटोजोआ द्वारा पशु में हो जाते हैं। जहाँ तक हम विषाणु जनित रोग की बात करें तो इसमें तीन मुख्य रोग हैं जो पशुओं में हो जाते हैं, जैसे कि एक मुख रोग है FMD डिजीज भी कहा जाता है, इसके अलावा रिंडर पेस्ट या पशु प्लेग की बीमारी है, और पशु में पागलपन या रेबीज की बीमारी, ये विषाणु जनित प्रमुख रोग हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं पशुओं में। इसके अलावा यदि हम

0: परमाणु जनित रोग की बात करें तो गलघोंटू रोग, जिसे हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया भी कहा जाता है, इसके अलावा लंगड़ा बुखार या ब्लैक वाटर बीमारी, ब्रुसेला या पशु में जो छूतदार गर्भपात हो जाता है
1: जी,
0: ये भी बैक्टीरिया द्वारा हो जाता है।
1: जी
0: इसके अलावा एंथ्रैक्स और टीबी की बीमारी भी बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोगों में आती है। यदि हम प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करें तो इसमें बबेसिया, थलेरिया और ट्रिपेनोसोमियसिस ये प्रमुख बीमारियां हैं जो गाय और भैंसों में हो जाती हैं।
1: जी देखिए डॉक्टर साहब, अभी अभी आपने चर्चा की कि मुंह खुर की बीमारी,
0: जी
1: तो ये जो बीमारी है मुंह खुर की, ये कौन सी बीमारी है और इसके लक्षण क्या है और इसका उपचार किस प्रकार से हो सकता है?
0: जी ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है।
1: जी
0: जो मुंह खुर की बीमारी है ये एक विषाणु जनित संक्रामक रोग है
1: जी
0: जो बहुत ही तेजी से फैल जाता है।
1: अच्छा जी,
0: ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पशुओं में होता है।
1: जी
0: जो ये बीमारी है ये हमारी देसी नस्ल गाय की अपेक्षा,
1: अच्छा जी,
0: जो संकर नस्ल की गाय है उसमें अधिक गंभीर रूप से पाई जाती है। वैसे तो ये रोग किसी भी मौसम में हो जाता है, परंतु बरसात के मौसम में इसका प्रकोप अधिक देखा गया है। यदि हम इसके रोग के कारण की बात करें तो एक पीको आरएनए वायरस होता है जिसके अनेक प्रकार तथा उपप्रकार होते हैं। इनके अगर प्रमुख किस्मों की बात करें तो ओ, ए, सी, एशिया 1, 2, 3 और सैट 1, 2, 3 तथा इनकी 14 उपकिस्में शामिल हैं। यदि हम अपने भारतवर्ष की बात करें
1: जी,
0: तो ओ, ए, सी और एशिया 1 स्ट्रेन के विषाणु द्वारा ये बीमारी हो जाती है। और यदि हम अपने प्रदेश की बात करें तो इस विषाणु का जो ओ स्ट्रेन है ये बहुत अधिक पाया गया है। जैसे आपने इसके लक्षणों की बात करी तो पशुपालक भाई बहनों को इसके लक्षणों का ज्ञान होना चाहिए,
1: क्योंकि तभी उपचार हो सकता है यदि हमें अच्छे प्रकार से लक्षणों के विषय में ज्ञान
0: बिल्कुल
1: हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी।
1: जी
0: तो इसके लक्षण की बात करें, जो बीमार पशु हैं उसमें
1: जी
0: तेज बुखार हो जाता है
1: जी
0: 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। जो पशु है वो धीरे धीरे खाना पीना और जुगाली करना भी बंद कर देता है। पशु के जो दूध का उत्पादन है वो गिर जाता है। जो पशुओं में मुंह से लार टपकने लगती है तथा मुंह हिलाने पर वो चप चप की आवाज़ करने लगते हैं। पशुओं के मुंह के अंदर, गालों में, जीभ में, खुरों के बीच, वो थनों पर भी छाले पड़ जाते हैं और ये छाले जो फटने के बाद एक घाव का रूप ले लेते हैं जिससे पशु को बहुत दर्द होने लगता है।
1: जी
0: जब मुंह में घाव हो जाता है उसमें दर्द होने के कारण पशु खाना पीना छोड़ देता है जिससे वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, और खुरों में दर्द के कारण पशु लंगड़ा चलने लगता है। और यदि गर्भवती मादा में ये बीमारी हो जाए तो कई बार गर्भपात भी हो जाता है। और नवजात जो बच्चे बछड़ियां हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं तो ये कई बार बिना लक्षण दिखाई मर जाते हैं। जहां तक हम वयस्क पशु की बात करते हैं तो इस बीमारी में जो मृत्यु दर है वो तो बहुत कम है, लगभग 10% के करीब है। लेकिन इस बीमारी से पशुपालकों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो पशु का जो दूध उत्पादन है
1: जी
0: वो बहुत ही कम हो जाता है, और जो पशु बचने के बाद ठीक भी हो जाता है उसका जो शरीर है वो बहुत ही खुरदरा हो जाता है, और कई बार पशु काम करने में असमर्थ हो जाता है, वो हांफने लगता है, जिसको हांफना रोग कहा जाता है।
1: यानी कि शारीरिक क्षमता को ये बहुत कम कर देता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यदि हम इस बीमारी के उपचार की बात करें,
1: जी
0: विषाणु जनित रोग होने के कारण इस रोग का कोई निश्चित उपचार है नहीं, लेकिन जो बीमारी की गंभीरता को देखते हुए लक्षणों को कम करने के लिए पशु का उपचार किया जाता है।
1: जी
0: जो रोगी पशु है उसमें सेकेंडरी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक टीके लगाए जाते हैं।
1: जी
0: और मुंह व खुरों के घावों को पोटाश या एक लाल दवा आती है उसके पानी से धोते हैं, तथा जो मुंह है उसमें बोरोग्लिसरीन लगाई जाती है, तथा खुरों में कोई एंटीसेप्टिक लोशन का प्रयोग भी किया जा सकता है।
1: जी
0: यदि हम इस रोग के बचाव की बात करें तो इस रोग से बचाव के लिए पशुओं में पॉलीवेलेंट वैक्सीन या टीकाकरण किया जाता है। ये जो टीकाकरण है ये वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल में लगाया जाता है। जो बीमार पशु है या रोगग्रस्त पशु है उसको स्वस्थ पशु से एकदम से अलग कर देना चाहिए,
1: ताकि वो संक्रमण जो है एक दूसरे में ना फैले।
0: बिल्कुल जी। जो बीमार पशु है उसकी जो देखभाल करने वाला व्यक्ति है उसको भी स्वस्थ पशुओं के बाड़े में नहीं आना चाहिए। जो रोग से प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से पशुओं की खरीद भी नहीं करनी चाहिए।
1: जी।
0: और इस रोग को आगे फैलाने से बचाने के लिए जो पशुशाला है उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पशुओं में कौन कौन से रोग निरोधक टीके जो है वो दिए जाते हैं?
0: जी, पशुपालकों के घर द्वार पर निशुल्क रोग निरोधक टीकाकरण किया जाता है।
1: जी,
0: तो जो जो टीके लगवाए जाते हैं इनके बारे में मैं कुछ बता दूं। सबसे पहले तो मुंह खुर रोग बीमारी से बचाव के टीके या FMD से बचाव के टीके।
1: जी,
0: ये टीके वर्ष में 2 बार 6 महीने के अंतराल में लगाए जाते हैं।
1: अच्छा जी।
0: जो पहला टीकाकरण है वो फरवरी मार्च के माह में, दूसरा टीकाकरण सितंबर और अक्टूबर के माह में किया जाता है।
1: जी।
0: इसके अलावा HSBQ हेमरेजिक सेप्टिसीमिया ब्लैक वाटर या गलघोंटू और लंगड़ा बुखार का जो रोग निरोधक टीकाकरण है ये बरसात के मौसम से पहले यानी कि मई जून के महीने में वर्ष में 1 बार किया जाता है। इसके अलावा

0: जो रेबीज रोग के टीके हैं ये भी पशु में लगाए जाते हैं, और जो जी हमारी भेड़ बकरियां हैं इसमें भी PPR, एंटेरोटॉक्सीमिया और शीप पॉक्स के जो टीके हैं इसका जो टीकाकरण है वो किया जाता है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी कि यदि पशुओं को समय समय पर हमारे किसान और बागवान भाई बहन रोग निरोधक टीके लगाते रहेंगे तो उन्हें उनका पशु जो है एकदम स्वस्थ रहेगा और दूध भी उचित मात्रा में देगा। तो अब आप हमारे पशुपालकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
0: जी देखिए, मैं आपके माध्यम से पशुपालक भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा, अपने सभी पशुओं में जो मुख्य रोग के रोग निरोधक टीके वो अवश्य लगवाएं, क्योंकि देखिए दुधारू पशुओं में रोगों के संदर्भ में एक कहावत है कि बचाव इलाज से बेहतर उपाय है,
1: बिल्कुल सही।
0: प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: जी
0: ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है,
1: जी जी
0: क्योंकि एक बार जब पशु बीमार हो जाए तो पशुपालक को ना केवल दूध का नुकसान उठाना पड़ता है
1: जी
0: और साथ ही साथ पशुपालक को पशु के इलाज में भी बहुत खर्चा करना पड़ता
1: जी
0: है। तो इस परेशानी से बचने के लिए पशुपालकों को कुछ बातें ख्याल रखनी चाहिए,
1: जी
0: जैसे कि सही समय पर प्रमुख संक्रामक रोगों के विरुद्ध रोग निरोधक टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। जो पशुपालक है

0: दूध भी उचित मात्रा में देगा। तो अब आप हमारे पशुपालकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: जी देखिए, मैं आपके माध्यम से पशुपालक भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा, अपने सभी पशुओं में जो मुख्य रोग के रोग निरोधक टीके वो अवश्य लगवाएं, क्योंकि देखिए दुधारू पशुओं में रोगों के संदर्भ में एक कहावत है कि बचाव इलाज से बेहतर उपाय है,
0: बिल्कुल सही
1: प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर।
0: जी
1: ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है,
0: जी
1: क्योंकि एक बार जब पशु बीमार हो जाए तो पशुपालक को ना केवल दूध का नुकसान उठाना पड़ता है
0: जी
1: और साथ ही साथ पशुपालक को पशु के इलाज में भी बहुत खर्चा करना पड़ता
0: जी
1: है। तो इस परेशानी से बचने के लिए पशुपालकों को कुछ बातें ख्याल रखनी चाहिए,
0: जी
1: जैसे कि सही समय पर प्रमुख संक्रामक रोगों के विरुद्ध रोग निरोधक टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। जो पशुपालक है उसको प्रमुख रोगों के लक्षणों का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वह उचित समय पर उचित कदम उठा सके, और साथ ही साथ जो रोगी पशु है उसको तुरंत पशु चिकित्सक से जांच करवाकर सही रोग निदान और इलाज करवाना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी और हमारे पशुपालकों के ज्ञान में विस्तार किया। आज का विषय था दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग और उनका उपचार। इस विषय पे अधिक जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनुज बाली। आप हमारे स्टूडियो में आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: किसान भाई और बहनों, ये तो सुनी आपने जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय था दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग और उनका उपचार के बारे में। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर अनुज बाली और उनसे जानकारी हासिल कर रहे थे देवेंद्र। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। किसान भाइयों, जानकारी तो हो गई, अब आपको इंतजार रहता है एक और लोकगीत का। तो सुनते हैं रीना और चंद्रमोहन ठाकुर की आवाज में ये लोकगीत।
3: रंगुआ दुगाणुआ गीतरे रागे, रंगुआ दुगाणुआ गीत

0: किसान बागवान भाई बहन अभी सुन रहे थे लोकगीत। किसान भाई बहनों, अब हम आपको कल के मुख्य आकर्षणों से अवगत करवा देते हैं। कल हमारा काम की बातों के अंतर्गत चर्चा का विषय रहेगा मधुमक्खियों के रोग और उपचार। मनोरंजन होगा लोकगीतों के माध्यम से और सुनवाई जाएगी जानकारी पूर्ण बातचीत, जिसका विषय रहेगा संरक्षित खेती। तो कल का कृषि जगत कार्यक्रम सुनना ना भूलें।
1: अब तो देखिए हमारे इस कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है। सभी श्रोताओं से आज्ञा चाहते हैं।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी किसान बागवान भाई बहन सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: बीडीबी पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 7:45 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने करेगी जारी। मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना भी सरकार ने ली वापिस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में किया जा रहा है विकसित, सर्वेक्षण कार्य पूरा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रदेश के लोगों से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील, खजियार में मतदाताओं से किया संवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व खाद्य दिवस पर लोगों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने का किया आग्रह। और अटल टनल रोहतांग में पिछले कुछ दिनों में बढ़ी पर्यटकों की आवाजाही, लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने यातायात दबाव को देखते हुए तैयार की कार्य योजना। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के सभी पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने जारी करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वित्त विभाग की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना को वापिस लेने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य सभी को अगले महीने के पूरे वेतन के साथ स्थगित वेतन का बकाया जारी किया जाएगा।
1: चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, और जो MLA हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो डेफर की गई थी सैलरी को, उस डेफरमेंट की जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको मैंने विड्रॉ कर दिया। अगले महीने से उनकी डेफरमेंट सैलरी जो 3 महीने का एरियर होगा वो भी मिलेगा और जुलाई में उनको पूरी सैलरी भी मिलेगी, एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर को छोड़कर। मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो 65 साल से 1/16/31/2022 के थे उनका जो भी एरियर है वो 65 से 70 साल के बीच में, वो भी अगले महीने हम उसको रिलीज कर देंगे।
0: मुख्यमंत्री ने HRTC के पेंशनरों को हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम को सरकार की ओर से हर महीने 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने HRTC के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने की भी घोषणा की।
1: तो सरकार ने ये फैसला किया है कि 7 से 10 तारीख के बीच में HRTC की जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन मिल जाया करेगी, और वो पेंशन के लिए उनका डिपार्टमेंट जो है HRTC जो है उसको हम 20 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे। HRTC के पेंशनर्स की टोटल पेंशनर का खर्चा 23 करोड़ है, 3 करोड़ HRTC जो अपना रेवेन्यू होता उससे दिया करेगी, ये हमने उसको कहा है। तो उनकी एक और मेडिकल रिवर्समेंट की बात थी, तो 20 करोड़ रुपया मैं मेडिकल रिवर्समेंट के लिए उनको दे रहा हूँ ताकि उनका पूरा मेडिकल रिवर्समेंट हो जाए।
0: इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में विकसित किया जा रहा है और इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने आज शिमला जिले के हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 4 लेन परियोजना में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भूस्खलन से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हाटू माता रोपवे परियोजना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है और नाबार्ड की सहायता से ये परियोजना चलाई जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाटू माता सड़क के सुधार कार्यों के लिए धनराशि मंजूर की गई है और इस कार्य में पेड़ों को कटान से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने निर्विरोध चुनी गई नगर पंचायत नारकंडा को 50 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ से अधिक है। उन्होंने आज चंबा जिले के खजियार में बूथ स्तर के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतदाताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मतदाताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मतदान को लेकर अनेक सवाल पूछे। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश में 12 लाख मतदान केंद्रों पर काम करने वाले बूथ स्तर के अधिकारी चुनाव आयोग के धरातल पर काम करने वाले अधिकारी हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपने जीवन में प्रत्येक चुनाव में मतदान करने की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चंबा जिले के मतदाता भविष्य में होने वाले चुनावों में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करें।
2: इतना बड़ा लोकतंत्र है आपका देश भारत। जिस चुनाव आयोग ने, अधिकारियों ने, हमारे कलेक्टर साहिबान लोगों ने ये आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार कौन सी? भारत की सरकार। 65 लाख लोग काम करते हैं।
0: आज विश्व खाद्य

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य

0: दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने व संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति रशिम रथी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय रशिम रथी पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि थे और उनके समानता व देशभक्ति के आदर्शों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी दिनकर की रचनाओं में निहित शाश्वत मूल्यों को आत्मसात कर देश के उज्ज्वल भविष्य की ध्वजवाहक बनेगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है।
1: छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो राजनीतिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक पहलू पर भी, रचनात्मक पहलू पर हर तरह से काम करता है। ओवरऑल एक छात्र का कैसे डेवलपमेंट हो, उसकी सहभागिता समाज के हर वर्ग में किस प्रकार से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़कर के काम करे, विद्यार्थी परिषद से खासतौर से पूरे देश के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि देश के लिए राष्ट्र सर्वोपरि संस्कार और संस्कृति के साथ काम करने के लिए अगर कोई छात्र संगठन है तो विद्यार्थी।
0: इस बीच जयराम ठाकुर ने शिमला के विकास नगर में सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान वर्ग कार्यक्रम में भी भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अटल टनल रोहतांग क्षेत्र में पिछले कुछ समय से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है और यातायात दबाव को देखते हुए लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने एक कार्य योजना तैयार की है। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने बताया कि कुल्लू जिला प्रशासन व सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ इस बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन को संभावित आपदाओं व चुनौतियों से निपटने के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार रखने को कहा गया है।
2: ओवर द ईयर्स ये देखा गया है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो काफी इंक्रीज हुआ है। इससे डिजास्टर लाइक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो अटल टनल है इसमें मेंटेनेंस कब कब होती है, इसका ऑक्सीजन लेवल, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर तो क्या SOPs रहेंगी इसमें। BRO से बोला भी गया है कि इन केस ऑफ डिजास्टर तो सिनेरियो बिल्डिंग करी जाए, इसमें डिफरेंट SOPs बनाई जाए ताकि हम इसमें मिलके काम कर पाए और ये प्लान कर पाए कि इस जगह को ये जितनी सुंदर है और जितना टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बना रहे और कोई आउटवर्ड इंसिडेंट ना हो।
0: सिरमौर जिले के दुर्गम क्षेत्र हरिपुर धार का राजकीय प्राथमिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इस स्कूल में 200 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और स्कूल के 3 विद्यार्थियों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। स्कूल के अध्यापक कमल शर्मा ने बताया कि स्कूल के 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण जयंती माध्यमिक मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी मिल रहा है और इसके तहत प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। खास बात यह है कि हरिपुर धार स्कूल में हर वर्ष बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
3: ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी इस पाठशाला से हर वर्ष नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों का चयन होता रहा है। इस वर्ष भी हमारी इस पाठशाला से 3 बच्चों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। नवोदय के अतिरिक्त

0: यहाँ से जो बच्चों का सिलेक्शन है वो सैनिक स्कूल के लिए भी हुआ था। 8 बच्चे ऐसे हैं जो स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट स्कॉलरशिप की जो योजना है उसमें 1,80,000 बच्चों को दिया जाता है, उससे लाभान्वित हो रहे हैं।
1: शिमला के निकट जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय लोहराब में 4 वर्षीय ललित कला स्नातक BFA डिग्री में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून तय की गई है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कामयानी बिश ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पहले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज में 12 से 19 जून तक प्रवेश पूर्व परामर्श दिया जाएगा। कामयानी बिश ने कहा कि इच्छुक विद्यार्थी BFA डिग्री पाठ्यक्रम के तहत पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, संगीत, गायन व वाद्य, तबला और नृत्य विषयों में प्रवेश ले सकते हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल आज मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे समय से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने करेगी जारी। मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना भी सरकार ने ली वापस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में किया जा रहा है विकसित, सर्वेक्षण कार्य पूरा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रदेश के लोगों से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। खजियार में मतदाताओं से किया संवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने विश्व खाद्य दिवस पर लोगों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने का किया आग्रह। और अटल टनल रोहतांग में पिछले कुछ दिनों में बड़ी पर्यटकों की आवाजाही। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने यातायात दबाव को देखते हुए तैयार की कार्य योजना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर व धर्मशाला केंद्रों के साथ ही FM बैंड 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने देशगान।

0: देशगान अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देख

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: इश्क का तेरे यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरे सुकून बन जाऊं, तुम रखो कदम जिस जगह पर भी, खुदा करे मैं वो ज़मीन बन जाऊं। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र, और प्रोग्राम में भूले बिसरे गीत में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो मेरम दीपक शर्मा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना अपने परिवार का, समाज और पर्यावरण का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। प्रोग्राम की पहली पेशकश आन फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद की धुन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम की अगली पेशकश अमर फिल्म से।

श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में

0: सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हेमंत कुमार और लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म जाल में।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: दिल करता है तुमको अपना बना लूं, हर पल तुम पे ये जान लुटा दूं। तुम्हारे बिना अब जिंदगी अधूरी सी है, तुम साथ हो तो गम में भी खुशी सी है। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र

0: निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनते हैं विश्वात्मा फिल्म में साधना सरगम को।

तुम्हारे बिना दिल को चैन कहाँ, तुम्हारी मुस्कान है हमारी जान, हर खुशी तुमसे ही जुड़ी है क्योंकि तुम ही है हमारे दिल का आखिरी अरमान।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का प्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9। कीजिए बस कुछ ही क्षणों का इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार

0: विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है।

0: उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे

0: एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defence, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Committee

जो तो फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी राजा यानी देवानंद को बहुत कम उम्र में उसकी माँ के द्वारा त्याग दिया गया था। उसे मास्टर यानी जीवन के द्वारा आपराधिक डॉन और ताश के पत्ते का जुआरी पालता है। वो चाहता है कि राजा उसके साथ कमीशन के आधार पर काम करना जारी रखे। इसलिए राजा वो सब बातें सीखता है जो ताश के खेलने के बारे में सीखी जा सकती है। मास्टर के साथ काम करना वो छोड़ देता है और अपना आप का काम वो अपना शुरू कर देता है और इसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हो जाता है। जल्दी ही अमीर बन जाता है। उसे सुंदर चंद्रा गंगा रामा से प्यार हो जाता है और वो उसे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वो यूके राम मेहता से शादी करें। और इससे पहले कि राजा इस गठबंधन के खिलाफ कुछ कर या कह सके, उस पर मास्टर की हत्या का आरोप लग जाता है। राजा का जीवन अदालत में खुलता है, जहां उसे अपने अतीत और माता पिता के बारे में पता चलता है। फिल्म की कहानी, जैसा कि हमने आपको बताया कि राजा के गुरु मास्टर और एक अन्य प्रतिद्वंदी जुआरी बांके के बीच विवाद के बाद एक दिन मास्टर की जब हत्या हो जाती है तो सारा इल्ज़ाम राजा पर आ जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्टरूम के ड्रामे के दौरान ही राजा के अतीत, उसके माता पिता और मास्टर के रहस्य पर्दा उठता है और क्लाइमैक्स की बात करें तो क्लाइमैक्स में साबित हो जाता है कि राजा निर्दोष है।

जिस वक्त बताते हैं आपसे कुछ ही देर बाद 9:30 पर दिल की आवाज़ में सुन कार्यक्रम के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है AIRFM@gmail.com। आज हम आपके लिए फिल्में लेकर आए हैं, वो फिल्में हैं फूल और कांटे, साजन, दीवाना, दिल खो गया। इन फिल्मों में से कोई सा गीत सुनने के लिए आपको ईमेल करना है AIRFM@gmail.com पर। दोस्तों, फिल्म गैम्बलर की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के जो गीत लिखे थे वो नीरज ने लिखे थे और उन्हें दिलकश संगीत से संवारा था एसटी बर्मन ने। फिल्म गाए थे फिल्म जो गीत गाए थे वो गाए थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र, और प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन का वक्त हो चला है। और प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ, आपका एडमिरल दीपक शर्मा। दोस्तों, जैसा कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, ईमेल के माध्यम से अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aarfmshimlamusicmail@gmail.com। और आज हम आपके लिए फिल्में लेकर आए हैं, वो फिल्में हैं फूल और कांटे, साजन, दीवाना और दिल खो गया। इन फिल्मों में से कोई सा गीत आप सुनना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है aarfmshimlamusicmail@gmail.com। पहली फरमाइश में देख रहा हूँ जाकिर, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज़, दिलशाद और नसीर मुलानी की हमें फरमाइश मिली है। पंढरपुर से ये फरमाइश भेज रहे हैं, कोई सा गीत इन्होंने सुनना चाहा है। नेक्स्ट जो फरमाइश में देख रहा हूँ, ये फरमाइश हमें भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं। कृष्णाबाग दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना की फरमाइश मिली है। और नेक्स्ट जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ

ये हमें फरमाइश भेज रहे हैं सुदर्शन शाह और इनके साथ है पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, नेपा नगर, पद्मा टॉकीज, मध्य प्रदेश से फरमाइश कर रहे हैं। वैशाली शैलेश गवाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनि गवाणकर, भादुरा नागपुर से फरमाइश कर रहे हैं। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर की फरमाइश हमें मिली है। इनके साथ है प्रणीता सिद्धांत गवाणकर, लाडला टुक टुक गवाणकर की फरमाइश भी हमें मिली है। और जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंदसौलिया की फरमाइश मिली है। पटियाला रोड गजरद्वारा यूपी से हैं खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, बेबी आरिबा हबीबा की फरमाइश मिली है। और राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश संभाजी नगर से हैं। और विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े, वैभव शिंदे मित्रनगर बीड शहर से फरमाइश कर रहे हैं। इनके साथ हैं आकाश और प्रिया सरोदेवी खंडाला से। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता, राधा रामदेव, संजय डिंगिया, संदीप मक्कड़, अनिल जैन किफ और दर्शन की हमें फरमाइश मिली है। कोई सा भी गीत सुनना चाहते हैं। जवानिया गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल की फरमाइश मिली है। चुपाड़ी रोडू से एलआर गुंजेटा, जिविंता गुंजेटा, भजन गुंजेटा, ताराचंद गुंजेटा, अनुज और मुकुल गुंजेटा की फरमाइश मिली है। फजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, शलानी खेड़ा और तिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आर बी खेड़ा की फरमाइश मिली है। कच्ची घाटी शिमला से हमें फरमाइश कर रहे हैं प्रियल, प्रियांशी, अमूल्य, नितेश कुमार, नितेश, नितिन और कंचन की फरमाइश मिली है। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म फूल और कांटे से प्यारा सा गीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। अगली जो फरमाइश हमें मिली है वो है भोपालगढ़ राजस्थान से। धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार की ये फरमाइश मिली है। नेक्स्ट फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये फरमाइश करने वाले हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल। इनके साथ हैं कोका भिलाई से, आर्यनगर से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी जंघेल की फरमाइश कर रहे हैं। और नेक्स्ट फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अजान, अरबान, अरजान और अब्बासी परिवार के समस्त सदस्य चौखुंटी बुलंदशहर से फरमाइश कर रहे हैं। डुबराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम मादिबा, डॉक्टर दानिश अंसारी की फरमाइश मिली है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू की फरमाइश मिली है। गोला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। गांव कुमारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम की फरमाइश हमें मिली है। निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर की यह फरमाइश मिली है। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दत्ता सिंह शेखावत, संगीता कंवर की फरमाइश मिली है। और नेक्स्ट जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ ये है तुषार सिंह, रिंकी शेखावत इनके साथ ही हैं। सुदर्शन ने दोबारा फरमाइश की है। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो की फरमाइश मिली, जनकपुरी सहारनपुर से फरमाइश कर रहे हैं। सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख जाफराबाद कालेगांव से फरमाइश कर रहे हैं। अगली फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये फरमाइश करने वाले हैं कुरासिया कालरी से, चिरमिरी से, इंद्रबान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालेंद्री लहरे की फरमाइश मिली है। जवाहरनगर उदयपुर से है बाबू भाई भारती देवी की फरमाइश मिली है। अगली फरमाइश हम देख रहे हैं, ये फरमाइश करने वाले हैं दिग्दर्शन गौड़ और इनके साथ हैं कविता गौड़, मेरठ कैंट से इन्होंने फरमाइश भेजी है। मेरठ कैंट से ही इनके साथ हैं राधा नामदेव, संजय ढिंकिया, संदीप मक्कड़ और अनिल जैन। अगली फरमाइश मुन्ना भाई स्वर्णकार की हैं, हकीकतपुरा मऊ से फरमाइश कर रहे हैं। इनके साथ हैं पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीहू स्वर्णकार, राज पैलेस मऊनाथ, भंजन यूपी से, राजेश कुमार, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा की भी फरमाइश भेजी है। और अगली जो फरमाइश है बबलू जामुन देवी, प्रेम पूजा, छत्तीसगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं। कोल सिटी बरकाकना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सहनी और मोहम्मद अफजल मलिक की फरमाइश मिली है। राजू, आशा, स्नेहा, बॉबी, हैप्पी, अनन्या, अंश, ध्रुव, अनिरुद्ध शर्मा, रूहानी शर्मा, प्रीति शर्मा, भव्या और मेवान शर्मा गाँव टपरोग तहसील सुन्नी से फरमाइश कर रहे हैं। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू की भी फरमाइश मिली है। कैथल हरियाणा से हैं जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म साजन से ये प्यारा संगीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी दोस्तों, अगली फरमाइश हमें मिली है फ़िल्म दीवाना का गीत सुनने के लिए, और ये फरमाइश हमें भेजने वाले हैं गुनी राम राजपूत की फरमाइश मिली है। इनके साथ है संतोषी, हेम प्रभा, शुभुषराज, सूरज राजपूत की फरमाइश मिली है कबीर धाम छत्तीसगढ़ से, सोनू मोनू, प्रेम, मनीषा, नीलांश शर्मा, नीलाक शर्मा गांव पहल से फरमाइश कर रहे हैं, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया की फरमाइश मिली है, बागपत यूपी से ये फरमाइश भेज रहे हैं, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा की भी हमें फरमाइश मिली है, जवाहरनगर उदयपुर से बाबू और भारती देवी की फरमाइश मिली है। अगली फरमाइश मैं देख रहा हूँ गांव नथाना पंजाब से हमें मिली है हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवी, जस्सी, सीता और गीता ये फरमाइश कर रहे हैं, और मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरा, नरगिस खातून के दुल्हापुरी यूपी से फरमाइश मिली है, कोई सा भी गीत इन्होंने सुनना चाहा है। दोस्तों आप भी हमें फरमाइश कर सकते हैं AIRFM शिमला musicmail@gmail.com पर फरमाइश भेज सकते हैं कोई सा भी गीत सुनने के लिए। एसएम जावेद शगुफ्ता अंजुम गुमला झारखंड से फरमाइश कर रहे हैं, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती रोड़ा, वरिंग खेड़ा की भी फरमाइश हमें मिली है। अगली फरमाइश जो मैं देख रहा हूँ ये फार हमें भेज रहे हैं आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, इन्होंने दोबारा हमें फरमाइश की है, शिवाजी नगर बड़ाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंदिरा ताई खोबरखेड़े, और खांडवी बुल्ढाणा से दीपावली राम धाड़े, स्वराज राम धाड़े की फरमाइश मिली है, कोई सा भी गीत इन्होंने सुनना चाहा है। अगली फरमाइश मैं देख रहा हूँ ये फरमाइश हमें भेजने वाले हैं दिग्दर्शन कौर, ने दोबारा फरमाइश की है, छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू की फरमाइश मिली है, और शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज कालका से हमें फरमाइश भेज रहे हैं, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर कैथल और डॉक्टर अमनदीप की फरमाइश

हमें मिली है। और बसंतपुर सुन्नी से हमें फरमाइश भेज रही हैं वनीता वर्मा, योगराज वर्मा, कृतिका वर्मा, साक्षी वर्मा और प्रियांश वर्मा, और खुशिका और चांदनी भी इनके साथ है। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत फ्रॉम द मूवी दीवाना सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जनाब यकीन मानिए कि जितना प्यार आप हमें करते हैं हम भी अपने दोस्तों से अपने श्रोताओं से उतना ही प्यार करते हैं। फिलहाल अगले प्रोग्राम की अगली आखिरी फरमाइश है और आखिरी पड़ाव पर हैं और अगली फरमाइश में मिली है अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा की पानीपत हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं। जॉन रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो सहारनपुर से फरमाइश कर रहे हैं। अगली जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ ये फरमाइश करने वाले हैं तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, बेगम रहीम मुन्ना निज़ामाबाद से ये फरमाइश कर रहे हैं। अगली फरमाइश है सुरेश खुराना पप्पी की, किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एस के पप्पे की MLB रोड ग्वालियर से ये फरमाइश कर रहे हैं। नक्शो फरमाइश में देख रहा हूँ ये फरमाइश भेजने वाले हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, इन्होंने दोबारा फरमाइश की है। प्रकाश पोहरकार नर्मदा पोहरकार मेन रोड तेलहारा से फरमाइश कर रहे हैं, इनके साथ ही कुमारी सुजाता पोहरकार भी। और अगली फरमाइश के आर साहू की है, आकाश कमलेश गन्नू लाल रजक मुरली क्षत्रिय के भी इनके साथ है, देवरी भाटापारा से ये फरमाइश कर रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश अग्नेजा, पूनम अग्नेजा, विशाल प्रिया दिशानी, अनिमित आहूजा की फरमाइश मिली है। नेक्स्ट फरमाइश में देख रहा हूँ रामशरण विश्वकर्मा की हमें मिली है, बुंदेलखंड यूपी से हैं, इनके साथ है साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। मोहम्मद इरफान की भी हमें दोबारा फरमाइश मिली है, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से है, रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मे शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू। अगली फरमाइश देवरी भाटापारा से है KR साहू की। नेक्स्ट जो फरमाइश मिली है वो है अनिल कुमार वर्मा की, सदर बाजार कुरावली से हैं, इनके साथ है माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव की भी हमें फरमाइश मिली है। अगली ईमेल हमें मिला है सीताराम हीरालाल बड़ोले, साहिल सुमन बड़ोले, विशाल हरिओम, भावना बड़ोले, कालू सिंह बड़ोले सनावद MP से फरमाइश कर रहे हैं। नेक्स्ट फरमाइश जो मैं देख रहा हूँ ये हमें फरमाइश भेजने वाले हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से इन्होंने फरमाइश की है। राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, चारो जटोलिया दिल्ली नंगलोई से हमें फरमाइश कर रहे हैं, कोई सा भी गीत इन्होंने सुनना चाहा है। अनिल मोहन की फरमाइश मिली है, इनके साथ हैं उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, कंडा घनाटी शिमला से हमें फरमाइश कर रही हैं सरोज, और ये लिख रही हैं कि इनकी बहन काजल ठाकुर का आज जन्मदिन है, तो काजल आपको हमारी ओर से बर्थडे की असीम शुभकामनाएं और आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर फिल्म दिल खो गया से ये प्यारा सा गीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन में आज बस इतना ही हूँ। तमाम दोस्तों का धन्यवाद जो ईमेल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे। आप यूं ही बने रहिए आकाशवाणी FM शिमला के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सुनने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खता मत गिन के कितना गुनाह किसने किया, वो इश्क का नशा था, मैंने भी किया तूने भी किया। मौसीकी से भरपूर गजलों को इस करके मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मैं आपका रेडियो मरियम दीपक शर्मा। प्रोग्राम की पहली पेशकश चंदन दास की आवाज में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: यदि आप चला रहे हैं कोई पंजीकृत स्वास्थ्य क्लिनिक या अस्पताल
1: या पंजीकृत होटल या रेस्टोरेंट,
0: तो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कीजिए। शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 10:30 हुए हैं, आइए सुने सदाबहार नगमे। हमारी सांसों की डोर बस दो ही ख्वाहिशों पर टिकी है, सांस चले तो तुम साथ हो, सांस चल रुके तो तुम पास हो। फिल्म जीने की राह में मोहम्मद रफी,

कैसे कहूँ कि अपना बना लो मुझे, बाहों में अपनी यूं ही संभालो मुझे। आज हिम्मत करके कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, अब तुम ही संभालो मुझे। ममता फिल्म में लता मंगेशकर को सुनते हैं।

उनके लबों को छू लूं वो शाम आ जाए, उनके प्यार में बहने का पैगाम आ जाए। ये ज़िंदगी तो है बस आप ही की अमानत, बस उनके नाम के साथ हमारा नाम आ जाए।

तुमसे इश्क करके आशिकाना हो गया है, दिल की ना पूछो ये दीवाना हो गया है। तुमको जब से नजरें भर के देखा है, ये मौसम और भी मस्ताना हो गया है।

107.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। समाचारों का प्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, पहले हिंदी में और फिर 11:05 पर अंग्रेजी में। कीजिए बस कुछ क्षणों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई

आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।